अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुर प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट, हर संग हरी सब संग बाए, हर कंचन चंदन कीने राव। नव छह खट बोले मुख आगर, मेरा हर प्रभ इवना पति ने। जन नानक हर हृदय सद प्यावो, क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनाश्री मैला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा। सतगुरु इव हर हर नाम ते आई, हर दरगे पावे फिर जन्म न आवे। हर हर हर जोत समाई, जप मन नाम हरि हो है सर्व सुखी। हर जस ऊंच सबना ते ऊपर, हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी गुरु भगत हर दीनी, तब हर स्यो प्रीत बन आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी, नानक हर पे है सखाई। तनाश्री मैला चौथा, हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ, हर पौजल पार उतारी। मन बचन हृदय से आए हर होए संतुष्ट, इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर

मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनाश्री मैला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हूँ तिन कै सब दलिहारे जाऊं रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देओ सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। तनाश्री मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी।

रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से, और सब त्याग को है हर पानी। सनातनी मैला चौथा।

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचन निरंकारे कोट पराग मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभु कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल मैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। धनाश्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो।

संगे सतगुरु सबदी कीना रहाओ। काम हेत कुंचर ले फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपताना हस रचियो कर लीनो अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, को जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर ए है बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला। सनासरी मैला तन्या, कर कृपा दियो मोह नामा, बंधन से छुटकाए मन से बिसरो सगलो तंबा, गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बिरानी छाड़ी, अनन बुद्ध मोह मन बासन देख कर गढ़ा गाड़ी। रहाओ ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बहराई, ब्रह्म प्रसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सियो टीठा अमृत बूठा, सबद लगो गुर मीठा, जल थल नहीं।

मन गायो, पयो प्रगास सदा सुख मन में, सब गुरु पूरा पायो रहाओ, गुण निदान रिद पीतर वसिया, ताँ दुख परम को पागा, तई प्राप्त वस्त अगोचर, राम नाम रंग लागा, चिंत अचिंता सोच असोचा।

होते, तिनकी बात बिनानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांसे कनक वखानी प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं त्रापे बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा काम वंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जो न चूके दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ मह सूके हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तनासरी मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई बर्ण न साको उस्तत, ताकी कीमत कहन न जाई, काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो मंता, दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनासरी मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में, जिन सीधा मार्ग दिखाया हमरे प्राण गोपाल गोविंद, इहा उहा सर्व थोक की जिसे हमारी चिंद रहाओ, जाके सिमरन सर्व निधाना मान महत पत पूरी, नाम लैत कोट अगमा से पवित बांसे सब तूरी, सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना, शीतल शांत महा सुख पाया संत संग रहो ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन ए नानक कीनो चोला।

प्रभु जी को नाम जगत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सबका को दिख न जाए लैन राव। जात ताप कमन बसबा कर उर्द ताप ले गैन, ए बिद न पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन, साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्नवा हर हर लीने संतो बार हर के दास की।

नानक शरण परयो दुख पंजन गुण गावे सदा आकार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया के दरबार त्रासरी मैला पंजवा अधर राखन चितारिया पतित पुनीत किए खिल पीतर सगला रोग बिदारिया रहा गोष्ट पई साध के संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूरन नारायण सुंगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रव तारिया चरण रेन बांछे नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया त्रासरी मैला पन्या मेरा लागो राम स्यो हेत सतगुर मेरा सदा सहाई जिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राख्यो अपना कर।

सब कुल कारण हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना कर कृपा।

जन को प्रभ अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान रहाओ। पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संति ए विद जाति तनाश्री मैला पंजवा। सगल मनोरथ प्रभ से पाए कंठ लाए गुरु राखे संसार सागर में जलन न दीने किने न दुत्तर पाके। जिनके मन साचा विश्वास पेक पेक स्वामी की शोभा अनब सदा उलास रहाओ। चरण शरण पूरन परमेश्वर अंतर जामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा। जय जय पेखो तै हजूर दूर कथो न जाई रव रया सर्वत्र में मन सदा ते आए। ईत ऊत नहीं बीछड़े सो संगी गनिये दिनस जाए जो निमक में सो अलप सुख पनिये रहाओ। प्रतपाले अप्याओ दे कट ऊन न होई सास सास समालता मेरा प्रभ सोई। अचल अछेद अपार प्रभ ऊंचा जा का रूप जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप। सामत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अरादा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा। तनाश्री मैला पंजवा। जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती कर आओ अनद मंगल गुण गाओ सहज तुन नेकल राज कमाओ। तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आप निवारे अपदा पई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे नाचन पाजन थाके पर मंगल वाजे नित वाजे अपने खत्म निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कभू गुर के बचन आधार जय जयकार सगल पू मंडल मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारन करन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। किस त्यों ना लाई ही ते जा को किस ना ही बीत, अंत की बार ओ संग न चाले। मन पर तू आराध हर के प्रीतम साध, जा के संग तेरे बंधन छूटे। गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण, अवर आस कट पटल न की जय। सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई, नानक जा को कृपा की जय। थना श्री मेला पंजवा, मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना। देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पक चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिख्या विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जाको रे कर्म पला तिन ओट गही संत पला, तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना। पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान, एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मैला पंजवा कर सतवा इको ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक दिन सुरैन चितारे, साध संग जप निसंग मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारे, साध जना की रेन नानक मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा कर अठवा दो पदे इको ओंकार, सतगुरु प्रसाद। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले। ए लोक परलोक संग सहाई, जत तत मोहि रखवाले। गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे। पाए न सा कह जा ले रहाओ, निरसन को तन अंधले कौटिक। मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक। करी कृपा कृपाले, तनाश्री मैला पंजवा। पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई। नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनज सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, पाको कोई न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत, नानक नाम से आई। तनाश्री मैला पंजवा, दर्बवंत दर्ब देख गर्बे, पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवारे, जैसा बित तैसा हुए वर्त है। अपना बल नहीं हारे रहाओ, आन त्याग पे इक आसर। शरण शरण करे आए, संत अनग्रह पे मन निर्मल। नानक हर गुण गाए, तनाश्री मैला पंजवा। जांको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वस्ता कै, जांका सतगुरु पूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग, शरणी पावन नाम से आवन। सहज समावन संग रहाओ, जन के चरण वसे मेरे ही रे। संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निद। नानक कै सुखे ही, श्री मैला पंजवा।
जतन करे मानुख डहकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर्म कर पावे पेख करे निर्वाने जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उतते है आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनासरी मेला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे पाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल रहाओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनाश्री मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनाश्री मेला पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मनता दिल्स न कतहू जात सतगुर पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी तनासरी मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज थाती रहाओ जिसका साथ इन्हीं रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदात नानक हर राखी पाती तनासरी मेला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप तनासरी मेला पंजवा
चतुर्दिशा तीनों बले अपना श्री ऊपर कर तारे हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद।

औखी करी न देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रपाले प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आब अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पहे साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई तनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पतदाता सोई गनो अबागा चरण कमल जाका मन राज्यो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन

राव सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साद की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सद कुरबान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सोग अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवें सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु बिन से शोक सनातरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम मां संतोष होवे गुरबचनी प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूरन काम सनासरी मैला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार रहाओ जय जय देखो तय तय स्वामी कोई न पहुँचन हार जो जो करे अवज्ञा जन की हो गया तत्चार करन हार रखवाला हुआ जाता अंत न पारा वार नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रवतारो कृपा कर तारो पूजा कह फूप से काढ़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राख न हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुणे सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत रहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वड़े पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे शोक अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेरे जम जंदार ना वे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर

काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। रहाओ पोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो के गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न परम की काई। सनासरी मेला नामा साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना, जोबन तन प्रभ ताके मद में एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, सांस्यों मन न लगाना, जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। तनाश्री मेला नावा तेह जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लोभ समानो, हर्ष शोक ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। सनासरी मेला नावा अब मैं कौन उपाय करूं, जे बिद मन को संसा चूके, पौन पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पत्यों उदर परो, कहो नानक प्रभ बिद पछानो, तब हो पत करो। त्रासरी महला पहला कर दूजा।

पर पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वत्सल तै काटन हारे, होमे मार मिले भगतारे, अनेक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आपना चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सनासरी मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जय देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं सारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप

देखें हथ ना पतीजे ना बहुते खें कर पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पर पर फूले चोटा खाए बहुत स्यान पावे जाए नाम जपे को भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज फुला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पे उदासा मन मैले सूचा क्यों हुए साथ मिले पावे पत सोए आचारा विचार शरीर आज जुगाद सहज मन तीर पल पंकज में कोट उदारे कर कृपा गुर मेल प्यारे किस आगे प्रभ तुझ सालाही तुझ बिंदु जा मैं को नाही ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए नानक सहज पा

जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकुर से मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद नह चूके मन तेद एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल आश्रम कीने मनुआ ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खे मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल।

तीरथ नाम अनजाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशाहरा, हौ नाम हर का सदा जाच।

गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना। सात ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए। विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी सात साचे भावे। आनंद अनदिन हरख साचा, दुख किल विख पर हरे। सच नाम पाया गुरु दिखाया, मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सब सुहावनो। साला है साचे मन सतगुर पुन दान दया मते, तिर संग पावे सहज नावे। बेड़ी ता संगम सत सते, आराद एकंकार साचा। नित दे चढ़े सवाया, गत संग मीता संत संगत। कर नदर मेल मिलाया, कहन कह सब को एके वड आखी है। हाँ मूरख नीच अजान समझा साखी है। सतगुर की साखी अमृत पाखी, तित मन मान्या मेरा। पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा। आखन कोट न पगत पंडारी, पर पुर रह आ सोई। नानक साथ कह बेनंती, मन मांजे सच सोई। सनासरी मेला पहला। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाम।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आईए जियो, सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाईए जियो, गुण गाए विगसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे, अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे, आप करता करे सोई आप दे सा पाई है, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो, हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो, कदे ना विसारी अंदिन समारी, जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है, गुरमुख अमृत पीवा, नगर करे ता सतगुर मेले, अंदिन विवेक बुद्ध बिकरे, अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे, सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो, अंदिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो, सहज समावे ता हर मन भावे, सदा अतीत बैरागी, हलत पलत सोबा जग अंतर, राम नाम लिव लागी, हरक सो दोहा ते मुक्ता, जो प्रभ करे सो भावे, सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो, माया दुख मोया हों मैं रोया, मेरी मेरी करत रिहावे, जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे, बिन नामे को साथ ना चाले, पुत्र कलत्र माया तोया, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो, सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो, प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया, अंदिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ते आया, नामो नाम मिली वडियाई।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत न

फिरे बदक ज्यों, कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका। रहाओ जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैसना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन का स्थित तजे कबीरा, रमैये कहा निहोरा। रहाओ कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक से लोके जैबो, ओछे तप कर बाहुर एबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही। रहाओ सोबा राज बिबे बड़ियाई, अंत न चाहू संग सहाई, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई। रहाओ बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजामल गज गन का

बारह जोजन चक्र चले था, देही गिरज न खाई, सर्व सोयन की लंका होती, रावण से अधकाई, कहां भयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा स्यो करत ठगौरी, जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैरागन मोह बत्कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दो परे अमृत सर, बिख को मार कडावो, पाछे बौर न आवन पावो, अमृत बाणी करते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोए है छीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, ते तज दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जन, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या परमो, ए संजम हर पाई है, मारवार जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो कुरंक निस्नाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ, जो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पवरला, जो कोकिल को अंब बालहा, क्यों मेरे मन रामैया, चकवी को जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसुला, जो तरणी को कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, बारिक को जैसे खीर बालहा, चात्रिक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसाबिरा, अथोन पुरसाद मरा, असदा अस उसदा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मह सागरा रहाओ, नाचंती गोपी जना, नैया ते बैरे कना,

जम कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। सना श्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे।

देखे कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पय उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन इको ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लह न पारी कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथंग कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामंग बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राम।

रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो तूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती काया बो खंड खोजते नव निध पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे कन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा।

अनाज मंगो सब्सी का, गऊ पैस मंगो लावेरी, इक साजन तुरी चंगेरी, सड़की गीहन चंगी, जन तन्ना ले वे मंगी। जैतसरी महला चौथा, कर पहला चौप दे इको ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा ही अरे रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ तरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ, बिन गुर मूड़ पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाता। मोको की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलंथा। जैतसरी मैला चौथा, हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका, रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिले हीर पराखा रहाओ। मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तिन कर रतन न लाखा, ते उजड़ परम मोए गावारी, माया पुअंग दिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी के, हर साधु शरण हम राखा, हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी, हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाने, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डुबत हर राखा। जैतसरी महला चौथा, हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध इयाना, हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु, मिल साधु कपट खुलाना रहाओ। गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे, मेरे प्रीतम नाम पराना, दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर, ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर पाग पुराना, तिन हम चरण सरे वे खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर, जन बिछड़िया चिरी मिलाना, तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। जैतसरी महला चौथा, सत गुरु साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा, माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध, गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड पाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाग खीर तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाएबा, ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाएबा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाएबा।
जैतसरी महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जय हर बांजा। तिन सुन्नी दे फिरें बिन नावे होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी। गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ। हर कीरत कल युग पद उत्तम। हर पाई है सतगुर माजा। हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वडपागी सब किल विख गए गवाजा। सतगुर साओ पाया वडदाना। हर किए बहुगुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन हर उतारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जैतसरी महला चौथा। सतसंगत साध पाई वडपागी मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा। मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा। रहाओ साकत बंध पए है माया बिख संचय लाए जकीड़ा। हर कै अर्थ खर्च नह साकै जम काल सहे सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु हम साज जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा। जैतसरी महला चौथा कर दूजा। इको ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैतसरी महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा हर के रंग सदा गुणगाहा। हर हर हर जस कुमर पावो मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते हर नानक भगत ओ महाराम। जैतसरी महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा हर गुण गाए सदा ले लाहा।
दीन दयाल कृपा करमा दो हर हर नाम उमाराम। जप जगदीश जपो मन महा हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वड्डे ठाकुर प्रभु मेरे जप नानक भगत उमाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते आपे नाम उमाराम। आपे दीप लो दीपाहा आपे सतगुर समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कड़ाए जप नाम रतन उमाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई हर हर नाम उमाराम। आपे वड दाना वड साहा गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे गुण नानक नाम उमाराम। जैत श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा। हर हर कृपा तार मधसूदन मिल सत्संग उमाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप उमाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अतपारी गुरमत जप उमाराम। सब कर्म तर्म हर नाम जपाहा किलविक मैल पाप सोवाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम।

नमस्कार सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवधे, तामे संतोख न पाया, हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाये, जैत सरी महला पंजवा, कर्तीजा दुपदे इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। देहो संदेश रो कहियो प्रिय कहियो, विषम पई मैं बहु विध सुनते, कहो सुहागन सहियो रहाओ, को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बुझियो, सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बचहियो, जैसरी मैला पंजवा, तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेश प्रभ को नीरो, बेसुमार बेअंत बढ़ दाता, मनह गहीरो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आस्था मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वस्या, दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को, जैसरी महला पंजवा, लोड़ींदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसे बसेरा रहाओ, सुख अरादन दुख अरादन, बिसरे न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन से प्रम अंधेरा, थान सनंतर सब नी जाई, जो दी से सो तेरा, संत संग पावे जो नानक, तिस बहुर ना होई है फेरा, जैसरी महला पंजवा, काल चौथा दो पदे इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग, तजी सियानप चिंत विसारी, अहंक छोड़ियो है त्याग रहाओ, जो देखो तौ सगल मोय मोहियो, तौ शरण पर्यो गुर पाग, कर कृपा टहल हर लायो, तौ जम छोड़ी मोरी लाग, तरयो सागर पावक को जाओ, संत पेटे वड पाग, जन नानक सर्व सुख पाए, मोरो हर चरनी चित लाग, जैसरी महला पंजवा, मन में सतगुरु ध्यान तरा,

डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अपियो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैतसरी महला पंजवा जाको पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याद न काई रहाओ दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुन गाई जैतसरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल आनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप जैसरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचै सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते मां बिखिया ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चित

ज्ञान कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगोरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लाए लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जैत श्री मैला पंजवा आए अनक जन्म प्रम सरणी उदर देह अंध कूप ते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी सुख संपत माया रथ मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन से हर सेवा नेचल गोविंद काम पगवंश पगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय।

फूलियो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ, समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जानियो नाहिन, बन खोजन को पायो।

ज्ञान न पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नामा हरजू।

0: महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा कै मरबे को बिसरत नाहिन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब की जय नानक हार पर्यो शरनागत अभय दान प्रभ दी जय। जय श्री महला नावा। मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसारा रहाओ। जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहु नाए संभारा नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा। संत कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक।
1: दर्शन प्यासी दिन सुरा

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक नृत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याये त्याये सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियेरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्टिया करते पाप अनेक माया रंग रट्टिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख तरम दूते डिठिया।

किरत कर्म ना मिटे नानक, हर नाम तन नहीं खटिया। उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही, पर मैं जोन असंख मर जन में आवही। पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे, बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे। रतन जन्म हारंत जुए प्रभु आप ना पावही, बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन ना पावही। जोगन गया बतीत जरमल बैठिया, कर कंपे सिर डोल नैन ना डीठिया। नै नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया। कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंग अपार पूरन नै निमख मन में वूठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया। चरण कमल शरणाए नानक आया, दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक।

कारण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन में थाप उथाप दार सिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास स्मरण।

जिस बिसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेम खिन ग्रह में बस न देवई जिन सोई है कर अनर्थ दर्भ।

मन वसंदड़ो सच सो नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर नाम मन चिंदे

कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तात्र में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

अजल लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया पौड़ी चल गया लाल न

नच भोग रसमिष्टं नच मिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानके दात मिष्टं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विध

जित मिलंदड़ो मां फिरी पौड़ी सारे ला कहो कौन है जित प्रभु को पाई सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर ध्याय के मनीष पुजाई वडे भाव सत्संग हो।

करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तने। दयाल।

भोजन भिखम असगा गुरबोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंगियानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तो खा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह विस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो, तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, एक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन कोख्यो, ने बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हरे भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा, कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी सेजा, कामन थाट बनाया। संग न पायो

भयो अनुग्रह जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापति ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे तही ए तृप्त है आन न कथमू तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभु अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभु हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहु विद को तावे सगल निरारथ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरे तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग, रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग, छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग, संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग, कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग, तोड़ी महला पंजवा, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी, नानक दास संत पाछे पर्यो, राख लेहो ए बारी, टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल निद गायन, सांत सहज रहस्य मन उपजो, सगले दुख पलाए रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहु ते छूटे, पवजल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचारयो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण, टोडी महला पंजवा, निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला, शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके, सच का पंथा थाट्यो, खात खर्चत किच निखुटत नाही, राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर, अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक, सब देखे लोग सबाया, टोडी महला पंजवा, किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी, तातन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे, खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे, ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही, प्रभ राखो शरण परे, टोडी महला पंजवा, हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास, संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूरन सुखदाता, नानक हर हर टेक, टोडी महला पंजवा, हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी, वसदी की नी आप, रहाओ जिसके से फिर तिन्ही संभाले, बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने, हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना, दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन, जाका बड़ प्रताप, टोडी महला पंजवा, स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाये, माया रत बंधारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

आओ आपन राम न कीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहु चित लायो सो संचयो जित ऊख तिसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानक को तरया तोड़ी महला पंजवा हमारे एक है हरी हरी आन अवर सिंहान न करी रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो गुर मोह को हर नाम दृढ़ायो हर हर जाप ताप व्रत नेमा हर हर त्याए कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात हर गुनिया महा आनंद कीर्तन हर सुनिया कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब किछ तिसके।

देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्व गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

आगड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्रासत मिट्यो रे। जाको लैणो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गरबा।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग के तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत। एही कर्म तरम जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पै मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण। बिसर नहीं निमक ही रहते, अपने भगत को पूरन दान रहाओ। खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी

दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ देह जिस रव रया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते से जन कभो न मरते चूर तंग बंद दिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पा

सब देता रिद्दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पै विस्मादा आनना बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पे सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा कर गए काढ़ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सरन।

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्व न दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बहुर कछ न विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नामा

तनक कामनी के रस नह कीरत प्रभु गाए रहाओ। जब झूठे को साथ जान के पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस्दिन छुटी न मन की काई, कहना नानक अब नाहीं अनत गत बिन हर की शरणाई।

कोई बोले निर्वाह, कोई बोले दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो, रहाओ पंडित होय के देर बखाने, मूरख नाम देव राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम ले कही, पतित पवित भय राम कहत ही, रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव।

कुम्हार के कर हांडी अच्छे, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे, रांडी सांडी हांडी गो, बाणवे के कर हिंग अच्छे, पैसर माथे सिंग गो, देवल मदे लीग अच्छे, लीग सीग हीग गो, तेली के कर तेल अच्छे, जंगल मदे देल गो, माली के कर केल आछे, केल बेल केल गो, संता मदे गोविंद आछे, गोकल मदे श्याम गो, नाने मदे राम।

तारा कोट कोटन करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साव सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर प्याय सुखदाता, जहाँ का अंश न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा, हर रात है उधर मंजारा, सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जहाँ के हृदय बसिया मेरा हर हर, इस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा के पाई।

पायो सर्व सुखर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाए। राज कुलंग महला पहला कर पहला

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला त्यागड़िए मानरा।

लोभ अहंकार की माती माया मय समानी इन्हीं बातें सौ पाई नाही पई कामयानी। जाए पूछो सुहागनी वाह किन्हीं बातें सौ पाई है जो कुछ करे सो पला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाई है। जाके प्रेम पदार्थ पाई है कौ चरणी चित लाई है सहो कह सो की जय तन मनु दी जय ऐसा करमन लाई है। एक कह सुहागनी कहने इन्हीं बाती सो पाई है आप गवाई है ता सो पाई है और कैसी चतुराई सहो नगर कर देखे सो दिन लेखे कामन नो निज पाई। अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सब राई ऐसे रंग राती सहज की माती एनस पाए समानी सुंदर साए स्वरूप।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहिब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ कौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन के आए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए चंतक काल ग्रस है किस नानक ले छदाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

पैदाए खुदाए बंदे चश्मगी दंग फनाए दुनिया मुर्दार खुरदनी गाफल हवाए रहाओ गैबान हैवान हराम कुत्तनी मुर्दार बखुराए दिल कब्ज तब जाता दरो दोजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिल खनाए जब अजराइल बतनी तब चेकारे विदाए हवाल मालूम कर दंग।

तेरा जोर तेरी मन सेत सदा सदा जप नानक एक सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार तेरी टेक तेरा आधार रहाओ है तू होनहार अगम आगाद ऊंच अपार जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिन सहसो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त होए जिन जपया किसको बलिहार किसके संग तरह संसार करुणा।

अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे महदीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरवान खुदाए दिन सुरैन जे तुद अरादे सो क्यों दोजिक जाए। अजराइल यार।

हरतिया कथा कहानिया गुरमीत सुनाया। बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया। आए मिले गुर सुख आए मिले तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ। हर ते गुण हर पाऊं दे से गुरु ते पाए। जिन गुर का पाना मन्या तिन तुम कुम जाए। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को है वारी। जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा। गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना। तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे। जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की तिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले। कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया। कोई आप छुटे परवार सो सब जगत छाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो। गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो। जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन परानी। जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी। गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पाया। हर दर्जे पहनाया हर आप गल लाया। जो गुरमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दीजै। हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पी जाए। पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया। हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाइया। जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे। तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने। नानक जिन सतगुर चेतिया रंग रलिया माने। सतगुर दाता आखिए उस करे पसाओ। हौ गुर विट्टो सदवारिया जिन बितड़ा नाओ। सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा। हौ वेख वेख गुरु विदसिया गुर सत गुर देहा। गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी। जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुख सब जावी। हर का मार्ग आखी है कहो कित दिद जाइए। हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए। जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वदाने। हो सतगुरु को सगवारिया गुरु बचन समाने। तू ठाकर तू साहिबो तू है मेरा मीरा। तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। आपे हर एक रंग है आपे बहु रंग।

उस दिन में प्राणी सुन सुन औद देहात है फूटे कट ज्यो पानी रहा हर गुण काहे न गावे मूरख अज्ञाना टूटे लालच लाग के न मरन पछाना अजहू कछ बिगड़ो नहीं जो

मात पिता सुत बंग जन सुत जातियो की ना जियो छूटियो जब देहते दार अगन में दीना। जीवत लो जो हार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाए लै सब सुखन सुमानो। तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो। रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी।

देव कतेव उत्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए, सुख दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया शहर मेला, दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक, म्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे, जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

तेरा नाम खुंडकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। रहाओ करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू बहंद तू।

और क्या करी नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीची तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा रखती।

होई निराश जमाव। जपो साई को नामा अवर निराशुल कामा रहाओ। ए मन इतिहास करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिय इन दिग अमृत पावो। मन संपटे जित अक्षर नामन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहें कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न को।

करवसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चातर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा।

तीरथ मंजब सन कुट कुट जिया खावने बगे ना कहियन। सिमल रुख शरीर मैं जन देख भुलन से फल कम न आवनी ते गुण मैं तन हन। अंगले पार उठाया गुगर वाट बहुत अपनी लोड़ी नालहा हौ चर लंगा कित। चाकरिया चंगियाईया अवर स्याणप कित नानक नाम संभाल तू बद्दा चुकै जित। सूही महला पहला जप तपता बंद देरला जित लंगे वहेला ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एक नाम मजीठड़ा रखा मेरा चोला सद रंग तोला राव साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण होवे गंठड़िया मेले दा सोई। मिलिया होए ना विछड़े जे मिलिया होई आवा गुण निवारिया है साचा सोई। हौ मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सहते अमृत बोला। नान से तह सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा कसम हमारा। सुही महला पहला जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करे पसाओ दुख विसार सी सहसा मूले नाने सर प्रकार सी तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाम देवे दिखिया। चाले सतगुरु पाए पवे ना सीखिया जा को महल हजूर दूजे निवे किस दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस छुटे ताके बोल साहिब नगर जिस। कल्ले आए आप जिस नाही दूजा मते कोए ताहे उसारे साज जाने सब सोए नाव नानक।

पांडा हच्छा सोए ज्योतिष पावसी, पांडा अतमलीन तोता हच्छा न होए सी, गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी, एक द्वारे तोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वर्ताए सी, मत को जाने जाए अग्गे पाए सी, जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी, अमृत हर का नाम आप वर्ताए सी, चलिया पक्षों जन्म सवार वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा ते लोग सुनाए सी, नानक आप निहाल सब कुल तार सी, सुही महला पहला, जोगी हो वे जोग वे पोगी हो वे खाए, पपिया हो वे तप करे तीर्थ मल मल नाए, तेरा सदना सुनी जय पाई, जे तो बह अलाए रहाओ, जैसा बीज सो लुणे जो खत्ते सो खाए, अग्गे

जैसा निशाने जाए, कैसो जैसा काटिए जैसी कार कमाए, जो दम चित ना आवे सो दम दिखा जाए, ए तन वेची बैकरी जे को ले जाए, नानक कम ना आवे।

सतगुर प्रसाद। जोग ना संसा, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना संजीवाये, अंजन मन निरंजन रहिए, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई रहाओ। जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश दिशंकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाय। सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सब तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाय। नानक जीवतिया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजो सुनजी वाजे, तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है। सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा। मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल कल मैं।

वे इन विद चुप रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुनावे तुल जावे।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुखे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ियो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब्दी, हर अस्थिर सेव सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आगे, सिर बेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रसमान है, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, कर्म राय सिर डंड लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सर तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुरपुख है हर रंग चालिया।

फिर दौड़ ना होवी तंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुरसिख है हर उपदेशिया, हर के प्यारा ओ निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी फिर आवन जाना अंग, हर प्रवचित ना आयो मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया सब लाते किलिस पंग, हर दीना दीन दयाल प्रभु सत्संगत मेलो संग, निरसंगत हर रंग पाया जन नानक मंतन रंग, सुई महला चौथा हर हर करें नित कपट कमावें, हिरदा सिद्ध न हुई अंगिन कर्म करें बहु तेरे, सुखने सुख न होई ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े जे लोचे सब कोई रहाओ, जप तप संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना दूजे पाए सुवाई, बाहर देख बहुत चतुराई मनवा जय विस्तावे, होमे दया प्यार शब्द न चीने फिर जूनी आवे, नानक नदर करे सो गूंजे सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे एक समाए समाए, सूही महला चौथा कर दूजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरमत नगरी खोज खोजाए हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ, हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रव प्यारा टूट टुडाई, सत्संगत मिल हर रस पाई, तुरमस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक सुखा।

नानक हर रस हर रंग समावे, तूही महला चौथा। जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सह समाए, हर रस जन चाखो जे पाई, तौकत अनत साद लो भाई। रहाओ गुरमत रस रासो उर्धार, हर रस राते रंग मुरार, मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदाती सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित तैसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इत गाए। पतित जात उत्तम भया चार वरन पै

जो दूजै पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध श्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीत

कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब दुनी निधाना, तुमरी महिमा बरना साको, तू ठाकर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यों पावे त्यों रात मेरे साहेब, मैं कुछ बिन अवर ना कोई रहाओ। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आ गया अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस तै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे। विचे धरती विचे पानी विच काश अगन तरी जाए, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जब परम पौ दूर की जाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने अमान दिवाए, जो धरती

क्या तुझ पे आख सुनाइए बुरा पला तुझ पक्ष सूझे जिहा को करे तिहा को पाइए। मेरे साहिब तू अंतर की दिल जाने बुरा पला तुझ सब किस तूजे तुझ पावे तुवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मानस भगत आए इतना सतगुर मेल सुख देवे एक मन मुख तंद पिटाए। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुझ सबना सिर लिखिया लेख देही तू नजर करे केहा को होवे बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने सब तुझनो नित त्याए जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले जन नानक सो खाए पाए। कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुकत पे जिन हर नाम से आया तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग भय गुरबचनी जिना जपया मेरा हर हर तिनके हो मैं रोग गए रहाओ। ब्रह्मा विष्णु मां दियो त्रै गुण रोगी विच हो मैं कार कमाई जिन किए किसे न चेते बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई। हो मैं रोग सब जगत व्यापिया।

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसे नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाई है, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोर करो अरदास, खुद पावे तान है रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभ सदा ते आए। सूरी महला पंजवा। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुकम तजै अभिमान। तैसो राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सकी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभ पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, दिनों करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावे देख दूर। सुई महला पंजवा। गृहवास गुर की ना हो कर किनार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी फिर को लोड़ी। कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंत रिझाया, वस्त्र लीना गुर परम चुकाया। सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा। प्रगटिया सूर ज्योत उजियारा, सेज विछाई सर्द अपारा। नव रंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया। सुही महला पंजवा। उमक्यो हियो मिलन प्रवताई, खोज करो देखो प्रह जाई। सुन सदेश रो प्रह गृह सेज विछाई, प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई। किन विद हीरो तीरे निमानो, मिलता जन हो तुझ कुर्बानो। रहाओ एका सेज विछी तन कंता, तन सूती फिर सज्जा गंता। पियो मधुरो तन मतवंता, तन जागे जे फिर।

हुए कृपाल सब मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी तब करें फिर पाया, सगल सिगार हूँ मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह फिर है पाई, खोलो कपाट का मन थे।

सेव कमावो क्या कहरी जाओ विदपित पावो दर सारे मित नहीं पाये अंत न लइए मन करते चरनारे पावो दान टीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक तो गिर।

कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देख की वड्याई तुम सुखदासे पुरख वाई। रहाओ दूजा सुई महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोह रंग लपटाना रहाओ। लोभ लहर को बिगत फूल बैठा सात जना का दर्श ना जीता। कभू ना समझे अज्ञान गवारा बोर बोर लपट्यो जंजारा रहाओ। बिके नाद करन सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखत अंधे छोड़ जाए चूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बस करी जय। कर कृपा मोहे साथ संग दी जय। तो किस पाये जो हो ये रे ना जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा कर में ठाकुर नदर ना आवे। गल में पान ले लटकावे परमे पूला साकत फिरता। नीर बिरोले खप खप मरता।

गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता। सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी। सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती। रहाओ पाम मलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी। जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो मोय प्राण पतीरी। मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सो।

खरीद हों दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा कोट दास जा कै दरबारे निमक निमक वसै तिस नाले हों किछ नाही सब किछ तेरा ओत पोत नानक संग।

चाहे गीत नाद अखारे संगा, उहा संत करे हर रंगा, चाहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा, दोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सुही महला पंजवा, जाके दर्श पाप कोट उतारे, पेट संग ए पवजल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, रहाओ जाका सबक सुनत सुख सारे, जाकी तैल जमदूत बिदारे, जाकी तीरथ इस मने सुधारे, जाके सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक प्रभ

बादशाह शावा पारी मरना जोधी से सो काले करना कूड़े मोह लपलपताना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निधान नानक कहो करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तुही महला पंजवा। कट कट अंतर तुम्हें बसारे सगल समगरी सूट तुम्हारे तू प्रीतम तू प्राण अदारे तुम ही पेक पेक मन विसारे रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे ओट गही अब साथ संगारे अगम अगोचर अलखा पारे नानक सिमरे दिन रह नारे सुही महला पंजवा। कवन काज माया वड्याई जाको बिन सतबार न काई ए सुखना सोत नहीं जाने।

जाके सिमरन कछ पौ ना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी, रहाओ सात संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस

पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कार जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुचीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे नी जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे

कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किछ करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी। सुही महला पंजवां, गुर परमेश्वर करणे हार, सगल सिष्ट पौधे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे। सुही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस जाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल गटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला। सुही महला पंजवा, दर्शन देख जीवा।

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। सूही महला पंजवा। वैकुंठ नगर जहां संत वासा, सब चरण कमल रिद महि निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे, लोभ मुआ तृष्णा बुझ

कर कृपा प्रभ अपना करया। तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोक महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी।

दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए, सुई महला पंजवा दीन छाए, दुनी जो लाए दोही सराई फुनामी कहाए, जो तिस पावे सो परवान, अपनी कुदरत आपे जान रहाओ, सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कै कोसे दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे, अगम अगोचर सच साहिब में।

प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवे खाप खर्चत सुख अनद विहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक।

तुझ बिन ठाकुर कौन हमारा रहाओ, साथ संगत क्यों प्रीत बन आई, पूरब कर्म लिख तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न साके तीने ताप, निमख न बिसरे हर चर।

आद गावे गुण सदार साला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करें बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा दैती जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंधे नित पारक माजरे पाज

कामना तौल हर जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभु चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज न किते काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कह ओ शोभा पाए पाठ पटंबर दित्या जे रच लो भाए सब किसे तुमरे हाथ प्रभु आप करे कराए साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए कुही मैला पंजवा हर का संत प्राण तन तिसका पनिहारा पाई नीत सुख सक

न्याई पद अभिमान करनी परो हर गुण निद पाई अवलोकन पुने पुने करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार चितवो मन आशा करो जन का

गुरिया मोहन लाल ना, जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया, रहा निर्गुण हरिया सरगुण करिया, अन कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहा आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहुविध क्रिया, पर को हिरिया दिखना क्रिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया। सुही महला पंजवा, रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा, रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा, वर्ण चेन

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे तो परवान मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा कोई अवर न तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते। दिन रैन साथ साथ गुण गावा जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा विसरे नाही जित।

आऊं तो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग तिन शरणाई पाया। रहा वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे दिल लाते ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन केट्यो।

कहा निम सिमरत जित छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रसादी करिए रहाओ। कोट तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड ना कोई, भगता बने आई प्रभु अपने स्यों, जल थल मैयल सोई रहाओ, कोट अपराधी संत संग उदरे, जमता के नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर्ष्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा के तक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर पेटिया, से सब ते पे निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरण आई, तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय, तुद चित आया उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा

अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखे ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राय मुझसे कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतू काची देह आनी कृपा करो कब करने हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आई है तेरी गत में तू है जाने कुदरत की न पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अगे

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुखला।

पातशाह सच्चे से पीराते, सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते। पखा फेरी पानी टोवा, हर जन के पीसा।

कुर्बान जाए उस वेला सुहावे। जित तुम रह द्वारे आया नानक को प्रभ है कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही मैला पंजवा। तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए। मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास।

से संग पाए। अंतर की गत तुझ पै सारे तुझेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो एक दान।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ

ठग मुठी कूड़ियार जियो सच्चे सेती रतिया जन्म ना दूजी वार जियो रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो रंगन वाला सेवी है सच्चे सो चित लाए जियो रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन ना है जियो अवगण मुठी जे फिरे बदत आए ना पाहे जियो गुरु रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो चित्ते जिनके कपड़े मैले चित कठोर।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ। मन तन सच सलाए।

सीमा गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे, मूर्ख मन समझाए आँखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख परम पुलाना ना किस रंग है, मरसी हो विडाना मन तन पंग है, गुर की कार कमाए लाहा तारे आने, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया।

जो आरन लोहा पाए पन कड़ाई है, क्यों साकत जोनी पाए पवे पवाई है। बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, होमे आवे जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखन हार, हर नाम ते आई है। मेले तुझे रजाए शब्द कमाई है। तू कर कर वेखे आप, देह सो पाई है। तू देखे थाप उथाप, दर भी ना आई है। देही होग खाक, पवन उड़ाई है। इहो किथे कर औकात, महल न पाई है। देहो दीवी अंधकोर, कब मुहाई है। गर्भ मुसे कर चोर, किस रुआई है। गुरमुख चोर ना लाग, हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग, जोत दीपाई है। लाल रतन हर नाम, गुर सुरत बुझाई है। सदा रहे निकाम, जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है। नानक मेल मिलाए, जे तुद पाई है। सुही महला पहला, मनो ना नाम विसार, एन स्त्याई है। जो राखे कृपा तार, तिवे सुख पाई है। मैं अंदुले हर नाम, लगती तोहनी। रहो साहिब की टेक, नाम हो है मोहनी। रहाओ जह देखो तह नाल, गुर दिखा लिया। अंतर बाहर पाल, शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए, नाम निरंजना। तुद पावे तिवें रजाए, परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे, मरना आए कह। जन्म मरण परवान, हर गुण गाए कह। हो ना ही तू होवे, तुद ही साजिया।

आपे रहा समाए सो विस्माद कया। तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख दूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वैता एको जाने, हों में दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रहा समाई। रहाओ गुरमुख गावे, गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंगा अंग कमावे, दिख खटे संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आख है, होमे विच्चों जाए। आपके दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप साचे रंग राता, गुर कैसे सुवाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा कृष्णा दादा, बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सतसर नावन, गुरमुख आप बुझाए। असर तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर तिसकेरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता, सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे।

सब वो सच सच सच वरते, गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते, गुरमुख आप पछाने। नाम से आए तो सब गुरु पाए, जो इच्छा सो फल पाए, नानक तिसदा सब कुछ होवे, जे विच्चों आप गवाए। सोही महला तीजा, काया कामन अब सुआल्यो, फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागन, गुरु का शब्द समाले, हर की भगत सदा रंग।

काया अंदर समकिच वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगद बूजे नाही, बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख जित्ता लखाए। काया अंदर रतन पदार्थ पगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाइए, गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलन हारा, इह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाइए, मोल कित ही नाम पाइए, नाही नाम पाइए गुर विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, और क्या तो करे चतुराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे, सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही, का जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए, जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मरवंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा रे परवाहो रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिये वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे

नरके कोर पवन। ये मन जैसा सेवें तैसा होवें, तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु न जाए। मां पुरखा का बोलना होवे किते परखाए। कोई अमृत परे भरपूर है, ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवड़ पागी जे

मन मुख मन ना पिजई आत्मे ले चित कठोर सपै दूध पियाय अंदर हिसने कोर आप करे किस आखी है आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे।

सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन। हो मैं मैला जग फिरे मर जमे वारो वार पये किरत कमावना कोई ना मेटन हार। संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार। गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए। हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सो लिव लाए हौ मैं मेरा छड़ तू ता सच रह समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रंग गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है, चले ना चल दिया नाल, विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो समाल, एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमती सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए, गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए, कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए। चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुर सेवन, अंकर नव निर्नाम है खान खर्चन ना निकुटे। हर गुण सहज रवन ना होए जन्मे ना मरे ना होए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर स्यों केल किरन। सज्जन मिले ना विछड़े जे अमजन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है, कित विद मिलिया जाए गुर के शब्द प्रम कटी है अचिंत वसे मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन हो तिनके बलिहारण, मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन, उर पूर्व होवे लिखिया गुर पाणा मन लेन। वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान, गुर पूरे वे खा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी मन वसे तित कट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सब थाए, मंगा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए। बुरा कला चिचर आपदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए थाए, जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सोही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किस पे आप विचाई दर्शन हर देखन कहताई। कृपा करें तो सतगुर मिले हर हर नाम से आई रहाओ। जे सुख देहे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे से आई, जे भुख देहे ताई ही राजा दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी टोवा जो देवे सो खाई। नानक गरीब कह पया द्वार है हर मेल लहो वड्याई, अखी काड करी चरणा तल सब करती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुझे अराधी जे मार कढे भी त्याई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाई।
जे तुद वल रह ता कोई किहो आखो, तुद विसरे मर जाई। वार वार जाई गुरु ऊपर तै पैरी संत मनाई, नानक विचारा पया दीवाना हर तौ दर्शन कह ताई। चखर चांगी मीह वरसै पी गुर देखन जाई, समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यो धरती सोब करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिरसाई। सेवक का होई सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई।

आई। जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेवक पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस दे वाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बच्चे ता गुर वड्याई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किच थाए न पाई। पाला कक्कर वर्फ वर्ष है, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखूं गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

बिख्या कै संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कब पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे।

कछु सियानत उकत ना मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल हो नानक अरदासे।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनासा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रमन गुणा कटिये जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच

आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां करनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिथिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कभू न होवे पंग जियो। पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो। काची देहा विंसनी, कूड़ कमावे तंग जियो। नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो। हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनों करता विसरे, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आपने

तैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल किहा पाई मुदातड़ी नित हृदय रखा समाल पाग जुलाई पंद पौ नई दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां।

हूँ कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहा पर पूरे। होए निवाणी तह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संसाए। सुही महला पंजवा, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। नाम निधान अपार पगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग न सह। रहाओ मोह बाद अंकार सर पर लुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरत अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार।

पहला कुचजी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचजी अमावन दोसड़े हों क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाम जियो जिन्नी सकी सोरावया से अंबी छावड़िए जियो से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे ओ जियो क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाम जियो इकत तोल नाम बड़ा हों सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सहदतिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो हों इनी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली सहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो सुती सुती

गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दरसावड़ा, न लगे तत्ती वाओ जियो। हों आपको बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर पग खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया फसाओ जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हों रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। जो

परम पुराणी जो मन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सहज न पाया। सतगुरु पूछ नव मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बालकन रड़े का बिन फिर तन कुमलानी। बाबा मैं वर दे मैं हर वर पावे तिसकी बलराम जियो रब रहा जुग चार त्रिभुवन बाणी जिसकी बलराम जियो। त्रिभुवन कंत्र वै सुहागण अवगणवंती दूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे। हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वैसे नानक मैं वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे। बाबा लगन गणाए हम भी बन जा सहरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो। कृपाया करते कर पाया मेट न सके कोई जांजी ना उन्दर है ने केवल रव रहा त्यो लोई।

जियो रहती देख दूर फिर रावी कर सोई है बलराम जियो साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मखपूरी प्रधाने संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत पंथ समाए राग सुही मेला पहला संत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम कर साजने आए साचे मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया अंदिन मेल पया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजने आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे ज्ञान महारस ने त्रि अंजन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया मंथन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए काल विकाल पै देवाने मन राखिया गुरु ठाए नानक अवगुण सब जलाए गुरु संगम तब पाए।

आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। कर आप नड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा। दर्शन देख कही ने केवल जन्म मरण दुखना सा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुवाई।

रंग रासे अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदासे तस्तर मार वसी पंचायण अजल करे विचारे नाम राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे वर पायड़ा बालड़िए आशा मनसा पूरी राम फिर रावेड़ी सगदरली रव रया नह दूरी राम प्रभ दूर न होई कट कट सोई किसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो किसकी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपुरे सत्ताई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलोआ सिर ताजा राम हों विषम कई देख गुना अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी।

प्रसाद राग सुई छंक महला पहला कर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी लिया व्याहो हुआ सोभ सेती।

पंच शब्दी आया जिन किया तिन देखिया जग तंगड़े लाया। हों बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सू गाड़िया मन लीड़ा दीता। लिया का दिया मान जिन सू से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होए रलिया जी से ती गह रहे। सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता वरीता। गुणा को हो वै वासला कड वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय। सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए। पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए। जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत पी जय। गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय। आप करे किस आखी है होर करे न कोई आखणता को जाई है जे पूलड़ा होई। जे होए पूला जाए कही है आप करता क्यों फुले। सुने देखे बाद कहे है दान अन मंगिया देवे। दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई। आप करे किस आखी है होर करे न कोई। सूरी महला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई। गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई। सुख सहज आवे साथ पावे साथ की मत क्यों टले। इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले। परपंच मोह विकार था के कूर कपट न दोई। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई।

किया गुर कह मोल कराया, आप लड़ा तब सहज पछाता, जामन सा फैलाया। इस नाल गुण गावा जीत पावा, क्यों मिले होए पराया, साहिब सो साल आई है जिन जग तो पाया। आए गया की ना आयो, क्यों आवे जाता, प्रीतम से मन मानिया हर से तीराता। साहिब रंग राता सच की बाता, जिन बिंब का कोट उसारिया, पंच को नायको आप सिरंदा, जिन सच का पिंड सवारिया। हम अवगुणियारे तू सुन प्यारे, तुद पावे सच सोई, आवन जाना नाची है साची मत होई। अंजन कैसा अंजी है, जैसा फिर पावे, समझे सूझे जानिए जे आप जनावे। आप जनावे मार्ग पावे, आपे मनुआ ले वे, कर्म सुकर्म कराए आपे, कीमत कौन अपे वे। तंत मंत पखंड ना जाना, राम हृदय मन मानिया, अंजन नाम तिसे सूझे, गुर सबदी सच जानिया। साजन होवन आपने क्यों पार कर जाही, साजन राते सच के संगे मन माही। मन माहे साजन करें रलिया, कर्म कर्म सब आया, अठहठ तीरथ पुन पूजा, नाम साचा भाया। आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया, साजन रंग रंगीलड़े रंग लाल बनाया। अंधा आगू जेती है क्यों पादर जाने, आप मुसे मत होछिए।

के कछ ना सूजे, अंध बूढ़ो तंगली, दिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वसे, कर जोड़ गुर पे कर बिनंती, राह पादर गुर दसे। मन परदेसी जेती है सब देश पर आया, किस पे खोलो गंठड़ी, दुखी पर आया, दुखी पर आया।

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल न फुले। जय जयकार करे तुझ पावे, गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद सुख सोहेला हर त्यावो, गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे। बलिहारी गुर अपने बिट्टों, जिन कार्य सब सवारे। हर प्रभु कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो। नानक कह सुनो।

का हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा, साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई, हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए, जय जिस पूज हो वह हर जन की, जो हर हर नाम से आए, नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए उठे कर माही। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सुही महला तीजा करती जा, भगत जना की हर जियो राखे है,

मुख आप लखानी। भगता की चाल सच्ची अप निर्मल नाम सच्चा बनवाया। नानक भगत सोए दर साचे है जिनी सच्चो सच कमाया। हर भगता की जात पत है भगत हर कै नाम समाने राम। हर भगत करे विच्चों आप गवावे जिन गुण अवगुण पछाने राम। गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने पै भगत मीठी लागी। हम जिन भगत करें दिन राती कर ही मैं बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल हर जियो वेखे सदा नाले। नानक से भगत हर कह दर साचे हम जिन नाम संभाले।

मर जन में दुख होई, दूजे पाए परज भी गोई, विन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सत सोई, नानक नाम मिले वडियाई, दूजे पाए पत खोई। भगतां कै कर कार साचा, हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना पे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे, नाम निधान सच पाया, सदा फुट कदे नाम खुटे, हर दिया।

गुर कै सबद सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग सोभा पाया, सुही महला तीजा। सबद सच्चै सच सोहिला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम, हौं मैं सब किलब काटे, साथ रखिया उधारे राम, सत रखिया उधारे दुत्तर तारे, फिर पाव जल करण न होई, सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच मिठा लिया सोई।

विश्वाचा पुरुष प्रभु सोई राम। सब सच वर्ते सचो बोले, जो सच करे सो होई। जय देखा ते सच पसरिया, और न दूजा कोई। सच्चे उपजाय सच समावे, मर्जन में दूजा होई। नानक सब कुछ आपे करता, आप करावे सोई।

हर नाम रहे लिव लाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम, निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी, जिन मन वसया सही जन निस्तरे कट कट सबद समाणी।

नाम सच्चा सोहिला सच्ची सच बाणी सब दे ही सुख होई। सुही महला तीजा जे लोड़े वर बालड़िए ता गुरचरणी चित लाए राम सदा होवे सुहागनी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए गुर के सह सुवाए सापन कंठ प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर के सबसी गारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन आपे आप उपाया नाम सदा तिर रावे अपना जिन गुरचरणी चित लाया।

आए रंग सोरलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने। नानक सुहागन सावड़ पागी जे चले सतगुरु भाई।

प्रभु दूर वसै। इकना मन आधारो राम, इकना मन आधारो सिरजनहारो, वड पागी गुर पाया, काट काट हर प्रभु एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया। सहजे अनुद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो,

बलराम जियो। अंतर ममता कूड़ कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन कके खाया। आपे दया करे प्रभदाता,

गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मंथन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंजन हर लिवलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई हर प्रभ ठाकुर।

पूजा। गुरुमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सह सुभाए, अंजन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रहै रिवलाए, वड्डे भाग गुरपूरा पाईए, अंजन नाम त्याए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए, संगत संत मिलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए, पै पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई प्रम पागा, हो मैं बिनती पीरा, नदर प्रभु सत्संगत पाई, निज कर हो आवासा।

साथ शब्द विलाई अंजन सहज रहे रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाने अवर न जाने दूजा सब में रव रहा सो प्रभ अंकर जामी राम गुर शब्द रवे रव रहा सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रविया सोई गुरमत सच पाये सह समाये तिस बिन अवर न को।

आई राम अंतरे हो में ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे।

हम मन सन देवा सतगुरु मैं मेले प्रभु गुणता से तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबा से वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे गुरु सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हौ तुझ बाजू।

मन दह दिस चल चल परमिया, मन मुख परम को लाया, नित आसा मन चितवे, मन कृष्णा भुख लगाया, अंता तन तर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक नाम।

सेव ठाकुर नाथ पराणा, सुन बावरे जो आया तिस जाना, निचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जाए संत ना की जाए, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ।

पाई साचे सृजनहारा जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दस पेटिया गुरपुरा नान सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जामिया। सत संतोख बजे वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै विनाशे सगल नानक प्रभ पुरख करने हारे। उपजया तत ज्ञान सहुरै पई है इक हर बलराम जियो।

हर रंग अंधन जागे, हर रंग जागे, पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे, परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी, सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ सबद सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए, हर हर दुख नासे।

तू वरदाना कर मेरा मत साई, कृपा की जैसा मत दीजै, हाथ पैर तू त्याई। गर्भ ना की जय रेण होवी जय, तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कणचेरी राम। तुम गौहर अट गहर गंभीरा, तुम फिर हम बोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे, हो इतनीक लोरिया राम, हो किछ नाही, एको तू है, आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना, आसन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम, सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सिरंदे, मन मुख फूली बहुती राही, फाती माया फंदे।

तू पर्वत मेरा ओला राम है बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर स्यो मन माना प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हो निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन कोट सतगुर मेरा पूरा इस दिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब किसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकी शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहारे नानक सर कुर्बाना ऐसा गुरु वडकागी पाये जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूड़ी नित नापे राम हर तूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बाहर जोन ना आई है गुर चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापे नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर ताप है हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन्ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए सांत सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन कर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आराधे मेरा राम हर आराधे जन पंख सा दे दूख न व्यापे कोई जल कल नहीं अल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाठे प्रभ नेर हूते नेरा नानक को प्रभ कृपा की जय नेत्र देखे दर्श तेरा कोट करन दी जय प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सो सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहत्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभु कृपा की जय हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे चरण चले प्रभु मार्ग राम हर सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार ग्राम पर जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाविकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा।

महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप सजावे राम हर जो गाय परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी पला संजोग मूरत कल साचा अचल नींव रखाई जन नानक प्रभु कहे दयाला सर्व कला बनियाई आनंदा बजे नित वाजे कार ब्रह्म मन उठाराम गुरुमुखे सच करनी सारी बिन से प्रम पहच उठाराम अनहद बाणी गुरुमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभु अपना करया कर मैं नव निध परे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम दुख पाप का डेरा काठा कारज आया राशी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच कर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याय सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल खल में यल सोई जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई मेरा कर बनिया बन पाल बनिया प्रभ पर से हर लाया राम मेरा मन सोया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याय साचा सगल इच्छा पाया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वादाया करी नदर स्वामी सुखेंगामी हल्प कल सवारया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारया सुही महला पंजवा तै सागरो तै सागर तरया हर हर नाम त्याय राम बोथड़ा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लंगाए राम गुर शब्दी तरिय बहु न मरिय चूके आवन जाना जो किछ करे सोई पल मानो तामन सहज समान दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई अनग विनोद सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कभू न जाय सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कौ नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने अनग विनोद कहे नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आप न रह प्रभ आप सिगारी सोबावंती नारे राम सह सुभाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम जब एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल फल मैयल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए सुही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जप सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगासे गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम आराधे कटिए जम की फांसी राम काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर

ते आए सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए। संत सजन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी सब सवारे सदगुरु पूरे नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाड़ भगतन का राखा सो प्रया दयाला जी जन सब सुखी वसाए प्रब आपे कर प्रतपाला। जय दिसपुर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाई कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज पगद पर पंजन अनहद बाजे सुनिए राम। अनहद तुनकारे तत विचारे संत गोष्ठ नित होवे हर नाम आराधे मेल सब काटे किलविक सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना बहु न पाई है जोनी है नानक गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साध छुनी है। सूही महला पंजवा संता के कारज आग खलोया हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगल विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया।

खाप खर्चक बिलचक सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई निकुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाथे दूख न नेड़े आया सांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूप सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार इतनी ही किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम गुण गाए गोविंद अमद उपजे साथ संगत संग बनी जिन उद्यम किया काल के रात इसकी उपमा क्या गनी अखर तीरथ पुन क्रिया महानिर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाये अंदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पी जय बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जी जय राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान है अवगुण को ना चितारे पतित पावन हर बिर सदाए एक किल नहीं पन्ने काले खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास वा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा मेरा सुंदर स्वामी जी हर चरण कमल पग छारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जेवल अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई चरण कमल जब सागर तरया कब जल उतरे पारा नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा हर निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो गुर सतगुर कहया जी।

आवे जाए, परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया, नानक शरण कृपा नित स्वामी बड पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा, श्लोक महला तीजा। सुहै वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए, तिस छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग, सुद पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार, सहज सच फिर रावया हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आत्मेली कर पार, नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सं सदा समाल, नानक जन्म सवार है अपना कुल भी छुट्टी नाल। कौड़ी आपे तक प्रचायन आकाश पताला, हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाएदा सच्चे दीन दयाला, सबना रिजक संभाएदा तेरा हुक्म निराला। आपे आप वर्तदा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागण का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सौ न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सौ पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहुपित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मेल है सो तुद मिले सोई सत्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए जो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी सकत स्वे कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंद ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्व सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जा पई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाईनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोथी है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो वे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेये सोहरे बहु सोगा पाए तिस पूज करे सब संसार ओहर लाई किसे दी ना रले जिस रावे सृजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इहु जग आप उपायन कर चोज विधान पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए पुआई है मन मुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बच

जाओ। रात कारण तन संची है, पलके चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए। महला दूजा, बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है नानक कार सार। महला दूजा, मन हठ तरफ ना जिपे जे बहुता काले, तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे। पौड़ी, करते कारण जिन किया सो जाने सोई, आपे सिष्ट उपायन आपे फुनगोई। जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई, सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई, गुरमुख सदा सलाय करता करे सोई। श्लोक महला दूजा, जिना पाओ तिन नाहे पाओ, मुझ पाओ निविव्या, नानक एहो पटंतरा तित दीदान गया। महला दूजा, तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता

सच से आयन से सच्चे गुर शब्द विचारी हो मैं मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पै गवारी जिनकी ये तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी श्लोक में।

फैलाती जा। कामन को सिंगार कर जा कहना कंत में आए, मत से जय कंत ना आवई एवं बिथा जाए। कामन फिर मन मानिया को बनिया सिंगार, किया तो परवान है जा सो करे प्यार। कौ सिंगार तबोल रस भोजन पाओ करे, तन मन सौंपे कंत को नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिंगार, सेजे तंत न आयो एवं पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए। पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई, नाम ना लगे प्यार। सतगुरु मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार, तन मन रत्ता रंग स्यों होमे तिसना मार। मंसन निर्मल अत सोहना तेतिया कृष्ण मुरार, पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो, जिन रच रचना हम किए। सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह, आप खड़ो में आप कर आप पीने आता हो। गुरुमुख सेवा थाई पवे उन मन तत् कमाहो। मस्कत लहो मजूरिया मंग मंग खसम दराहो, नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न, तिन जर वैरी नानका जे बुद्धे थिए मरन। पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर, गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर। मन तन हृदय रव रया हर हीरा हीर, जन्म

नानक एहो तन जाल जिन जलिया नाम विसारिया पौंदी जाए कराल पिछे हक नाम बड़े तित निबंधे ताल महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत ना आवही किती लास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच कुरमान सदा ने चल रव रहा सो पुरख सुजान गुरु प्रसादी सेवी है सच सगद निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमतमान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरयान खोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान। महला पहला नान चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक पौ लखी नात्या देखा चढ़िए सहोर बहर धोती तूमड़ी अंदर विस्निकोर साध पले अन्नात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलायदा जग तंदै लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दै दिस ए मन पाऊदा गुर ठाक रहाया नाने नो सब लोच दी गुरमति पाया तुर लिखिया मेट न सकी जो हर लिख पाया। श्लोक महला पहला दोए जीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बन जारे खुले हट हुआ वापार जो पहुंचे सो चलन हार धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा प्रवान कर आए वजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई। महला पहला राती होवन कालियां सुपेदा सेवन देव बग्गा तपै कना कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कभे न पावे मान। पौड़ी काया कोट रचाया हर सच्चे आपे एक दूजे पाए खुआयन होमे विच व्यापे इह मानस जन्म दुलंब सा मनमुख संतापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर खापे सब जग खेल रचायन

सिफती सार ना जाननी, सदा बसे शैतान। गधो चंदन खौलिए पी साहू स्यों पान, नानक कूड़े कत्य कूड़ा तनिए तान। कूड़ा कत्तर कछिए पूरा पैनन मान, महला पहला बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान। एक दाते एक मंगते नाम तेरा प्रवान, नानक जिन्नी सुन के मन्या हों तिना विटों कुर्बान। पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया, हों मैं झगड़ा पायुन झगड़े जग होया। गुरमुख झगड़ चुकायुन इको रब रहा, सब आत्म राम पछाणिया पौ जल तर गया। जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया, श्लोक महला पहला। सतगुर पीछिया देह मैं तू समरथ दार, हों मैं गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार। लग लोग पर जाली है नाम मिले आधार, एनस नव तन निर्मला मैला कबहू न होए। नानक ए बिद छुटी है नदर तेरी सुखोए, मैला पहला। इको कंत सवाईया जिती दर खड़िया, नानक कंते रतिया पुछे बातड़िया, मैला पहला। सबे कंते रतिया मैं दुहागन कित, मैं तन अवगुण एतड़े खसम ना फेरे चित, मैला पहला। हों बलिहारी तिनको सिफत जिना देवात, सब राती सुहागनी इक मैं दुहागन रात। कौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर, गुरमुख लेहो मिलाए जन पावे नाम हर। अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत कर, हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर। जग में वर्त आप हर से प्रीत कर।

हंस सिफत सलाहन छड़ के तरंगी लगा हंस फिट इवे हा जीविया जित खाए वधाया पेट नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन हेत। पौड़ी ताड़ी गुण गावे नित जन्म सवारिया गुरमुख सेव सदा है चावर भारिया कर दर पावे महल नाम प्यारिया गुरमुख पाया नाम हो गुर को वारिया तू आप सवार आप सिरजन हारिया। श्लोक महला पहला दीवा बले अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापा खाए उगवे सूर न जापे चंद जह ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत वेद पाठ संसार की कार पर पढ़ पंडित करे विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतर सुपार। महला पहला शब्द साड़ ना आयो नाम ना लगो प्यार रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर नानक पया किरत कमावना कोई न मेटन हार। पौड़ी जे प्रभशाला है अपना सो सो बापाए सौ मैं विच्चों दूर कर सच मन वसाए सच बाणी गुण उतरे सच्चा सुख पाए मेल पया चिरी विछुनिया गुर पुरख मिलाए मन मैला इव शुद्ध है हर नाम त्याए। श्लोक महला पहला काया कुमल फुल गुण नानक गुप समाल एनी फुली रो करे अवर के चुनिया डाल। महला दूजा नानक तिना बसंत है जिन कर वस्या कंत जिनके कंत दिशापुरी से एनस फिरे जलंत। कौड़ी आपे बख्शे दया कर गुर सतगुर बचनी अंदिन सेवी गुण गवा मन सच्चा रचनी प्रभ मेरा बेअंत है अंत किने न लखनी सतगुर चरणी लगिया हर नाम नित जपनी जो इच्छा सो फल पाए सी सब करे विच जचनी। श्लोक महला पहला पहल बसंत है आगमन पहला मौल्यो सोए जित मौल्य सब मौल्य तिसे न मौल्यो कोए। महला दूजा पहल बसंत है आगमन तिसका करो विचार नान सो साल आई है जे सबसे दे

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे, दूजी कारे लगिया फिर जोनी पावे। नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे, गुर के सब सलाइए हर नाम सुनावे। सतगुर सेवा सतल है सेवे है फल पावे। श्लोक महला दूजा, किसी कोई कोई मंज निमाणी कितू क्यों ना मरी जय रोए जा लग चितना आवई। महला दूजा, जा सुख पास रावे हो दुख भी संभालोए, नानक कह सियाणी है क्यों कंत मिलावा होए। पौड़ी, हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई, तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई, जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई। नानक दे परवाओ है तिस तिल ना कमाई। राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की, कबीर के इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अवतर आए कहां तुम कीना, राम को नाम न कभू लीना। राम ना जपो कवन मत लागे, मर जाए वे को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख कर

सूही कबीर जी, हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, रहन गई मत दिन भी जाए, पल गए बग बैठे आए, रहाओ काचे करवे रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, क्वार कन्या जैसे कर सिगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा, काग उड़ावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो, अमल सियानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तय खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया, रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी, लेओ निबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सोजन पुरख सभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया पया कराया, कहो कबीर तेई नर फूले, खसम विसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो, ललित थाके नैन श्रवण सुन, थाके थाकी सुंदर काया, जरा हाथ दी सब मत थाकी, एक ना खाक स्माया।

जब लग कट में साता जे कट जाए ता पाऊ न जासी हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान पजे अवगत को तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा। सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर के पुकारिया तिन्हों लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नु सवतावे रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला ले ही। बेहतर कर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सो दिया बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा का नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की इको ओंकार सतगुर प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने अज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे नांतर राखे अगरा देख ना सुने अपाखे सो कत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दोए पख ही नी जिन ना निरंतर भगत ना कीनी पुर सलात का पंथ दुहेला संग न साथी गमन इकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानू त्यों करगत मेरी। सूही जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूछ रहन फिर नाही संग चलत है।

तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट की तरहार चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सवार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दहज संध्यारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यो तन ऐसा जैसे काश की ताटी, जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

तें साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछतानी रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा होए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन कूही मुंड अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभु साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बो पीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, से फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करंग दुहेला। हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक पापी ने पतली सह केरे बोला, दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए न मेला। कह करीब सहेलियो सहो अलायसी, हंस चल सी डुमना।

ਪਹਿਲਾ ਚੌਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਵਡਾਈ ਜੋ

जो किछ होआ सब किछ तुझते तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चुकराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ न कथ न जाई जो तुझ पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई केते कुकर हो बेगाना पौका स्तन पाई भगत हीन नानक जे होएगा तां खसमे नौ न जाए बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेश कलंदर कठी तीरथ नावा

तू दाता नाम परवान, ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलग।

चूख चूठा दिन चार नाम मिले चांगन अंधियार चक छोड़ी सहसा नहीं कोय बाप दिसे वे जात न होए एक एक को ना ही सौ कोए करता करे करावे सोए शब्द मोए मन मन से माया ठाक रहे मन साचे पारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुरु बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम खुले बौराने हर दिन क्यों रही है गुरु शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जीवरा रह ना सके खिन सतगुरु बूझ बुझाई रहाओ मेरा प्रभ विसरह हो मरो दुखाली सास विरास जतो अपने हर पाली सब बैराजन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली अटक कथा कहिया गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हों में लेट चले गुर शब्द समाए मन मुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास बिलावल महला तीजा हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग छाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहस्यों जित हुन खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ न गई लिव लागण जिन हर के चरण सारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तें दुख निवारे रहाओ तू दयाल दयापत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख बखाने गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही न जाई।

सच्चे आप सवारे परम फुलाने से मनमुख कहिए ना उर्वार न पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का सबत संभाले हर जन माया माए निस्तारे नाम साध हो गए जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल मैला की जाए अतुल क्यों तो ले आ जाए दूजा हो सो जी पाए किसते दूजा नाही कोए तिसदी कीमत किको होए गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुखदा जाए रहाओ आप सराफ कसवती लाए आपके परके आप चलाए आपके तोले पूरा होए आपे जाने को सोए माया का रूप सब चिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिस आए सब सच दिखा ले ता सच समाए आपके लिव पात है आपे आप बुझाए आपे जाते आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आप सुनाए आपे बिलावल में लाती जा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब में एक समाना सतगुरु परचय हर नाम समाना जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए अंदिन लागे सहत्याना रहा क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभिमाना जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी सब कोई करो दिखाव खियाना आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना जो आप चलाए तिन्हें कोई चाल है जो हर पाव है भगवाना कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे कामा इकना कर मैं देवड़े आई इक परम पवे अभिमाना बिलावल महला तीजा पूरा खाद बनाया पूरे देखो एक समाना इस प्रपंच में साचे नाम की वड़ियाई मत को करो गुमाना सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना ए बाणी जो जियो जाने इस अंतर रवे हर नामा रहाओ चौं जुगा का हुन वेड़ा नर मनुखानो एक निधाना जत संजम तीरथ ओना जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा जुग जुग आपो अपना कर्म है।

कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूके मन अभिमाना, कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित पर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हों तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए, हर जियो आग वसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए। गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सब रंग आए, निज पर वासा हर गुण गाए। रंग चलू ले हर रस आए, यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा, सतगुरु ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा, नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा। पूरे गुर ते वड्याई पाई, अचिंत नाम वसिया मन आई। हों में माया शब्द जलाई, दर्शा ते गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा, हम दिन अनद होवे मन मेरे। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई, पूरे गुर ते शब्द गुजाई। जीवन मरण को संसर वेख है, बहु न मरे ना जम पेख है। कर ही मैं सब कोट निदान, सतगुरु दिखाए गया अभिमान। सब ही लागा सहत्यान, हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम से आई। जह देखा तैरिया समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया। गुर का सब तक मीठा लाया, नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा। धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिख लिखे गुरु पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जन अपना। जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कौन कौन की गत नित कही है, हर की ये पतित पवन्ना। ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे, हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पव कारण, हम पापी राख कपना। हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा। हम मूरख मुगध अज्ञान मती, शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर, हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम है रामा, गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर तारे, हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर, हर जति है वड्डे कर्मा। नामहीन त्रिग जीव से तिन वड दुख सम्मा, कोई फिर जोन पवाई है मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है, तुर पूरब लिखे वड कर्मा। गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया, जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुगत मोह बिखिया, बहु दुर्मत मैल परा। तुमरी सेवा कर ना सकते हैं, प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जन ऊपर कृपा करतारी मिल सतगुरु पार करा। रहा हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी, हर देहो मती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे, जो संग पासत लोह तरा।
साकत न होची मत मदन, जिन हर हर सेव न कराया ते नर पाधीन दोचारी, कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी, ते नाए संतोष गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया, जन नानक पार करा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहे थे कल युग, खेवट गुर सबत करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिख लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाई है उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब दिख रसो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर तजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे, हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार जम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनित उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नी। अपना भला सब कोई बात है, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। हम दिन हर हर नाम से आवो, गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी, हम जंत तू पुरख जन तैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे तिवे बुलैनी। बिलावल महला चौथा। अनद मूल से आयो पुरखोत्तम, अम दिन अनद अनंदे। तरम राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बद्धिक, विच माया फिरे फिरंदे। कृष्णा जलत किरत के बादे, ज्यो केली बलद पहंदे। गुरुमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वर्त है, जो राखे तिवे रहंदे। ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम, पतित पावनो, हर संत पगत पारनो।

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक किस पगलावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर पहला, ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे तिस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभु अविनाशी तोहे, कर कृपा मोह मार्ग पावो, साफ संगत के अंचल लावो, क्यों करिए दिखिया संसार, सतगुरु बोहित पावे पार, रहाओ परम चुलारे माया दे, हर के पगत सदा फिर से, हर शोक से रहे निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा, पाया वेड़ माया सर्प पुयंगा, हूं मैं पते दीपक देख पतंगा, सगल सिगार करे नहीं पावे, जा होए कृपाल सं गुरु मिलावे, हूं फिरो उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर कुसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल, जिन चाखिया तिस आया फाग, जो गूंगा मन में विस्माद, अनद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख सुनाया, बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्प वेव, तरत पुनीत सही गुण गाए, दुर्त गया हर नाम से आए, रहाओ सबनी थाने रवे आप, आज जुगाद जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाने उठे, सब सुख पाए सतगुर तूठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रभ पाले, बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रम मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोय अनाथ तूरी शरण आई, कर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोय निर्गुण लीजे लड़ लाए, रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाके संग

अवर सियाण पा बिरथिया प्यारे रासन को तुम एक रहाओ। सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला। सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रव जाता, हर नाम अराधे नाम वखाणे हर नाम ही मनवाता। सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा, नाम की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल मने होए प्रगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने, तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप नेरे। पशु प्रेत मुगद को तारे पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहारे। बिलावल मैला पंजवा दिखे बन फीका त्याग रि सकिए, नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुड गई सगली, सुखी ना होत जियो। मान महत ना सकती पाई सादा दासी थियो, नानक से दसोगा वंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित क्रम सकिए मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग ना चालती सकिए अंत तज जावत माया। रस पोगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया, तन तन हर साधन सकिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाय बसोवड पागनी सखिए संता संग समाई है, कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाई है। कहे जन्म ना मरण ना आन जाना नेचल सरनी पाई है, प्रेम बिचो ना मोह व्यापे नानक हर एक से आई है। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतड़े सह सुहाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए, नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एक को उतार सतगुरु प्रसाद। एक रूप सगलो का सारा आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जप जप जाइए तप दिश पाए। रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभु सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आप उपावन आप सुधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना, आपन विपो आप ही जरना। रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल न जाई चलना, आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप लिखना, आपे अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल महला पंजवा पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़ पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे

बंधन काट मुकुट गुरकीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बना पकड़ सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो।

तुम पे सब शोभा मेरे आंगन रहा। अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग किस मने उदार। मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई। नैन संतोखे प्रभु दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ न माया, साथ संग सब दुख मिटाया। रव रहा प्रभु सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहा तिखा भूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया। कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता न हर गुण गाया। देहो भगत प्रबंग कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा वड पागी पाईए, मिल साधु हर नाम त्याईए। पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार। सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे। जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा। गुर का शब्द।

संजाम करे सब आते ऐ मनोर सो सब जाते हर कर्म काम मोका दाता पूरी तई सिमर सिमर विदाता साथ संग नाम करंग मान्या कर आया पूरे गुरियाण्या बिलावल महला पंजवा सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे नर कुआर सातक नर थीवे राम नाम हुआ रखवारा शक मारो सातक बेचारा निंदा कर कर पचे कनेरे निरपट हाथ दले सिर पैरे कहो नानक जपे जन नाम ताके निकट न आवे जाम राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा दो पदे

रहाओ। ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना साहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय से आए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांस पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। रहाओ पाप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किल विक्षवना से। अनुज करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल। दिन दिन छिजत विकार करत, औद फाही फाफा जम कै जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा विखम सागर अत पारी। उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। काम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिद समारया। सात जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया। कारज सतगुरु आप सवारया, बड़ी आरजा हर गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारया रहा, वंत्रण त्रिभुवन हरिया होए। सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का तैसो काल। रहा साथ संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू कै जंजाल। आपे सतगुरु आपे प्रपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, हम दिन कीर्तन हर गुण गान। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आज पहर प्रभ जानो मेरे। रहाओ कहो नानक जाके निर्मल काग, हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया। रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माहे त्याई। नानक गुर पूरे सरनाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार, रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की। तिस आगे ही मारे कृपार, नानक दास ता की सरनाई। जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। पाप संताप सब ले गए, बिन से ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग। रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग। गुण गावो नित राम के, ए अवसत जोग। आए बसो पर देश में, ए तले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग न चाल ही माया जंजाल, ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल। रहाओ अहं बुद्ध को बिन सना, एक उर की टाल। बहु जोनी जन्मे मरे, बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे, नित जपे गोपाल। सिमर सिमर नानक करे, हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध अनंत सुख, पूरे गुरु दीन। सदा सहाय संग प्रभु, अमृत गुण चीन। रहाओ जय जयकार जगत में, लोचे सब जिया। सो प्रसन्न पे सतगुर प्रभु, कस बिघन न थिया। जांका अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। सदा सदा वडियाईया, नानक गुर पास। राग बिलावल महला पंजवा, कर पंजवा चौक दे। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया। ज्यो बालू कर बार, बिन सत बार ना ला गई। ज्यो कागद बूंदार,
सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए परबार। रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाल से सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख तेज मुरार। बिलावल महला कन्या लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल होए तो पगती लागो लपट रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हुम आगो अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो हृदय प्रवास प्रगट कया निष्बासर जागो शरण सुहागन आया जिस मत्तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग किसको लगा जिस केवट पागा मैला कदे न हो गई नहला गै दागा प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए रहो जरा मरा नह व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला कीमत कहीं न जाइए क्या कह मुख बोला सफल दर्श तेरा पार जम गुण तेरी बाणी पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल मेला पंजवा राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे सेवा कछु न जानो नीच मूर्खारे मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सदगुण थे तुम बक्षण हारे। रहाओ हम अवगुण करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे लाज परे तेरे दांस्यों ने चित पसमारे तुझते बाहर किछ नहीं पाव काटन हारे कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याये जित सेवे सुख होए कहां मन सोई गाये कहिए काय प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा अगर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता चरण पखारो कर सेवा जे ठाकुर पावे हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा निरत हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अपागे देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे। रहाओ कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई माटी से माटी रली नांगा उठ जाए जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भुजीता

इस अभय दान दीता सिंह बिलाई हो गयो तृण मेर दिखीता श्रम करते दम आज को ते गणित नीता कमन बढ़ाई कह सको बेअंत गुनीता कर कृपा मोय नाम देहो नानक दर श्रीता। बिलावल महला पंजवा अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोभ रसना साध लपट कपट गृह विद्या मिथ्या विख्याद ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद राज मिलक तन जोगना ना मैं बिन बाद रहाओ रूप तूप सोगंधता कापर पोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिर मानस पया खिन पंगन देहाद ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद। बिलावल महला पंजवा चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पाए उद्यान में गुर्द से पेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आगे पगे जब सात संगेत पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत नेकल आसन मिटी चिंत माही दोलेत परम पुलावा मिट गया प्रत्ये खतनेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत नानक पाया सात संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब काम मिटे दत कई हमारी जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओआ दिन बलिहारी तन मन अपनो जियरा फिर हों वारी रहाओ एक सदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी सगल रेन एह मन पया बिनसी अपदारी निंद चिंद पर दुखना एखिन में जारी दया मया अब निकट पेख नाही दूरारी तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल रहाओ जगत सुधारन साध प्रभ तिन लागो काल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल उपत स्यान कछ नहीं नाही कछ काल परम पैरा को मोहते काटो दमजाल।

है। प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छर जाए, तुम्हारी कृपा से छूटी है बिन से अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर, जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जब तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना।

राज मिलक सुतबारिया अग्नि में जाल, संत जना का छोरा तिस चरणी लाग, माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, गृह साकत छत्ती प्रकार ते बिकु समान, भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरते पट खोई, साकत स्यों मुख जोरे है अदवी चों टूटे है, हर जन की सेवा जो करे इत उतन छूटे। सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई, दर्शन पेटक साधका नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, श्रवनी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश तर, हर नाम से आवो कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो, संत जना की रेणका ले माथे लावो। रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो, पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो, सास सास न विसरे अन कतह न तावो, सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो, सत संतोष दया तरम शिगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब ने प्रगटाया, जिस जन हुआ साध संग तिस पे कह हर गाया, ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया। रहाओ शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया, अंतर जामी आप प्रभु सब करे कराया, पथित पुनीत कणी करे ठाकुर बिरदाया। मत फूलो मानक जन्माया परमाया, नानक तिस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल महला पंजवा, माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनिक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे, क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे, प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लिया के। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत विलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे, जिन अनिक एक बहुरंग किए है होशी एहे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे, ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा, एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुण तास, जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रख है आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है, करनहार जो कर रहा साई बड़े आई, गुरपुर उपदेशिया सुख समर जाय, चिंत अंदेशा गणत ताज जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए नानक रंगराता। बिलावल महला पंजवा, महा तपत ते कई शांत पर सत पाप नाथे, अंधकूप में गलत थे पादे देहाते, कोई हमारे साजना हम उनकी देन, जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, बस्त संग हर साध के पूरन आशा।

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तो वो इस कर कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श देख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध कह बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, कोआ रस में सांप तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम एह कर्म कमावो, नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड़ पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ परम मोह की अपने प्रभ आया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभु के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नगर निहाल। गुरु पूरे कृपा करी काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यामन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हित है फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलरित उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया ता

मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार। चरण कमल से रंग लगा अचरज गुरुदेव, जाको कृपा करो प्रभ ताको लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, चित पाई अनद भया।

समग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समरथ प्रभ दे अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैखर तो छुट जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यों तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस्तीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बचे।

प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करकार पुर करता वसै संतन के पास। रहाओ जिगन ना को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय पगतन की रास। कोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। बस्त कमावत सब सुखी किछ ऊन न दिसे, संत प्रसाद पेटे प्रभु।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हार राख्या अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापया नाम।

जो जो चित में साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरणार बिंद जन प्रभु के प्राण सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभु आप प्रभु शरणागत जन परे ताका सद प्रताप। राखन हार अपार प्रभु ताकी निर्मल सेव राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याय किछ बिघन न लागे नानक नाम सलाही है कई दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधिय मिल साथ समागे उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे। राम नाम जो जन जपे हम जिन सब जागे पंत मंत नह जोई सिर चाख न लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनुराग आनंद मगन रस

में जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ पूर रहो सर्वत्र में प्रभ गुणी गहीर नानक भगत आनंद में देख प्रभ की तीर बिलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ हुए कृपाल राख लिया अपना सेव को मुख निंदक छारे तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर बिलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव पूछ अपार अजनक हर सब जीव सहाथ नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ बिलावल महला पंजवा गुरपुरा आराध्या होए कृपाल मार्ग संत बताया।

शीतल भय राखे प्रभ आप, नाम सब शरणागति जाका बड़ प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ नित गया रविया नित राम, सात जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार।

सुन स्वामी अरदास जानी तुम अंतर जामी, खान खनन कर लाव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताकि भाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत मनाई, राम नाम और सब दिया एक।

बेनती सुनी प्रभु आप रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोत हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बांचत फल दित्यन नानक बलिहारी।

साकत गीत नाद तुन गावते बोलत बोल अजाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवो सदा करो किरताए अभय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अभय अभय गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख पंजन मोहे चरण हृदय बसाए। सब तले तले सब ऊपर तेरे दृष्ट दिस पाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नहत लिए भगत वचन कृपाए जो जो शरण पर्यो गुरु।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सारे। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई कल हमरे, तेरे नानक सुख चरना रे। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ को सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग।

नानकी बेनंती प्रप है साथ संग रंग तार बिलावल महला पंजवा। संतन के सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन पूर रही दिन और रात। रहाओ कर कृपा अपने प्रभ की ने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध स्तम से जात। त्रिपत अघाए पेट प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण शरण नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल मेरा पंजवा राख लिए अपने जनाप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम तय बिन से कहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सदगुर अपने को बल जाई। जिन पैज रखी सारा संसार रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो। प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान। गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा चौक दे दुख दे कर सतमा। इको अंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा। बिनसो अंधकार तिहि मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ विस्मन विषम पे जो पेखियो कह न जाए वडे आई। मगन पे ऊहा संग माचे ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहं बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंच बीच ना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पसारा एक कै अपर अपारा। एक विस्थिरन एक संपूरन एक कै प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत ना अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा बिन हर काम ना आवत है। जासो राच माच तुम लागे ओ मोहनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ छिने में जावत है। उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखे ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज सवार पावक तने जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाड़े

सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जो पहावत है। कहो नानक बंधन कातन कहो मैं सतगुरु पुरख के आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान कंबोली। रहाओ सहल समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जो वड़कागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा पोत पोत अंग अंग संग

बंदे गोविंद मई, जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा, पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांप दयाल दई, काम करो तृष्णा अंकारा, तंते हुए सगल खई। सत संतोष दया कर्म सुच संतन ते ए मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा, क्या हम जी जंत बेचारे, वरन ना साके एक रुमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई, क्या कथी है किस कथन न जाई, जह जह देखा तह रिया समाई रहाओ, जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई, शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित एक निमख जताई है, अचरज सुनियो प्राप्त केतले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ, जो मानुख मानुख की सेवा, को किसकी लई लई फुन जाई है, नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, तंग बंद हर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज हर कनो आनंदा, गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू, गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, देखियो मोहन सब कै संगे, ऊन न

हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे। पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर कूटड़िए पिरम जगाए राम। नवहान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया। मैं नाम हर का हार कंठे साथ शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया। जाग सलोनड़िए बोले गुरबाणी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम। अकथ कहानी पद निर्बाणी को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन सो जी सूजे। रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूर रहा सर्व ठाई नानका उर्धारिया। महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम। मन मार भी जय सबद सी जय, त्रै लोक नाथ पछाणे। मन डीज डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने। मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं कान तकिया तेरो साच सूचा सदा नानक गुर शब्द चगर निवेरो। संत बिरावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम, गुर पुत्र है हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम। वड पागिया सुहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम। निमानिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम, गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापे राम। मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम, जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम। मानस जन्म हर पाई है हर रावण मेरा राम, गुरमुख मिल सुहागनी रंग हो कनेरा राम। जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम, हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम, भगत वचल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम। बिन हर नाम ना जीव दे ज्यों जल बिन मीना राम, सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड पाग, गुर पूरे खा लिया नानक हर लिवलाग। संत मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा गे राम, गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम। अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम, जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम। हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम, गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटियाई राम, जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम, अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम। गुर पूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम, जन नानक नाम विदसिया हर हर लिवलाई राम। हम मूर्ख मुर्द मिलाया हर कृपा तारी राम, तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम। जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम, जन नानक नाम सलाय।

एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभु ते कर बिनंती मिले हर जस ला बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह

कन्या मिल एकत्र होए सहज होए मन प्रीत उपजी मांझिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभु कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभु कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे बाजे अहं मत मन की त्यागी बिन वंत नानक शरण स्वामी संत संग लिगलागे बिलावल मेला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे बाजे बिन श्रेय उमाहा तह रोग सोग ना दुख दिया तै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत पगत परे पंडारा बिन वंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज्य मन पागी है पगत फगौरी पाए मोह है अंत कथु न ताए बिन वंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर जय पूजा गही कट जम की साफी राम जय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोप जनाया मलन मोह विकार नाके दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पई निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिन वंत नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाग दिखावे, ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे, गृह बने तीर बर्त पूजा बात काटे जोनी।

पर है मोहि सात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते कीत चित हो मित अंधारे जो आस चतुरी दिन चरे नानक पयम तय प्रिय संग मेली मछली नीर न विसरे तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कमल रसना गुण।

सुंदर छाप दयाल प्रभु सर्व सुखानिधि पियो सुख सागर प्रभु केते है नानक सुखी हो त्यो जियो संत सुख सागर प्रभु पाये जब हो वे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम सो प्रभु तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरे बल गये दुर्चारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा त्रम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत मैं डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नानक प्रभ शरणागति जप अनत तरंगे राम। इक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किस दीना राम। वड पागी ने लावड़ा गुरमुख तिरछी ना राम। बहां पकड़ तम ते काडया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम। क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम। सुमर सिमर नारायण पय पार जरामी राम। गुण गावत गोविंद के सब उच्च पुजामी राम। नानक उदरे जप हरे सबू का स्वामी राम। रस पिनेड़े अपने राम संगे से लोयन नीचे राम। प्रभ से कछ उच्छा

राग नाद सब सोने जान लागे सहज्ञान राग नाद छोड़ हर सेविए तां दरगे पाईए मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिए चूके मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभु आप अगम है सब तुद उपाया तू आपे आप वर्तदा सब जगत सवाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन रात अंत लय छाया जिन से व्या तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वही मन मुख खाए ना पाए पखंड पगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हठ कर्म कमावने खाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारिए विच्चों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक क्यों लिलाए जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चलने सतगुरु पाए सत्संगति वह पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विचार आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद कर हर भगता का मेली सर्वत सौ निशुल जन टंग तर हर सबना का है खसम सो भगत जन सित कर खुद अपर कोई न सके सब चक चक पवे चढ़

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना कीतिया, सबर ना लगो पाओ, हों मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु सुआओ। मन हट कर्म कमावने फिर से जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। पौड़ी सब वडियाईया हर नाम विच, हर गुरमुख त्याई है जो वस्त मंगी है।

गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाइए जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए श्लोक महला तीजा। सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए। गुरु का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए हर रस की संतोष हुआ सत रसिया मन आए। सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सो दैव पथरिया गुरु कहते हैं सुबाए। नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छुपाए। महला तीजा गुरु सेवा ते हर पाई है जहाँ को नदर करे मानस के देवते पड़े सच्ची पगत जिस दे हमें मार मिलायन गुर के शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करते आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हृदय पाई। निंदक दुष्ट वडियाई वेख न सकन ओना पराया पला ना सुखाई। क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यों बने आई। ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा रुद ए आशा दूजे पाव की जो मोय माया चित लाए। हर सुख पल्लव से आ गया नाम विसार दुख पाए मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए। कार्य सिद्ध ना होनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए। नाम रते जन सदा सुख पाए न जन नानक तिन मल जाए।

किए, जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिए। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुर के वल है, तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुर अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो, जिन विच्चों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार करिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा, अंदर कपट सभा दुख है मन मुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए, कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम निवला।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गासिया, सिमर अज्ञान अंधेर छुपाया, मैला तीजा। मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनत नानक सो जन पाई, सतगुरु से वो हो मैं मल जाई, अंदर संसार दुख व्यापे, सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे, माया मोह प्यार, नाम न चेते, शब्द न विचारे, तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया, बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा, होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे, सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जागाती किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या, सदा वे प्रवाओ। श्लोक महला तीजा। इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुर प्रसादी नाम मन वसिया, अंगिन नाम के आया, दिख्या माए उदास है, हो मैं शब्द जलाया, आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया, सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां देव त्रै गुण पुल्ले, हो मैं मोह वदाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले, दूजे पाए चुकलाया।

बिन अवर न कोए गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खट्यो से देवालिये जुग माहे कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करे अपनी प्रतीत फोन सगवा भी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करे सो तन चुगली हथ ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुथो कर्महीन ले न सके। होर्थ है देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला कीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विचो जाए। जो किस हुए सो सहजे हुए कहना किसु ना जाए। नानक तिनका

अमृत बाणी अंदिन हर गुण गाओ निज कर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया जो कुसै क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले अकै कोई क्यों देवाए इहो हर तन जोर कीते किसे नाल ना जाए वंडाया जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हत आवे जिसनो करते तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही किसे के सीव बन्ने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे किसका मोह हर चौ कुंडा विच काला कराया हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना।

मेरा सतगुरु हर बख्शोस सब जान, जो सतगुरु नो मिल मन्ने सो हल पल सुजै, जो रेमुख होवे सो फिरे परिष्ट खान। जन नानक कैवल हुआ मेरा स्वामी, हर सज्जन पुरुष सुजान, पौधी चित देख कै

किस साथ गिरास सदा मन वसे, जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभु वसे, हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से।

दे सू दे रे कि चलो तुम नतर को तक्का दे गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सबु जम ले जई है रे मानस बपरा मूसा की नो मीच बिलैया खई है रे तनवंता अरनिल तन मन ही पासी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मार है ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना करो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत बौरा रहाओ आप न बौरा राम कियो।

मोरा, सतगुरु जार गयो परम मोरा, मैं गुजरे अपनी मत कोई, मेरे परम पूलो मत कोई, सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक कह जाने, अब है न माता सो कबू न माता, कह कबीर राम रंग राता। बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा, क्यों छूटो कैसे तरो पव जल निरपारी, राख राख मेरे बीचला जन शरण तुम्हारी। रहाओ बिखे बिखे की बात ना तजी न जाई, अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई, जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का, ए जीरा निर्मोल को कौदी लगनी का, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी, तुम समसर नाई दयाल मोहि समसर पापी। बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो, ताना बाना कछु न सूझे हर हर रस लपयो, हमारे कुल कौने राम के हो, जब की माला लई निकूते तब से सुख ना पयो राव, सुनो जिठानी सुनो जिरानी, अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए, यह मुंडिया क्यों ना मोयो, सर्व सुखा का एक हर स्वामी, सो गुरु नाम दयो, संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हर नाशक नख बिदरयो, करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो, कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लै उदरयो। बिलावल को हर समान नहीं राजा, एक ऊपर शब्द विचार के चूठे कर दिवाजा, रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले, तीन पवन पर छा जा, हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा, चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा, कह कबीर संसार परम क्यू को रूप है लाद निवाजा। बिलावल राख लो हम ते बिगरी, सील कर्म जब भगत न कीनी, हो अभिमान टेढ़ पगरी, रहाओ अमर जान संखी ए काया, ए मिथ्या का की जगरी, जिन्हें निवाज साज हम किए, किसे विसार अवर लगरी, संगत तोय साध नहीं कहियो, शरण परे तुमरी पगरी, कह कबीर ए गिनती सुनियो, मत पालो जम की खबरी। बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार, कुछ दिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दी जय खोल के वार, रहाओ तुम तन तनी उदार।

कह कबीर तुम समरस दाते, चार पदार्थ देखना बार बिलावल, डंडा मुंदरा सिंसा आधारी, क्रम कह पाए पवे तेज तारी, आसन पवन दूर कर बवरे, छोड़ कपट नित हर पद बवरे, राव जिन तू जाते सो त्रिगुण भोगी, कह कबीर के सो जग जोगी, बिलावल इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत ना उपजे जन को, जन कहा करे बेचारे, राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया, त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी, किस माया को दृढ़ कर राखो, बांधे आप बचनी, क्या खेती क्या लेवा दई, परपंच झूठ घुमाना, कह कबीर के अंत बिगूते, आया काल निदाना, बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप, परम ज्योत पुरखोत्मो जाके रेख न रूप, रे मन हर पाजे परम सजो, जग जीवन राम रहाओ, आवश्यक न दी सही न दी सह जात, जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात, लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार, कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी, जीवक सुन समान्या गुरु साची जागी, रहाओ काशी के तुन उपजे तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन का समाई, तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माए त्यागी, आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना।

तब ए मत जाओ सब में पेख है पुतल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके ले नर जा मन को ले देव जे ओ जाए तई सुख पावे माया तास न चोले देव कह कबीर मेरा मन।

सफल जन्म मौको गुर कीना। दुख विसार सुख अंतर

बिलावल जिह कुल साध बैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहा ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटुंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिस खोए पंडित सूर छत्रपत राजा पगत बराबर और न कोए जैसे पुरैन पात रहे जल समीप।

सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रास है रहाओ। एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले सुन कामना आवे। प्राण जो खाते

महला चौथा कर पहला। जी मन चित आस रखे हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीवर तै प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाई। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साले फल आस सब बिरथी जाई रहा।

दिन में झूठ दिल सब जाए, मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई, कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाए। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताए। गोंड महला चौथा ऐसा हर से नित त्याई है, जो खुन में किलित सब करे विनाशा। ये हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे सब पुख लहासा। मेरे मन

अपनी दिशा बहुत बहुत कदाचार अपनी दिशा कहो हर अपने स्वामी पे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी दिशा अवरा पह कही है अवरा पह कह मन लाज मरासा।

तित दिन नेड़े को ना चुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुझ उपकर दुख सुखासा किसका परवासा क्यों की जय मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा हर जप मन के गुर उपदेश ले जा तो तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा गौंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांत शीतल मन अपना जैसे सतत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाए सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना शब्द पछान राम रस पावो ओ उत्तम संत पयो बद बदना इस जन की वडियाई हर आप वधाई ओ कटे ना किसे की कटाई इक तिल तिल तिलना जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जुरना जन नानक को हर दान इक दीजे नित बसे हृदय हरि मोहे चरना।

हरे अविनाशी सदा फिर नहीं चलत मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर महल पावे गुर बचनी तिस जेवड अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान, जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

हर जन नीक जात सेवकान। गौण महला चौथा हर अंतर जामी सब तै वरतै जिहा हर कराए तिहा को करिये। सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लिये। मेरे मन हर जप हर नित पड़िये हर दिन को मार जीवाल न साके। ता मेरे मन कायत करिये रहाओ हर परपंच किया सब करते विच आपे अपनी जोत तरिये। हर एक को बोले हर एक बुलाए गुरपूरे हर एक दिखाइए। हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासों मन क्या चोरिये। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवा सब

हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ैया गौण महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते ज्यो त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर कीर हमरी बेदन हर तब जा।

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजाओ, हर दर्शन सांत

परलोकर्ता, व्यापतकर्ता, अलिप्तोकर्ता, वक्तोकर्ता, बूजतकर्ता, आवतकर्ता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा, आंक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भायले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गायले, मन समझ छोड़ अवायले, अपने रहन को ठोर न पावे, काए पर कह जायले, रहाओ, ज्यो मैगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग पड़े कुटुम्बायले, ज्यो पंखी कत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चायले, जैसे मीन रसन साध दिन से हो, ओ मूठो मूड लोभायले, तू हो आ पंचवास वैरी के, छूटे परसरन आयले, ओ किरपाल जीन दुख पंजन, सब तुमरे जीजन पायले, पावो दान सदा दर्श देखा, मिल नानक दास दसायले, रागौण महला पंजवा, चौक दे कर दूजा।

बाल सखाई भगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत। कौन महला पंजवा नाम संग कीनू व्यवहार, नामो ही इस मन का आधार। नामो ही किस कीनी ओट, नाम जपत मिटे पाप कोट। रास दी हर एको नाम, मन का इष्ट गुरसंग ध्यान राव। नाम हमारे जी की रास, नामो संगी जत कत जात। नामो ही मन लागा मीठा, जल थल सब में नामो गीता। नामे दरगे मुख उजले, नामे सगले पुल उदरे। नाम हमारे कार्य सीध, नाम संग।

कहो नानक सुख सहज निवास गौण महला पंजवा। निमानी को जो दे तो मान सगल पूछे को करता दान गर्भ कोर में राखन हार इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए कट अवकट जत कट है सहाय रहाओ रंक राओ जाके एक समान ईट हस्त सगल पुराण बियो पूछ ना मसलत करे जो किस करे सो आपे करे जा का अंक ना जान सकोए आपे आप निरंजन सोए आप आकार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार नाम रंग पग पुपहे लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अघाए नानक तिन जन लागे पाए गौण महला पंजवा। जाके संग इहो मन निर्मल जाके संग हर हर सिमरन जाके संग किल बिख हो है नास जाके संग हृदय प्रदास से संतन हर के मेरे नीत केवल नाम गाई है जाके नीत रहाओ। जाके मंत्र हर हर मन वसे जाके उपदेश परम पवन से जाके कीरत निर्मल सार जाकी रेन बांछे संसार कोट पतित जाके संग उधार एक निरंकार जाके नाम आधार सर्व जिया का जाने पेयो कृपा निधान निरंजन देयो पार ब्रह्म जब पहे कृपाल तब पेचे।

गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय ले तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत तो परम पुले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार रहा, फूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पंक्ति लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ है जनाई, जिन गुरु मुक्त ना पाये पाई, गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ, गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक देह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए, कहो नानक जाके पूरे पार।

रमत राम सब रहे समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम।

सहाय, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लीलाए, राम राम जप निर्मल भय, जन्म जन्म के किल बिछ गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम तै पार उतारे, सबते ऊच राम पर गास, निस्बासुर जप नानक दास, गौण महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संग ते मार बिदारे, गोविंद भगत का महल न पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल सृष्टि के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, राव जगत पास ते लेते दान, गोविंद भगत को करें सलाम, लूट ले सात पद खोवे, सात जना पग मल मल तोवे, पंच पूत जने इक माए, उत्पुज खेल कर जगत भी आए, तीन गुना के संग रच रखे, इनको छोड़ ऊपर जन बसे, कर कृपा जन लिए चढ़ाए, जिसके से तिन रखे हटाए, कहो नानक भगत प्रभु सार, दिन पगती सब होए खुआर, गौण महला पंजवा, कल कलेश मिटे हर नाए, दुख बिन से सुख की नो ठाओ, जप जप अमृत नाम अघाए, संत प्रसाद सगल फल पाए, राम जपते जन पार परे, जन्म जन्म के पाप हरे, रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे, अग्न सागर के उतरे पारे, जन्म मरण सब मिटी उपाद, प्रभ क्यों लागी सह समाद, थान थनंतर एको स्वामी।

पास भगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण मेला पंजवा गुरु के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इस पंते मार, होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो गोपाल गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ, जी प्राण को यह सुहाओ, पद अभिमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर सो मन रंग, जिन तू किया तिसको जान, आगे दर्जे पावे मान, मंकन निर्मल हो।

सोहो दयाल देहो प्रभु दान। नानक जप जीवै प्रभु नाम गौण महला पंजवा। सूप दीप सेवा गोपाल अनेक बार बंधन करतार। प्रभु की शरण गही सब त्याग गुर सो प्रसन्न पै वडपाग। आठ पहर गाये गोविंद तन तन प्रभु का प्रभु की जिंद। रहाओ हर गुण रमत पै आनंद पार ब्रह्म पूरन बसंद। कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मिलाए। कर्म तर्म इह तत् ज्ञान साध संग जपिए हर नाम। सागर कर गोहित प्रभु चरण अंतर जामी प्रभु कारण करण। राख लिए अपनी कृपा तार।

जुए जन्म ना कबहू हार, नानक का अंग किया करतार। गौण महला पंजवा, कर कृपा सुख आनंद करे, बालक रास लिए गुरुदेव, प्रभ कृपाल दया।

पर कोई नाही, कट कट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पत पावन प्रबिर तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिय भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांचत पूरन फल पाए। कर्म कारण समरत दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत करिए संसार। बड़पागी पाइए पुरख अपार। रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल, किसको पोए ना सके जमकाल। जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खत्म पछाण। हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्मा।

सवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गौन महला पंजवा पाव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंत मां विचार पंच दूते मंत सौ शरण आई पूरन नाथ जंत अपने को दी जय हाथ रहाओ सिमरत।

रारो। संत का निंदक आकाश के तारो, संत को राखो अपने जी नाल, संत उधारो तत्क्षण ताल, सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप बिलायण। रहाओ

बस अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौ मैला पंजवा, जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है, साध संग जपे निरंकार निंदक के मुहि लागे चार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिस्कोवत ना है, जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण

न लागे, कट कट अंतर सब ही जागे, तीन गुणा एक शक्ति उपाया, मां माया काकी है छाया, असल अछेद अपेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकि गत नित कछु न पाए, नानक ताके बल बल जाए। गौण महला पंजवा, संतन के बलिहारे जाओ, संतन के संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किल विच सब गए, संत शरण वड पागी पए, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापे, गुरु प्रसाद अपना प्रभ जापे, रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे रवाल, काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसे मन आए, सकल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गौण अष्टपदियां मैं

सब लोग संतन के मन महा आनंद संत जपे गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पाए सगल स्थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाए पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए सगल पै मिटे जा की शरण निंदक मार पाए सब तरन जन की निंदा करे न कोए जो करे सो दुखिया होए आठ पैर जन एक से आए जमुआ ता के निकट न जाए जन निर्वैर निंदक अहंकारी जन पल माने निंदक बेकारी गुर कै सुख सतगुरु त्याया जन उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरते हर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ खर पर जाए नितरिया सतगुर तर तेरी कर कृपा राखो जन केरी कहो नानक तिस गुरु बलिहारी जां कै सिमरन पैज सवारी राग गौंड बाणी भगतां की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले कि सुनिए कही है मिले असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन से बोले उपकारी मूर्ख से बोले चखमारी बोलत बोलत बढ़े बिकारा बिन बोले क्या करें बिचारा कहो कबीर छूछा कट बोले करया होए सो कबहू न डोले गौंड नरु मरे नर कामना आवे पशु मरे दस्ता

आस का पूला कहो कबीर तभी नर जागे। जम का दंड मूंड में लागे गौंड आकाश गगन पाताल गगन है चौदिस गगन रहाए ले आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम कत बिन से गगन न जाए ले मोह बैराग पायो एहो जियो आए कहाँ गयो रहाओ पंच तत् मिलकाया कीनी तत् कहाँ ते कीन रे कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म किन जियो दीन रे हर में तन

सुंदरी पग मेवर छनक छन हरी जो लग प्राण तौ लग संगे नाए ता चली बेग उठ नंगे सुहागन पावन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रख किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है छेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कौ कबीर गुर कृपा छूटे गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टिकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये सूत बिना कैसे मणि परोये कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये साधु बिन कैसे अवगत जाये जैसे माँ पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े तोई कोर बिना कैसे

कह कबीर कह कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार राव। नाचन सोए जो मन स्यों नाचे, झूठ न पतिए परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, किस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की पगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, तन गुरुदेव अतरूप विचखन। गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी, आद पुरख ते हुए अनाद जपिए।

छोड़े अन्न करें पाखंड, ना सोहागन ना ओरंड, जग में बक्ते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी, अन्न बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या, राग गौंड बाणी नाम देव जी की, कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। असुमेध जग ने तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने तो न पुजे हर कीर्तनामा, अपने रामे पजरे मन आलसिया, रहाओ गया पिंड परता, बनारस अखबस्ता, मुख बेद चतुर परता, सगल कर्म अच्छता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खट कर्म सहत रहता, सेवा सकत संबादं, मन छोड़ छोड़ सगल पेदं, सिमर सिमर गोविंदं, पजनामा तरस पर सिद्धं, गौंड

अनचोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुरु पोतक अलख लिखाया जैसे दिखे हेत पल नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गौंड बाणी नाम देव जी की कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम ले उत्तम तरमा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंगले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमे हर हर करत नहीं दुख जमे रहाओ हर हर नाकस हरे प्राण अजय मल की ओ बैकुंठे थान सुआ परावत गन का तरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल कातनी कपटे परी सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सुला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली को दिया प्रणव नाम ऐसो हरी जास जपत पै अपदा।

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी। गुरमत राम नाम गहु मीता, तन में नामा यूं कह गीता। बिलावल गोंडे आज नामे बीथल देखिया, मूरख को सम

की लांगत लांगत जाती थी। तांडो तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था। मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा राम

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक नी

कौ रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे ओ अब सरती।

आद का निंदक कैसे परे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल फेत, अर्पे नार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजो निहांडे। निंदा का करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सो दुसाद विचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। जोड़

जाना अभी कभी किछु न जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है कबहू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जो तू देवे अंते होए सखाई राम करी महला पहला सर्व ज्योत तेरी पसर रही जय जय देखा तह नर हरी जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जय पीतर कब पीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे मेरे आपे दूर आपे सर्व रहा पर पूरे सतगुरु मिले अंधेरा जाए जय देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार माया नैन लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेंगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वसे कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे किन बिग सागर तरिये जीवतियां नह मरिये रहाओ दुख दरवाजा रो रखवाला आशा अंदेशा दे पट गरे माया जल खाई पानी कर बांधिया।

आप करें, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले, इन विद सागर तरिये जीवतियां क्यों मरिए, रहाओ दूजा राम करी महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने, पचोली मंगल कहताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली, करते बार न लागे रहाओ, पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे, सुध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे, जे तिन मिला ता कीरत आखा तामन सेव करे,

पहला सुन माँ चिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे न डोले ऐसी जुगत जोग को पाले आप तरह सगले कुल पारे सो अवधूत ऐसी मत पावे ऐनस सुन समाज समावे रहाओ तिथ्या पाए पगत पै चले होवे सो तृप्त संतोष अमूल्य।

पाए तनवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संग मिलाए जीठा दारू भोजन खाए छह दर्शन की सो जी पाए राम कली मेला पहला हम दौलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाई सन्मुख सिद्ध पेटन को आए नीचो देव दे आई गुर पार तारण हारिया।

आया पर सत्कार से जते स्वामी अखर जिन को आया। जप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभु तेरा गुर परमेश्वर नानक पेत्यो साचे शब्द निबेरा राम कली मैला पहला सुरती सुर कर लाये एक तन कर तुल्हा लंगे जेत अंतर पाए तुसे तू रख तम दीवा।

संगत जन जाओ पांडे पाओ पवे तुझ आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किस किया सो किस करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक पिकार कहे मंगत जन मांगत मान न पाया सैकिया गल्ला दरकिया बाता कहता कहन कहाया राम कली मेला पहला सागर में बूंद बूंद में सागर कौन बुझे दुध जाने उत्कुद चलत आप कर चीने आप तक पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई तुस्ते मुक्त परमगत हो ही रहा दिन में रैन रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गतमित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में जोत जोत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन के सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जहाँ हर प्रभु कृपा तारी ताहो में विच्यो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रभु पावे इस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाग देद गुरबानी मन राता सारंग पानी तें तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पौ पागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सत गुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला छादन पोजन मांगत पागे खुदया दुष्ट जले दुख आ गए गुरमत नहीं लीनी गुरमत

देह तारी राम कला निभे पथ सारी तर टूटी गाडो सिर पार लकड़ी बिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग देगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपे निरंकारी सहज जगोता बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन करना।

तीजा कर पहला सत युग सच कह सब कोई कर कर भगत गुरमुख होई सत युग धर्म तैर है चार गुरमुख बूझे को भी चार युग चारे नाम वडियाई होई जे नाम लागे सो मुक्त होवे गुर बिन नाम न पावे कोई रहाओ त्रेता इक कल कीनी दूर पाखंड वर्त्या हर जान दूर गुरमुख बूझे सो जी होई अंतर नाम वसे सुख होई द्वापर दूजे दुबदा होए परम पुलाने जाने दोए द्वापर तरम

गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हर नाम किया है भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वखाणे।

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई। मन तन साथ

पंथ छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो न कोई, सतगुरु मिलो नवे निग पावो, तिन विद तत् बिलोई, परम चुकावो गुरमुख लिवलावो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किसो करो बुराई, सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता, सहज मिले स्वामी, तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया, जन नानक सद कुर्बानी, रामकली महला पंजवा, आवत हरख ना जावत दुखा, ने व्यापे मन रोगनी, सदा आनंद गुरपूरा पाया, तो उतनी सगल बेगनी, ए बिद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापे, ते हर हर हर रस पोगनी, रहाओ सुर्ग पवित्रा, मृत पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे, जत कत देखो हर गुनी, मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना, तह अकार नहीं मेदनी, सतगुर जोग का तहां निवासा, जय अवगत नाथ अगम तनी, तन मन हर का, तन सब हर का, हर के गुण हो क्या गनी, कहो नानक हम तुम गुर खोई है, अम्बे अम्ब मिलोगनी, रामकली महला पंजवा, त्रै गुण रहत रह निरारी, साधक सिद्ध ना जाने, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर के खजाने, अचरज किस तैन न जाई, बस अगु

चरण हम भी संग अधाए मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माथे वजै रबाबा करनो मद बासुरी बाजे जेवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

कोई ओडा नील, कोई सुपेद, कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई बाँछे तुस्त, कोई सुरजिंदू, कहो नानक जिन हु

मनहार दे ऊट सुदाए परम मोह के बांधे बंद सुपन पया पखलाए अंद ते तो रचन रचिया करतार आवत जावत।

पाए, खिंचिया सूत ता आई खाए, जो मैं एक है मत है किया, तें दिखले थान अनक खिड़किया, खोजत खोजत द्वारे आया, तान आनक जोगी महल कर पाया, क्यों किंकुरी अनूप वाजे।

जप नाथ दिन रहनाई, तेरी खिंखा दो दिहाई, रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी, मांगे तू का तृप्त ना पावे।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई, राव दूजा रामकली महला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दीसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, और सोरे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले गीठा राव, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनद रूप प्रटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊं लख बेरा, तन मन जियो पिंड बेसा जिया, गुर कृपा से नीच निवाजिया, खोल तिवारा मेल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब

पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जाकी जहर गंभीर होए निहाल दे जिस पीर जाके बंधन काटे राए सोनर बौर ना जोनी पाए जाके अंतर प्रगटो आप ताको ना ही दुख संताप लाल रतन किस पाले पर्या सगल कुटुंब ओ जन ले करया ना कुछ परम ना दुबदा दूजा एक निरंजन पूजा जत कत देखो आप दया।

गीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रै गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला कन्यवा कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पही कर पार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता पावन तीरी जी तो सगला पवन बेअंत महमाता की केतक बरन।

आमी संत जने परदास पया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन कलक मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालनहार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सात इन्ही करत बिहानी हर का नाम अमृत कलमाए इहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जी।

अनहद बाजे अचरज दुस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन।

आधार निर्चल आसन बेसुमार दुगना डोले कतहु दावे गुर प्रसाद को इहु मेल पावे प्रमते मोह न माया जाल सुन समाद प्रभु कृपाल ताका अंत न पारावार आपे

रास संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राख्या पर्दा संत प्रसाद मोहे कबू न करदा संते संग दिया कृपाल संत सहाय पै दयाल सुरत मत बुद्ध परदास गैर गंभीर

निवा तेरे काज ना गृह राज माल तेरे काज ना भिखे जंजाल इष्ट मीत जान सब चले हर हर नाम संग तेरे चले राम नाम गुण दायले मीता हर सिमरत तेरी।

पंजवा कर संजोग बनाई काच तिस संग रहो इराना राच प्रतपारे नितसार समारे अंत की बार ऊट सिधारे नाम बिना सब चूट परानी गोविंद पदन बिन अवर संग राते ते सब माया मूट।

जीवा जो किछ करे सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन ते क्यूका ठहराया सत माहे ले सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरुष का।

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

जाए मन अटल, ता छूटे माया के पटल। गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होई निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद विचारा, बिन हर

करनी आए पई। सुन संतो निर्मल विचार, राम नाम बिन गत नहीं काई, गुरपूरा पेटत उधार राव।

त्याग सत्संगत करे, वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवां, आत्म राम सर्व में पेख, पूरन पूर रहा प्रभ एक। रतन अमोल हृदय में जान, अपनी वस्तु तू आप।

करत तें हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप दिवाया, साध संग तिन हर तन पाया, दयाल पुरख।

नानक का प्रभ आपे आप राम कली महला पंजवा किछु काज न कियो जान सुरत मत नाही किछ ज्ञान जाप

परमेश्वर स्वामी काटको प्रदाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंदनते होई चोट। हृदय जप परमानंद, मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। राम कली महला पंजवा, मन माहि जाप भगवंत, गुरपुरै इहु दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास।

टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर के ते गुणतास। एको नाम त्याए मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन। चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही त्याया आनंद।

साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसे मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे।

संतर पाग माटी को जल दह दिस्त्याग ऊपर चरण तले आकाश काट में सिंध कियो परगास ऐसा सम्राट हर जियो आप निमख ना बिसरे।

नाम जपत परम सुख पाये, आवागौन मिटे मेरे मीत रहाओ। गुण गावत होवत परगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में होए

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देह रहाओ। तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे

पहला साहा गने न करें विचार साहे ऊपर एक अंकार जिस गुर मिले सोई विद जाने गुरमत होए ता हुकुम पछाने।

गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ, मुक्त प्राण जप हर कृतार्थ। वाचे वादना वेद विचार है, आप डूबे क्यों कितरा तार है,

वर्त कपन कर मन नहीं पूजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग पूजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर का।

जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल।

देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक संत।

या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त्र प्राप्त।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

आप अगोचर तंदै लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर।

ऐ सोताओ नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई होर क्या कही है किछ कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खिन मैं मुए जा शब्द पछानिया अस्थिर चीत मरन मन मानिया गुर कृपा ते नाम पछानिया।

विलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख अंत

हर वर एक समाल, गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले, गुरमुख तोल तुलावे तोले, गुरमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छी जय देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड, तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने।

निर्मल नाम। जिन नाम दिया तिस सेवसा तिस बलिहारे जाओ, जो उसारे सोटा सी।

सदा रंग राते बौड़ न पछोताइए। पब्बे पाले गुरमुख बूजे ता निज करवासा पाइए। पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा।

आए, वन तृण टू डत फिर रही, मन में करो विचार, लाल रतन बहु मान की सतगुरु हास भंडार, उत्तम होवा प्रभ मिले, एक मन एक पाए, नानक प्रिय।

जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिए तन काचा बिखचार साउ सदाए संच तन दुबदा होए कुआर सचियारी सच संचिया।

क्यों गणी, खप खप मोए बिसंख, खसम पछाणे आपना, फूले बंद न पाए, शब्द मैली खरा तू, किमा सच सुख पाए, खर्च खरा तन त्यान तू, आपे वसे शरीर, मन तन मुख जापे सदा गुण।

मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द ना चीने सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखिए चा

सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाये सहज पाए जस लेओ क्या पविये सच सूचा होए साच सबद बिन मुकुत न कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहूं अरदास हमारी हों संत जना बल जाओ।

कट कट बैस निरंतर रही है, चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए, नानक सदार जाए आसन बैसन थिर नारायण, ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाणे, सच्चे सच समाए दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औ।

हट दर्शन एक पंथा, इन विद मन समझाये पुरखा, बाहुल चोट न खाये, नानक बोले गुरमुख बूझे, जोग जुगत इव पाये, अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, हौ मैं ममता दूर करी, काम क्रोध अंकार निवारे, गुर के शब्द सो समझ परी।

एहो मन लाया कित बिद आसा मन साखाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाई है सार नानक साचा करो विचार। सतगुर कै जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एहो मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर।

पाए। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाये तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह हुकम विस्माद हुकम पछाणे जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहीं है सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचे परम पद पाये साचे शब्द समाये लिया एक एको सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किछ सो।

पै, गुरमुख बाणी अगड़ कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साज समावे, गुरमुख परचय वेद विचारी, गुरमुख परचय तरिय तारी, गुरमुख परचय सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचय अंतर विद जानी, गुरमुख पाये अलख अपार, नानक गुरमुख मुकत द्वार, गुरमुख अकत कथे विचार, गुरमुख निभे सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाये शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हो मैं जाल समाई, गुरमुख तरती साजे साजी, तिसमें ओपत खपत सोबाजी, गुर के शब्द रपे रंग लाए, साच रतो पत स्यों कर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि, गुरमुख सर अपसर विद जाने, गुरमुख परवित नरवित पछाणे, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख शब्द

जोग जुगत सच रह समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोक्ष द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए, गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे, नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इसनान, गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख पाव पंज

गुरमुख पावै काट काट तेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मिटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता। बिन गुर पर मैं आवे जाए, बिन गुर काल न पवी थाए, बिन गुर मनुआ अत डोलाए, बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए, बिन गुर बिसियर डसे मरवाट, नानक गुर बिन काटे काट। जिस गुर मिले तिस पार उतारे, अवगुण मेटे गुण निस्तारे, मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार, गुरमुख कदे ना आवे हार। तन हटड़ी एव मन मन जारा, नानक सहजे सचवा पारा।

गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहज्ञान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा

मिले मन माने, दूजा जाए इकत कार्याने, बोले पवना गगन गरजे, नानक नेचल मिलन सहजे, अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रिभवन सुनंग म सुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुनंग, कट कट सुन का जाने पेओ, आग पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन।

पार नानक मनमुख ना बुझे गवार कबुद मिटे गुर शब्द विचार सतगुर पेटे मोख द्वार सत ना कीने मनमुख जल जाए दुर्मत विचर चोट

पर परै सच भाए। सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय पव जल संसारो। त्रै सत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो। बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए। गुरमुख शब्दे सच निव लागे, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे दीना, पूरे पाग समाए। सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई। पवन का वासा सुन निवासा।

मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवे, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाने आत्म जाने, क्यों सस कर सूर समावे, गुरमुख हो मैं विच्चों खोवे, तो नानक सहज समावे, यो मन ने चल हृदय वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहे, नाभि पवन कर आसन बैसे, गुरमुख खोजत तत लहे, सो शब्द निरंतर निज कर आछे, त्रिभवन ज्योत तो शब्द लहे, खावे दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहे, अनहद बाणी गुरमुख जानी, बिरलो को अर्थावे, नानक आखे सच सुभाखे, सच रपे रंग कब हूं ना जावे, जा एहो हिरदा दे ना होती, तो मन कैठे रहता, ना बिकमल अस्तंभ ना हो ता पवन कवन कर कहता, रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिवलाई, रकत बिंद की मड़ी

तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रहे समाए नामे नाम रहे बैरागी साच रखिया उधारे नानक बिन नामे जोग कदे न होवे देखो हृदय बिचारे गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पीजे विरला बूजे कोए गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई बिन सतगुर पेटे

पर जम डंड है दूजे पाए पथ खोए, हर नाम कदे ना चेतियो फिर आवन जाना होए। गुर प्रसादी हर मन वसै जम डंड ना लागे कोए, नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए। पौड़ी इक अपनी सिफति लायन दे सतगुर मत्ती, इक नानो नाउ बख्शियोन अस्थिर हर शक्ति। पौन पानी बैसंतरो हुकुम करे भगती, इनानो पौ अगला पूरी बनत बनती। सब इको हुकुम वरतदा मने सुख पाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। मैला तीजा क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानई हों मैं छड़े न कोए, गुर प्रसादी हों मैं छूटे जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिले, तिस बिघन ना लागे कोई। महला तीजा जीवत मरना सबको कहे, जीवन मुक्त क्यों होए। पैका संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सहजे बिख पाव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईए जाको नदर करे पौड़ी, दूजा पाव रचायन त्रै गुण वरतारा। ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

को सच कमावे, नानक सो तपा मोख अंतर पावे। महला तीजा सो तपा जे यो तप काले, सतगुरु नो मिले शब्द समाले। सतगुरु की सेवा यो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान। पौड़ी रात दिन

तिसका पूजन नानका, विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत ए नाखियन जे पर कर पूजन करे, उदरे कारण अपने बहले पेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ, कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ, सच्चा आप तखत सच्चा।

सच्चाई सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरमुख सुख पावे, निज कर वासा पाये सच समावे। सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई, श्लोक महला तीजा। सच्चा नाम त्याय तू सबो वर्ते सच, नानक हुक्म में जो बुझे सो फल पाए सच, कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच, नानक हर का पाना मन्ने सो भगत हुए, विण मन्ने कच नी कच महला तीजा। मन मुख बोल न जा।

न कोए, सचो सच वखाने कोए, नानक अगे कुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंप फिरे, ना सत मूंद मुडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तछावे दुख सहे, ना सत हक

मिले वडाई जिस कट पीतर शब्द रवे सब कट मेरे हो सबना अंदर जिसे खुआई तिस कौन कहे जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन जिसे फुलाई पंग सिर तिसे दिखावे कौन मेला पहला सो गिरही जो निग्रह करे जब तब संजम पीछा करे पुन दान का करे शरीर सो गिरही गंगा का नीर बोले ईश्वर सत्स्वरूप परम संत में रेखना रूप मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप पिख्या भोजन करे संताप औ हठ पट्टन में पीख्या करे सो अवधूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत्स्वरूप परम संत में रेखना रूप मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध

को हर जाता। मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम सचाता। बाहर मूल न खोजिए कर्माए विदाता। मन मुख हर मंदिर की

0: कडवही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल से रस्ता होशी आय तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नानका ओढ़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे किस कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पगति रापे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवापे सब किछ हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलने गुरु शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुरु शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा अंधे कह राह दसे अंधा होए सुजाए।

कोई जिसे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्म अंधा होए नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गरकोट है शब्द संतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुपत रखेसा गुर सेवा ते जाने सच प्रतिये सा।

मत्सिर आवे पार पौड़ी। सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्यायन से सच्चे जिन हर खर्च तन पल्ले। भगत सोन गुण गाउंदे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले। आपे मेल मिला।

अवगुण वंजन गुण रवे है, मन सुख वसे आए पौड़ी, आपे आप वर्तदा आप ताड़ी लायन, आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति लायन, एक आपे उज्जड़ पायन एक पगति लायन, जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाय लायन, नानक नाम ते आई है सच्ची वड़ियाई सुध।

सिर दातिया जग हाथ हर एक सादी में टेक है जो सिर सबना समरत सब गुर संत मिलाया मस्तक तर के हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

अवतारोहा व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूड़ा मन लागा तुस्मोहा ठग ऐसे ठग रल आया साथ दे इको जेहा सतगुर सराफ।

दूजा तिस ना बुझाए, पार ब्रह्म नाम देव आधार, अगम अगोचर साहेबो समरथ सच दातार, तूने चल निर्वैर सच सच्चा।

रत्ना पौड़ी। जिस कै मस्त कर्म हुए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंगिन जागा। लगा रंग चरणार बिंद,

मुद्रा मदद सहज तुन लागी, सुखमन पोतन हारी रे। तीरथ बरत नेम सुख संजम, रव सस गहने दियो रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, यो महारस पियो रे। निजर धार चुए अत निर्मल, ए रस मनु आरा।

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए तेरे द्वारे, तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझे, बिन दागे पग जाई, साधु हो

राम न बोले पांडे दोजक परे रहाओ। आपन ऊंच नीच कर भोजन हथ धर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे।

बारे ले उधरिया सोने मजे पवन चकोरिया आकाश फरफरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया करती जलहर सोखिया कह कबीर हो ताका सेवक जिन इहो बिरवा।

रह निरालम तारी, कहत कबीर सुनो रे संतो, कर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सृजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, पवन इद तरन तारन चिंता मन, एक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे।

मंदर सोवे पटंबर तान, सेज सुखाली बिगसै जियो, सो सिमरन तू अंगन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझको है नमाए, सिमर सिमर हर हर मन गाये, एहो सिमरन सतगुर ते पाये। सदा सदा सिमर दिन रात,

वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजावोगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जीव जंत ना सतावोगो।

आया। खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणवे परम तत्व है सतगुरु हुए लखाया। राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उंट तीर्थ मरे अगन दह काया। कल्प की जय अश्वमेध जग की जय। सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तौ न पूजे छोड़ छोड़ रे पाखंडी

करे तंग जो हिवाले गारे राम नाम सर तौ न पूजे असबान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित कीजे आत्म जो निर्माइल कीजे आप बराबर कंचन दीजे राम नाम सर तौ न पूजे मने न कीजे रोष जमे न दीजे दोष निर्मल निर्वाण पद चीन लीजे जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा तत रस अमर।

सतगुरु प्रसाद इरा पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तुथाई संतो

एतै पास परम गुरुदेव दशम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाथ हाथ पर आला आले पीतर थाती जागत रहे।

मेरे मन जप अहमस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास खरे। रहाओ हर हर नाम जपें आराधें, सेवक पाल खरे। किल बिख दोख गए सब नीकर, जो पानी मैल हरे। किन किन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख असाद नगर में, एक खिन पल दूर करे। वड पागी हर नाम त्यावे, हर के पगत हरे। इनकी संगत देह प्रभ जाचो, मैं मूड मुगद निस्तरे। कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो शरण परे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उदर्यो, प्रभु किए पतित पव गे, गुण दावत छीपा जिस्तार्यो, प्रभु राखी पैज जन गे, जो तुमरे

तेरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वड गे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किलबिक पाप नाम हर काटे जीव खेत कृसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम कैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तदुए बांधेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी खा पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभु वड ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रभ ने हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर

नट महला चौथा। मन मिल संत संगत शुभवंती, सुन अकथ कथा सुखवंती, सब किलबिख पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती रहाओ, हर कीरत कल युग विच उत्तम मत।

हर अकप कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आम सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल।

अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भावे मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जित निमख ना प्रभ बिसरावे, संत संग लग एहो सुख पायो, हर गुण सद ही गावे, देखियो अचरज महा मंगल रूप, किछ आन नहीं दिसतावे, कहो नानक।

त्रास मिटि सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी कृत्य ज्यो बारक खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विष्णु कहे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो आस पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसारियो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेख्यो दास का कुल न विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा विखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर रहे कृपा निज कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

हरे रहाओ, हर हर हर हर हर मन प्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पे प्रभु ठाकुर, गुर के शब्द सवारे, मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकुर अगम

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे। हर हर कथा बनी अत मीठी जो गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे अत पीके लोग विकारे। जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध दिसारे। गुरमत राम नाम तन

बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्तारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लै कूड़ जम

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाए, नक्खीनी सब नथहारे, नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनो मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधिकाई, परसुआ गणक उधारे, परस ना परस

तब किछ न समारे। जब पर मंदर आग लगानी तब कूप कदे पनिहारे। साकत सो मन मेल न करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सच सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे।

के मन सरदा कर हर तारे मेरे प्रभु सरदा भगत मन पावे जन की पै सवारे हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारे अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म पूला मृग सिंहारे बन बन टूट।

कृष्ण बुद्धि अपना कर लूकी जा रे। प्रभ को जन अंतर हृदय लोचे, प्रभ जन के सांस निहारे। कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे। आपन आप प्रभ ठाकुर, प्रभ आपे शिष्ट सवारे। जन नानक आपे आप सब वरते, कर कृपा आप निस्तारे। नट महला चौथा, राम कर कृपा लेहु उबारे।

सत्संगत परम पद पाया कदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे मेरे सतगुरु के।

अन बचन न पाए सब सोकट चार सिवारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख लखारे।

शब्द विचारे निज पर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंदा हम निकती रे नाम के कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपारे।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचनाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन्म मरण निवार ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया। हर पतित पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उधार्यो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम सुखदाता, सत्संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पचाता। रहाओ वड पागी गुरु दर्शन पाया, गुर मिले हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना मन पावनी, हर त्यायो अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहा हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्त के तुरली किया, गुरुमति हर लिवलायो, पंच शब्द दर्गन बाजया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो ते गर्भ जोनी गालिया, जो लोन जलय गलायो। मत दे हर प्रभु अगम ठाकुर, गुरु चरण मन में लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौरा महला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुरु पाया, हर जप्यो परम तो पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांति आई, हर उर्धार्यो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पाप है, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम से आई है हर हर, मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम से आया तिन चूके सर्व जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुरु राखे हर रखवाला। हम बार किछु न जान हूँ हर मात पिता प्रपाला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला, मन आनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल बिख काट, हर हर उतारे हो गुरपुर है मेरा शीश की जय गुरवाट। राव मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट। हर साजन मेलियो गुरपुर है गुर बचन बिकानो हटहाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे बहु कंचन दी जय कटकाट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पाव पागा लज पानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी फूक तिखाट। छक्का पहला माली गौड़ा में।

अवर टहला चूठियां नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरे, जा कै सिमरन अपदा टरे, जा कै सिमरन मुच्चत पाप, जा कै सिमरन नहीं।

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे पालन सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास, जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंच मूचो बहु अपार, सिमरत नानक तरे।

नैन दर्श पेखो निस्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जा कै कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा कर्म जा कै दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाई, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड ले हो पौजल बिखमते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांध भगत वचल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नाम।

तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ। कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारियले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारियले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारियले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत आई।

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे। प्रणवे नामा पहने कामा कोठा कुर को दासारे।

नानक शरण तुहारिया, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है। खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

न कोई किछ खा जाए किछ तर जाए जे बाहुर दुनिया आए सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाली सोवे हाथ पौंदी काहे रोवे कर कुमन वाणी पाई पाप पत्थर तरना।

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पंत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पैला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करें।

पहला एहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तारे रहाओ ना एहो तन जले।

इस तन बिन कहो किने परमगत पाए, पणत नानक अकथ की कथा सुनाए। सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पैला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मूड़े काए चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्रात तज छोड़ तो अप्यो पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। पणत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत बोयत जल सिर तर टिके। साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी, सच ना लागे कत राजा तख्त टिके। गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख, सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि, शंकर इंद तपे पेखारी। माने हुक्म सो है दर साचे, आकी मरे अफारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरुपुरे विचारी। बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी। नितनिया तन निगुरिया, गुर निमानिया तू मान। अंगुले मानक गुर पकड़िया, नितानिया तू तान। होम जपा नहीं जानिया।

ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची एको हाथ साहो सबना सिर वनजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुरु बचनी बाहर।

जियो जिसनु साचा सिफती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ पेशेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे सुंदर।

साचा साहिब हृदय समाल, सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ, एक सच्चा सब सेम दी तुर पाग मिलावा होए, गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए, एक पगती सार न जाननी मनमुख परम पुलाए, ओना विच आप वर्तदा करना किछु न जाए, जिस नाल जोर न चले खले की चै अरदास, नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास, मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए, सो साचा साला ही है तिस जेवर अवर न कोए, मेरे मन अनदिन त्याए हर नाओ, सतगुर कै बचन अराध तू अनदिन गुण गाओ रहाओ, गुरमुख एको जानिए जा सतगुरु दे बुझा।

सत गुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भक्ति पाए तरे। भगत वचल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदे त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआरवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाज जप्यो लिव लाई। साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते भाए। गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत करया। तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया। शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया। कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया। नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया। अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया। गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो। हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा समाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े जप हर हर नाम छड़ावे जियो। रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विकाटे हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो हर चलदिया नाल सखाई जियो। जिसनो कृपा करे सो त्यावे नित हर जप जापे जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे जप हर हर पार लंघाई जियो। रहाओ निर्भव निरंकार सतनाम जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे जिस करता आप छड़ाई जियो। हौ अंदिन नाम लई करता रे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। डर पे तरत आकाश नखत्रा सिर

सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ दे तार अर देवा डर पै सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपुरी ए कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सो है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे इनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखे बिदारे बिदर दासी सुत पयो पुनीता सगले कुल उजारे कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजे पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्न वित प्रम्यो बहु पांते अनक जतन करता।

ए विद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ, मांगन को दान आए, त्यागो सगला मान मेहता।

सहज आनंद रखियो गे पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरेओ आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घर नहीं जानियो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले मानियो पयो किरपाल ठाकुर सेवक का सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू महला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोह जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई रहाओ काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खिन पीतर मैं मा कथन न जाई निरपो पे सगल पै खोए गोविंद चरण ओटाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

दुला रहे हो, हस्त पाव चरे खिन पीतर, अग्न संग ले जा रहे हो, मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो, लून खाए करे हराम खोरी, पेखत नैन बिदारे हो रहाओ, असाद रोग उपजो तन पीतर, तरत न काहू तारे हो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो, एहो नानक तत बिचारे हो, मारू मैला पंजवा, चरण कमल प्रभ राखे चीत, हर गुण गावे नीता नीत, तिस बिन दूजा अवर न को, आद मद अंत है सो, संतन की ओट आपे आप रहाओ, जा के वस है सगल संसार, आपे आप आप निरंकार, नानक गयो

तपत गुरु प्रसाद। प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारयो अज्ञानथ, होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इआनथ, तज सारंग तर परम तू पूला, मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ। तरणी तर त्याग नीच कुल सेवे, हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी, मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मानिया, जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी, ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है, जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा, गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखे पोगे, तपत थम गल लाए। रे नर काए पर गृह जाए, कुचल कठोर काम गर्दव तुम। नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ, विकार पाथर गले बांधे, निंद पोट सिराए। महासागर समुंद लंगना, पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो, नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन न कबहू मिले, महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत, सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा, जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुरु मंत्र अवखद नाम दीना, जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन बिद पार पराए, त्याए हर जियो होए।

आया था। अनुभव अचरज रूप प्रत्यक्षया मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था। मोल अमोल न पाया जाई कर कृपा गुरु दिवाया था। रहाओ अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो तें अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम गुर खो।

ताओ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जम्या निखुट ना कबू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आघाए, मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने तयो प्रगा।

रूप रंग खुशियाँ मन भोगण केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूरे रंग राते जिन गुरु मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्या।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

दी गढ़ है, एक सुखने दाम न खड़ है, राज कमाए करी जिन फैली, ताके संग न चंचल चलिया, एक प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी, सुत नीत प्राप्त गोजी, ताके निकट न

मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो उदारो। करण पला मिटे बिल्लाटा, जप गोविंद परम पौ फाटा। साध संग बिरला को पाए, नानक ताके बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद

जात के केला। हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्तन।

मन तन बासना बहुत विस्तारा, अहं मेव मूठो बेचारा, अनेक दोख और बहुत सजाई, ताकि कीमत कह न जाए, प्रभु विसरत नरक में पाया, तह मात न बंद न मीत न जाया, जिसको होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण, जिस पावे तिस ही निस्तारण, अंधकूप से काडन हारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना पन तारया, महा अगन ते आप उबारया, जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही, नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा, मारू महला पंजवा, कत कौ डह कावो।

ताका आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इस नाम त्याई नानक दीन नाम मांगे जितिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अप

जो अवरण कोई जीवन प्रतपाल समा है एहो सी आहे दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा पतित उदाहरण तारण बल बल बले बल जाये ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यहा ओट आधारा।

मंडल खंडल प्रभु तुम ही आछे, अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मेला पंजवा त्रिपत अघाए संता, गुर जाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए, जा को नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तेखत सगल त्यानो तजो मन ते अभिमानो, नेचल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा, आम दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे, पूरन तृप्त अघाए सह समाज सुभाए, हर पंडार हाथ आया।

छोड़ सगल सियाणपा मिल साद त्याग गुमान और सब कुछ मिथ्या रसना राम राम वखान। मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम। रहाओ दुख दीन ना पाओ बिना मिले सुख विश्राम। गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने मेरे मन ना।

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न से

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, उरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खत्म छड़ाए लया। विच्चों गर्भे निकल आया, खत्म विसार दुनी चित लाया, आवे जाए पवाई जोनी रहन न कितनी था।

प्रदान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थाने आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण

हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उद्रियो, गनकाहु गत पाई रहाओ। पंचाली को राज सभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निदगायो, ताको पयो सहाई, कहो नानक में यही परोस है, गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाई जो संपत अपनी करमानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाए मारू मैला नावा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लागो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत तै जागो कहा होत अब कै पछताए छूटत नाहिं भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो मारू अच्छदिया मैला पहला कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका हर सत तीरथ बहु कहा परम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहा हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा गुरपुर पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठ तीरथ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलो है जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमति जद मथी है अमृत पाए नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना हूं मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कै सबदे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसै।

पाए कार कमावणी नित तोता पै सारा साची संगत थान सचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ सचे सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा मानस दात न होवई तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुर सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साके वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल बाबा जग पाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार सिखे पवन ना पाव को ना जल ना आकार सिखे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए आवा गौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजय सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाए किसनो दी जय दोस गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख मागर मच्छ पाए कुंडी जाल बताए गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए जम्मन मरण न सुजई कीर्तना मेटिया जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तामत जग बांदिया ना बूझे विचार जम्मन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिय उडे ताए कावार गुर मिले खसम पछाणिय कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तै जाओ जिस तै डर तै पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक को बीजो नाही खाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाय जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे

पूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दासा को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोचिए तू दीपक तू तूप, गीत साध चा

नानक नाम ना विसरे, जो तुस पावे सो होग, मारू मैला पैला। साची कार कमावनी होर लालच बाद, इह मन साचे मोहया जेवा सत्साद। बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे। ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव। अंदिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा, गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा। गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा, लाला गोला तनी तो क्या कहो वड्याई है। ताने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है, विछुड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है। लाले गोले मत खरी गुर की मत नी की, साची सुरत सुहावनी मन मुख मत पी की। मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरथ तुर की, साचे बैसन उठना सच भोजन पाकिया। चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाखिया, साचे कर साचे रखे गुर वचन सुवाखिया। मन मुख को आलस करो साचे उजाड़ी, साथा चुगे नित चोगड़ी लग बंद बिगाड़ी। गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज तारी, अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी। बिन साचे जियो जल बलों झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया साची तरकारी। जिन्नी नाम विसारिया तिन्ना ठोर न ठाओ, लाले लालच त्यागिया पाया हर नाओ। तू बख्शे ता मेल ले नानक बल जाओ, मारू मैला पैला। लाले गारव छोड़िया गुर के पैसे तुभाई, लाले खत्म पछाणिया वड्डी वड्याई। खत्म मिले सुख पाया कीमत कह न जाई, लाला गोला खत्म का खत्म वड्याई। गुर प्रसादी उबरे हर की शरणाई रहाओ। लाले नो सिरकार है उर खत्म फुरमाई, लाले हुकम पछाणिया सदा रह रजाई। आपे मीरा बक्सले वड्डी वड्याई, आप सच्चा सब सच है गुर शब्द बुझाई। तेरी सेवा सो करे जिसनो लह तुलाई, बिन सेवा किने न पाया दूजे परम खुआई। सो क्यों मनो विसारी है नित देवे चले फलाया, जियो पिंड सब तिसदा साओ तिने विक पाया। जा कृपा करे ता सेवी है सेव सच समाया। लाला सो जीवत मरे मर विच्चों आप गवाए, बंधन टूटे मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए। सब में नाम निदान है गुरमुख को पाए, लाले विच गुण किस नहीं लाला अवगणियार। तुद जेवर दाता को नहीं तू बख्शनहार, तेरा हुक्म लाला मन्ने ए करनी सार। गुर सागर अमृत सर जो इच्छे सो फल पाए, नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए। गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए। सोना रूपा सब तात है माटी रल जाई, बिन नामे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई। नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई, मारू मैला पैला। हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीरे, तेहो मन अवगुण बांधिया सो दे शरीर। पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है, क्यों रही है उठ चलना बुद्ध शब्द बिचारा। जिस तू मेले सो मिले तुर हुक्मा पारा रहाओ। जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ, जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ। मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मेले मन चाओ, कीता क्या साल आईए कर देखे सोई। जिनकी आसो मन वसै मैं अवर न कोई, सो साचा साल आईए साची पत होई।
पंडित पढ़ न पहुंचे बहु आल जंजाला पाप पुन दे संग में खुदिया।

मेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जय मैला उजर तांतिये पारस संग पी जय वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जय पेटी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़न से आमूठी विन माने नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मनमुख लहर कर तज विदूचे अवरा के कर हेरे गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेट है दुर्मत तू मन के रे दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द ना चीने उधर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी कर कर मांगे जग पर बोधे मन अंधे पतहारी परम पुलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अथक तीरथ परम विगूचे क्यों मल तो कह पापे छानी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते छो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत को है नाम न जपे क्यों सुख पावे बिल नावे क्यों सो है मूंड मुंडाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभिमाना मनुआ डोले जय दिस्तावे दिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिक पी रे माया का देवाना कीर्तना मिटे हुक्म न बूझे पतुआ माही समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ता जम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच्चों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके ना बोले खिमा तन संग रहे तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आप निराश रहे सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवा ना डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमती खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी

दोहागनी सावरने क्यों जाओ, मैं गल औगन मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ, तेरे फिर समला सावरने करवास, सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुण पास, लेख निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए, फिर मुट्टी दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

गुरुमुख बूझे जानिए हो मैं गर्भ निवार। तो पावन तो जहिया कितिया नानक ना हो ना विछड़े।

सच्चा साथ न टुटई गुर मेले सहिया। बलिहारी गुर अपने सद बलिहार जाओ, गुर बिन एता पव सकी, गुर फिर मेलम दित्तम मिलाए रहाओ। फुफी नानी मासियां देर जिठानड़िया, आवन मंजन ना रहन पूर परे पहिया। मामे ते मामानिया पायर बाप ना माओ।

विलाड, पार पवंदड़े डिठ में सतगुरु बोहत चाड़। छिकनी लद्या हिक लद गए छिक पारे पर नाल, जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल। ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए, नानक हो।

एक जोत दोए नाओ, मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाए, बिन सतगुर पल्ले ना पाए, सतगुर कह पाने।

ताने जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विचो दुरमत होवे। रंग सो नितरनिया माने, अपने कंत प्यारी जियो।

एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए आपन लिया किछु ना पाये कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंग कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा

कार्तिजा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद लख चौरासी परमते परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो रहाओ रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग मेरे मान को स्थान मीत साजन

कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिनसै जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहै ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिध जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास मारू मेला पंजवा।

देव कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर नह व्यापैखिन उतरो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत, ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्वजी समत, कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो विखाद, शीत मंद सुगंध चल्यो सर्वथान समान, जहां सा किछ तहां लागयो तिल न शंका मान, सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए, चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल, मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांद।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुरचरणी मन लागना।

कहो नानक तिस सब किछ नीका, जो प्रभु की शरणागना मारू महला पंजवा। आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनाव ना रहाओ। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हृदय वासे, दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासे, दुर्मत दुख सजावना। दर्शन भेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना। नौ निद रिद्ध सिद्ध पाई, जो तुम रे मन पावना। संत बिना मैं थाओ न कोई, हवर न सूजे जावना। मोहे निर्गुण को कोई न राखे, संता संग समावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन, हर जप जप सद जीवना रहाओ। पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना। खावना जित भूख ना लागे, संतोख सदा तृप्त जीवना। पहनना रख पत परमेश्वर, फिर नांगे नहीं थीवना। पोगना मन मदे हर रस, संत संगत में लीवना। बिन तागे बिन सुई आनी, मन हर पगति संग सीवना। मात्या हर रस में राते, तिस बहुड़ न कबहू औखीवना। मिलियो तिस सर्व निधाना, प्रभ कृपाल जिस दीवना। सुख नानक संतन की सेवा, चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार। सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता। दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता, सोई सुहेला पालिए। ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा। देही में जो रह अलिप्ता, तिस जन की पूरन कालिए। जागत सूता परम विगूता, बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता। साध संग तुटे हो बंधन, एको एक निहालिए। कर्म करे ता बंदा, ने करे ता निंदा। मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने। कट कट राम हियालिए, संसार में सहसा व्यापे। अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे। ओ बालक वांगी पालिए, छोड़ बह तो छूटे नाही। जो संचे तो पौ मन माही। इस ही में जिसकी पत राखे, तिस साधु चोर टालिए। जो सूरा तिस ही होई मरना, जो पागे तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल माने, बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए। जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे अपने जचना। नानक के पूरन सुख दाते, तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे। एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले। ज्यो ज्यो औध विहानिया, पाप करेंदर सर पर मुठे। अजराइल फड़े फड़ कुठे, दोजक पाए सिरजन हारे। लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई पैया बेबा। माल जोबन तन छोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता। तिल पीड़े ज्यो काणिया, खुश खुश लेंदा वस्त पराई। वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। जिनकी तात से ना जानी, अंदा ता दुख सह प्राणिया। खालक था वो पुल्ला मुठा, दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा। सिदक सबूरी संत ना मिलियो, वत्ते आपन पानिया। मौला खेल करे सब आपे,
एक कड्डे एक लहर।

संता संगत नरक न पाई, अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता नित वखाणिया। मारू सोलहे महला पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यों पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाए पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान ध्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके, साचे स्यों लिवला।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच खच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, जोदी सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख है, कोई न मेटे साचे लेख है, आपे करे कराए आपे, आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने क्यों लूजे, जो तुद सेवे से तुद ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना तिस मात पिता।

कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सबना सिर, पाए मिले पहु जाई है, फूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांति पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, 68 अंक समाई है, आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है, आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैर आई है, जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना कमाई, परपुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या काला ही अगम अपार है, साचे सृजनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है।

पूंजी साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर न काई है। जुग जुग साचा है भी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कहे बेनंती दर देखू लिवलाई है मारू महला पहला। दूजी दुर्मत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कारवार सहज न जाने छोहर बिन फिर नींद न पाई है। अंतर अगन जले पड़कारे मन मुख तक के कुंडाचारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अंकार निवारे सत्सर पंच शब्द संगारे ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे मन सामने समाई है। माँ की रकत पिता बिंद तारा मूरत सूरत कर अपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना गुर ते समझ पड़ी क्या।

आवत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन तंदे लाया, सच्चे ऊपर

नानक नाम रते बैरागी, निज कर तारी लाई है मारू महला पहला, आद जुगादी अपर अपारे, आद निरंजन खत्म हमारे साचे।

सच नाम सच्ची वड्याई सच है तख्त वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरत जहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरत साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेत धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मनमुख पचे अवाई है। मनमुख कदे न

कर्म तर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सब सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब चीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सह समाए, त्रिभवन ज्योत करी परमेश्वर, अवर न दूजा पाई।

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही। मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यों बनत बनाई है, प्रभ की गत मित कोई न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हे उपाई है, वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए। गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाए है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे दे खपावे। राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई। पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो साच कमावे। नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता। आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है। आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे। तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत ए वडाई है। जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे। पुस्तक करें पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है। ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साथ परिसे। कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई है। बूजो हर जन सतगुर बाणी, इह जो बन साथ है देह पुराणी। आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाहारा। साकत कूड़ पचे मन हो मैं,

सुनाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरे आई, हों मैं तंद छोड़ो लंपटाई। सतगुरु शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिखेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पाव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे सब रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिस का लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, तारी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यों तिस पाना तिवै चलाए, तिसे सरीत न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग चतवारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूझे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा

काली हुफुन तौले आए विणनावे गत गया गवाए दुर्मत अंधला बिनस बिनासे मूठे रोए पुकारा है आप विचार न रोवे कोई सतगुर मिले ता सोजी होई बिन गुर बजर कपाट न कूले शब्द मिले निस्तारा है बिरद पया तन सीजे देही राम न जपई अंत स्नेही नाम विसार चले मुह काले दरगे झूठ खुआरा है नाम विसार चले कूड़ियारो आवत जात पड़े सिर छारो सौरड़े कर वास न पाए।

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजे, पौन पानी बैसंतर गाजे, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाहे, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त पराए।

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुर पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआ

दुख कनेरे, नरक पते अज्ञान अंधेरे, कर्म राय की बाकी लीजे, दिन हर का नाम विसारा है, सूरज तपे अगन बिख चाला, अपत पशु मन मुख बेताला, आशा मनसा कूर कमावे, रोग बुरा बुरे आ रहा है, मस्तक पार कल

सतगुर तोड़े गुरमुख तत् विचारा है। कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दा जय पर पर पाही। अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है। खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर सैल न पीजे। करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुरग अवतार।

कूकर कूकर कहिए कूड़ियारा, पौक मरे पौ पौ पौहारा, मनसा चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जस दरगे प्यारा है। राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा है। मारू मेला पहला कर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, एनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्भ मजारा है। सच तीरथ नावो हर गुण गावो, सत विचारो हर लिवलावो, अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, तिस में राम रतन लैचीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत के वो निस्तारा है। साकत पूर कपट में टेका, हैनत निंदा करे अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्भ जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके, बाकी तर्म राय की लीजे, सिर अफरियो पार अफारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिए पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूड अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी,

चाले चाले बिखला दे चार बिकारा है। हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरुमुख हर लिव गुरुमुख जाती।

मारे। तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करें प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यो तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल।

आला कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला साकत दुर्मत डूबे दाजे गुर राखे हर लिवराता है अब तेज वाए पृथ्वी आकाशा दिन में पंच तत्व करवासा सतगुर शब्द रहे रंग राता तज माया हो मैं प्राता है तिव मन पी जय शब्द पति जय बिन नावे क्या टेक की जय अंतर चोर मुह कर मंदर इन साकत दूत ना जाता है दुंदर दूत पूत पिहाले किंचो तान करें बेताले।

ताकत फांसी पड़े इकेला, जम वस किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूजे, आज काल पच जाता है, सतगुरु बाज न बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभु सोई, राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलले सलल मिलाता है, फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए, जिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की पगत करे क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश ना जाने, सतगुर अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है, अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन्न, एनत निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पहचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दी जय। जिन सतगुरु हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सृजन हारे। जिन कर चतर करे विचारे आपे करता कर

जिन गुरु पूरे तत न पाए सच सूचे सच रहा है। सब का लाहे सुन सुन आखे आपे दाना सच पराखे। जिनको नदर करे प्रभ अपनी गुरमुख सब सलाहा है। सुन सुन आखे क्योंकि बाणी सुन कहिए को अंत न जाने। जा को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए सोह लड़े अज्ञानी गाए। जो जन्मे ते सर पर मरना सिर पया सिर सहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही

सच्चा वखर जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ महा है। काती सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रात सलामत यूका जम का फाहा है। सब को बोले आपन पाने मनमुख दूजे बोल न जाने अंधले की मत अंधली बोली आए गया दुख ताहा है। दुख में जन्मे दुख में मरना।

डाल छोड़ तत मूल पराता मन साचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। ओढ़ न कथने सिफ सजा।

नानक साथ मिले पत राखो। तू सिर साहा पातशाह है, मारू मैला पहला दखनी, काया नगर नगर गर अंदर, साचा वासा पुर गगन अंदर, अस्थिर थान सदा निर्माइल, आपे आप उपाएंदा, अंदर कोट छजे हट नाले, आपे ले वे वस समाले, बजर कपाट जड़े जड़ जाने, गुर सब्जी खोलाएंदा, पीतर कोट गुफा कर जाई, नौ कर खापे हुक्म रजाई, दसवें पुरख अलेख अपारी, आपे अलख लखाएंदा, पौन पानी अग्नि इक वासा, आपे की तो खेल तमाशा, बल्दी जल निगरे कृपा ते, आपे जल निद पाएंदा, तर्क उपाय तरी धर्मशाला, उत्पत पर लो आप निराला, पौने खेल किया सब खाई, कला खिंच टहाएंदा, पार अठारे मालन तेरी, चौर तुले पवने ले फेरी, चंद सूरज दो दीपक राखे, सत कर सूर समाएंदा, पंखी पंच उडर नहीं तावे, सफल्यो बिरख अमृत फल पावे, गुरमुख सहज रवे गुण गावे, हर रस चोग चुगाएंदा, तिल मिल चिल के चंद न तारा, सूरज किरण न बिजल गैनारा, अकत्ती कथो चेन नहीं कोई, पूर रहा मन पाएंदा, पसरी किरण जोत उजियाला, कर कर देखे आप दयाला, अनहद रुण चुनकार सदा सुन, निरपौ के करवाएंदा, अनहद वाजे परम पौ पाजे, सगल व्याप रहा प्रभ छाजे, सब तेरी तू गुरमुख जाता, दरसो है गुण गाएंदा, आप निरंजन निर्मल सोई, अवर न जाना दूजा कोई, एक अंकार वसे मन पावे।

प्रभु दरबारे मुक्त पए हर दास तुम्हारे आप गवाए तेरे रंग राते हम दिन नाम से आए दास ईश्वर ब्रह्मा देवी देवा इंद्र तपे मुन तेरी सेवा जति सती के ते बनवासी अंत न कोई पाएदा ऋण जान आए कोई न जाने जो किछ करे सो आपन पाने लख चौरासी जी उपाय पाने सहलवाए दा जो तिस पावे सो नेचो होवे मन मुख आप दनाए रोवे नामो पुल्ला ठौर न पाए आए जाए दुख पाएदा निर्मल काया उजल हंसा तिस विच नाम निरंजन अंसा सगले दुख अमृत कर पीवे बहुर दुख न पाएदा बहु साधो दुख प्राप्त होवे ओगो रोग सो अंत विगोवे हरखो सोग न मिटई कभू विन पाने परमाएदा ज्ञान विहूनी पवे सबाई साचा रव रहा लिव लाई निरपो शब्द गुरु सच जाता ज्योति ज्योत मिलाएदा अटल अडोल अतोल मुरारे किन में चाहे फिर उसारे रूप न रेखिया मृत नहीं कीमत शब्द पेद पति आएदा हम दासन के दास प्यारे साधक साच पले विचारे मन्ने नाओ सोई जिन जासी आपके साथ जिड़ाएंदा पल्ले साच सचे सच्यारा साचे पावे शब्द प्यारा त्रिभवन साच कला तर थापी साचे ही पति आएंदा वड्डा वड्डा आखे सब कोई गुरु बिन सो जी किने न होई साच मिले सो साचे पाए ना विछड़ दुख पाएंदा गुरों विचुन्ने ताही रुन्ने मर मर जन्मे मोहलत पुन्ने जिस बख्शे तिस दे वड्याई मेल न पछोताएंदा आपे करता आपे पुगता आपे तृप्ता आपे मुक्ता आपे मुक्त दान मुक्ति

ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएंदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएंदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा।

मसाई कहा जी रैयत राव न हो मैं दुनिया ना तो कहन कहाएंदा पाओ न पलती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एहो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता।

पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया, गुरमुख किसे बुझाएंदा, नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी, आपे बिरसते आएंदा, आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जगे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा, प्रेम पदार्थ ले अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का व्यापारी होवे, सच्चो सौदा पाएंदा, सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुरु हृदय मिलाए, गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा, हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया, हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा, हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग, हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा, हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवन वासी, हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएदा, हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पैजे, साथ मिलाए समाएदा, हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएंदा, काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएंदा, सत संतोख नगर में कारी, जत सत संजम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएंदा, मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएंदा, कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गणराजे, अगन पानी जियो ज्योत कुमारी, सुनने कला रहाएंदा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएंदा, सुनो सपत सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा, सुनो चंद सूरज गैनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएंदा, सुनो तरत आकाश उपाए, बिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा, सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समानी, कुछ कुछ चलत किया सिर करते, विस्माद शब्द देखाएंदा, सुनो रात दिन सदोय किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा, साम वेद ऋग जुजर असर बन, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ताकी कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बोलाए।

दा सुनो सपत पताल उपाय सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया परंपर सब तेरो किया कमाए दा राज्य तम सत कल तेरी छाया जन्म मरण हो मैं दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरुमुख गुण चौथे मुक्त कराएंदा सुनो उपजे दस अवतारा श्रेष्ठ उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएंदा गुरुमुख समझे रोग न होई हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुग है जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त पया पत पाएंदा पंच तत् सुनो परिगासा दे संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा पला दोय मस्तक लीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुरु पुरख निराले शब्द रते हर रसमत वाले रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये पूरे पाग मिलाएंदा इस मन माया को निहो कनेरा कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा आशा मनसा हो।

पाया, पंच तत् मिले तन किया, आत्म राम पाए सुख किया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना किस भूख प्यास मन मान्या, सर्व निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुवाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, सब दिर साल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाया, बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई, नानक बूजो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रह निरारे, आप तरह संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया, कर दर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुर ते सोजी होई, काया गर महल मैली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी, सेवक पंच नाही बिचाखी, अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आज जुगादी है भी होसी, सहसा परम चुकाया, सखत सलाम होवे दिन राती, क्यों साथ बढ़ाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया, मारू मैला पहला, हर तन संचो रे जन पाई, सतगुरु सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर ना लागे ताको, तुन उपजे शब्द जगाया, तू एकंकार निरालम राजा, तू आप सवार है जन के काजा, अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर स्थान सुहाया, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसें

दस में पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया।

सर्व निरंजन पुरुष सुजाना, अगल करे गुर ज्ञान समाना, काम क्रोध ले गर्दन मारे, हो मैं लोभ चुकाया, सच्चे थान वसे निरंकारा, आप पछाने शब्द विचारा, सच्चे महल निवास निरंतर, आवन जान चुकाया, ना मन चले न पौन उड़ावे, योगी

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोर सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रवदाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्य कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाये जमते क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कथ है देख है अपरंपर, पुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुर मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुद्र अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत लेहो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत लेहो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के फाहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तत निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम क्रोध

देख अदित रहो लिव लागी। सब त्रिभुवन ब्रह्म सवाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए। ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे। हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा। हर जपते मन मन से तीरा, दुकट काटे पौ पंजन पाये। बाहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा। हर जप नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए। हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके। जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम। जग पौजल पार कराया, ये पौजल जगत शब्द गुर तरिये। अंतर की दुविधा अंतर जरिये, पंच बाण ले जम को मारे। गगन अंतर तनस चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये। शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण। हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला। भगत परापत गुर गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजे। गुर शब्द निरंजन पाया, निरपौ को सिर नाही लेखा। आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो। नानक गुरमत सो पाया, अंतर की जब सतगुर जाने। सो निरपौ गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे। अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसया। एनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जब संगत पाये। हर सहजे सहज मिलाया, अंतर बाहर सो प्रभु जाने। रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्ब तिहु लोई। सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला। कुदरत करने हार अपारा, जीते का नाही क्यों चारा। जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया। हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे। गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते काक सबाया। जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम त्याए। अनद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया। मन तन तंते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा। मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया। जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा। नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया। संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा। जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गए जस गाया। सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गए गत पत पाए। साकत ठोर नाई हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया। सेवो सतगुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा। विख्या मल जाए अमृत सर नावो, गुर सर संतोख पाया। सतगुर सेवो संत न की जय, आशा माहे निराश रही जय। संसा दुख बिना सन सेवो, फिर बहुर रोग न लाया। साचे पावे तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए। हर गुर मूरत एका वर्त है, नानक हर गुर पाया। वाच्य है पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना। अजदर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया। करें विपूत लगावे पस में, अंतर क्रोध चंडाल सोहो में। पखंड की ने जोग न पाये, बिन सतगुर अलख न पाया। तीरथ वर्त नेम करें उद्याना, जत सत संजम कथे ज्ञाना। राम नाम बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुर परम न जाया। न्योली करम प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी। पखंड तरम प्रीत

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्ते सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौ मैं मेरा पसरिया पासारा, अंधिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर शब्द सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, हम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना।

अंग दिन नाम रवे दिन राति मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजे है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरथा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई।

काया संगारे मरमर जम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने सुध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है। हम मैं मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हो होर ना जाना सहजे होए सो होई है। बिन सतगुरु सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हो मैं सब देखोई है। आते गुण

पाए सुबाए है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाए, परखा के साथ न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुँक है जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिर जे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, ज्यों पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछा।

दरसा तै पत पाई है मारू महला तीजा जो आया सो सबको जासी दूजे पाए बांदा जम फासी सतगुरु राखे से जन उभरे साचे साथ समाई है आपे करता कर कर वेख जिसनो नदर करे सोई जन लेख है गुरमुख ज्ञान किस सब किस पूजे अज्ञानी अंध कमाई है मन मुख सहसा बूझ न पाई मर मर जमे जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साज समाई है संदे ताबत मन पया मनूरा सिर होवे कंचन पेटे गुरपूरा आपे बख्श ले सुख पाए पूरे शब्द मिलाई है दुर्मत झूठी बुरी बुरियार अवगणियारी अवगणियार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है अवगणियारी कंस न पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साओ न जाने मूरख बिन गुर बूझ न पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुरु मेल मिलाई है आपे हुक्म करे सब वेख है इकना बख्श ले तुर लेख है हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हम मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेख है बिन सतगुरु बूझ न पाई है एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे सतगुर सेवा के सुख पाया हर के नाम समाई है दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते पेख करे न पाए बिन सतगुर सुख न पाई है किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तितरा चराए आपे मेहरवान सुखदाता ज्यो पावे तिह चलाई है आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता एक छह गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख परम पहु जाई है गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है मारू महला तीजा सत्साला ही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कैचीर है सब कट भोग वै सदा दिन राती आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाई गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है किस सेवी तै किस सलाही सतगुर सेवी शब्द सलाही सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत ना लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अंदिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है हर नाम चेता अवरना पूजा एको सेवी अवरना दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है परम परम जोनी फिर आया आप पूला जा खत्म पुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अविनाशी है काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पाथर मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा आपे बख्श लें सुख पाए सभी नाम निवासी है
ਇਹ ਤਨ ਧਰਤੀ ਸਬਦ ਬੀਜ ਅਪਾਰਾ ਹਰ ਸਾਚੇ ਸੇਤੀ ਵਣਜ ਵਪਾਰਾ ਸਚ ਤਨ ਜਮਿਆ ਕੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਹਰ ਜਿਉ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਨੋ ਗੁਣ ਕੀ ਜੈ ਆਪੇ ਬਸ ਲੈ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਟ ਪਾਏ ਇਕਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਹਰ ਤਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਤਨ ਪਾਏ ਸਦ ਹੀ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਨਲਵਾਓ ਪਰਮ ਪੁਲਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦੇ ਕਿਛੂ ਨਾ ਸੂਜੈ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਸੂਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੈ ਅੰਤ ਵਿਗੂਤੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਜਾ ਲੈ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰਤੈ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ।

आपे लाए ले जग जीवन दाता, आपे बख्शे दे वडियाई, गुरमत एव मन पी जय है, माया लहर शब्द निवारी, एव मन निर्मल हो मैं मारी, सहजे गुण गावे रंग राता, रसना राम रवि जय है, मेरी मेरी करत विहानी, मन मुख ना बूझे फिर आणी, जमकाल कड़ी मोत ने

माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमती हर नाम पीजै है, सबना विच वरतै इक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौ मैं मारथ दा सुख पाया, नाए साचै अमृत पीजै है, किलविख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किछ आपे आप वरतै, गुरमुख तन मन पीजै है, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम लीजै है, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे है, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाई है, हर हर रसना पी जाए है, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत शांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जाए है, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आंख वखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरमुख अमृत पीजे हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा

सच्चे सच्चा सख्त रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही सात वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है, सच्चा सौदा सचवा पारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोट ना आवे, बूझे को विचारी है, सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ा।

पौड़ी ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है माया मोह शब्द जलाया सच मन वस्या जा सुध पाया सच्चे की सब सच्ची करनी हूँ मैं सिखाने वारी है माया मोह सब आपे कीना गुरमुख विरले किन्ही चीना गुरमुख वो वैसो सच कमावे साची करनी सारी है कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हूँ मैं मार निवारी है सच लगे तिन सब किस पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे ऐसे साचे से दर साचे नगरी नदर सवारी है बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सवाया बिन गुर दुख सुख जाते नाही माया मोह दुख पारी है साचा शब्द जिना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सच्चो सेवे सच त्यावे सच रते विचारी है गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सुख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होवा गुर की सेव प्यारी है से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे पाने आप मिलाए सतगुर राखे से जन उभरे होर माया मोह खुआरी है गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कुटुंब ना तिस माता एको एक रविया सब अंतर सब ना जिया का आधारी है हूँ मैं मेरा दूजा पाया किछ ना चले तुर खसम लिख पाया गुर साचे ते साच कमावे साचे दुख निवारी है जा तू देह सदा सुख पाए साचे सब दे साच कमाए अंदर साचा मन तन साचा।

तीजा आते आप उपाय उपन्ना सब में वर्त है एक प्रछन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एको जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा तिर साचा साला ही सदही जिन गुर का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह शब्द पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक स्ने प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सवाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी खाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद, ये मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह

आपे करता सब जिस करना, जी जंग सब तेरी सरना, आपे गुप्त वर्ते सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत परे पंडारा, आपे बसे शब्द।

कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जमे चूके फेरी। साचे गुण गावे दिन राती, जुग जुग एक हो जाता है। माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया। जो तुड पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष सोग सब दुख है पारा। गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है। कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोक्ष द्वारा। पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोह हर क्यों चित न लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे। मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है। हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किल विख काटे दुख सवाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है। जिसनो नदर करे सो गुण निद गाए, हो मैं मेरा ठाक रहाए। गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख विरली जाता है। मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा, आपे मिले गुर शब्द विचारा। आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है। मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा। हौ मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है। गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा। गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हौ मैं मार पछाता है। रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा। गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है। सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा। मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता है। आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए। नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है। मारू महला तीजा, को सच सेवियो सृजन हारा। सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। आपे अगम असहा है, आपे सच्चा सत वरताए। एक जन साच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे। नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए। सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे। इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करे पर आप पछाणे। एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे। पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए। विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे। काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे। माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे। जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए। गुरमती नाम मन वसाए, अंदर नाम त्याए साचा। इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई। गुरमुख देवे मन वसाए, जिन मन वस्या से जन सो है। तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुण दाता। लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा। अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी। गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई। एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई। महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुक्म अपारा। मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई। हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने। तावत राखे।

होई सबत सलाहे से जन निर्मल निज करवासा ताहा है सदा पगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहा है मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन सात नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कट अंतर शब्द सच्चा ओ माहा है। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहा है। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वरताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वरते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहा है। अफ्रियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेर ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

आए, गुरुमुख हो वह को नाम बूझे, काटे दुर्मत साहा है, गुरुमुख उपजे साज समावे, ना मर जमे ना जूनी पावे, गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अंदिन लें दे लाहा है, गुरुमुख भगत सोहे दरबारे, सच्ची बाणी सब सवारे, अंदिन गुण गावे दिन राती, सह छेती कर जाहा है, सतगुर पूरा सब सुनाए, अंदिन भगत करो लिव लाए, हर गुण गावे सद ही निर्मल, निर्मल गुण पाप सहा है, गुण का दाता सच्चा कोई, गुरमुख विरला बूझे कोई, नानक जन नाम सलाहे, बिगसै सो नाम बेपरवाह है, मारू महला तीजा, हर जियो सेवियो अगम अपारा, किसदा अंत न पाये पारा वारा, गुर प्रसाद रविया कट अंतर तित कट मत अगाहा है, सब मैं वरते एको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सबना प्रतपाल करे जग जीवन, दीनदार रिजिक संभाहा है, पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत उपाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर साहा पात साहा है, सच्चा सतगुर शब्द अपारा, किस दै शब्द निस्तर है संसारा, आपे करता कर कर वेख है, दिन दा फास गिराहा है, कोट मदे किसे बुझाए, गुर कै शब्द रते रंग लाए, हर साला है सदा सुखदाता, हर

सतगुर पूरा साथ दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्ते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरुमुख जाते, सब दे सेवे सो जंत्रा पे, अंदिन सेवे सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लब लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया तट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभ साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरसन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुद नो कोई न जानी, तुद आपे कथी अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन

वर्ते अवर न बिया गुर प्रसादी आप पछाणे कमल बिकसे बुद्ध ताहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिर्फ सलाह है देही अंदर वस्त अपारा।

गुर कै शब्द हर नाम वखाणे, अंग दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्द सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, अंग दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसे कट अंतर, सो कट निर्मल ताहा है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तफे साला है, मेरे प्रभु साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आसाला है, तेरे गुण प्रभु तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तक

पूरे गुरते सो जी होई, हर रस पीने सदा ते आयन, गुरमुख सील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निध नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रईयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम सत

हाँ मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिन से नाम विसारा, बिन सतगुरु सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सबद तुहाया, पंच सबद मिलवा जावाया।

कारज न होवे, संयोग वियोग करते लिख पाए, कीर्तना चले चलाहा है, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हास्यो सद ही रह समाए, गुर कृपा से मिले वड्याई, होमे रोग ना ताहा है, रस खस खाए पिंड वधाए, एक करे गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी, बिस्ता माए समाहा है, वेद पढ़े पढ़ बाद वखाने, कट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछाने, गुरमुख होवे सो तत बिलोवे, रसना हर रस्ता है, सार वस छोड़े बाहर तावे, मन मुख अंधे साध न पावे, अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल न ताहा है, मन मुख देही परम पकारो, दुर्मत मरे नित होए खुआरो, काम क्रोध मन दूजे लाया, सुपने सुख न ताहा है, कंचन देही शब्द पतारो, आम दिन पोग पोगे हर्षों प्यारो, महला अंदर गैर महल पाए, पाना बुझ समाहा है, आपे देवे देवन हारा, किस आगे नहीं किसे का चारा, आपे बक्के शब्द

सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच समाएदा। गुरमुख मन निर्मल सत करनावे मैल न लागे सच समावे सच्चो सच कमावे सद ही सच्ची पद दृढ़।

गुरुमुख सच्चो सच वखाणे, गुरुमुख सत सेवै सच्चो सच्चा, गुरुमुख सबद सुनाएदा, गुरुमुख होवै सो सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए, गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चै हर गुण गाएदा, गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार, पाए भगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा, गुरुमुख होवै मन खोज सुनाए, सच्चे नाम सदा लिवलाए, जो तिस पावे सोई करसी, जो सच्चे मन पाएदा, जां तिस पावे सतगुरु मिलाए, जां तिस पावे ता मन वसाए, अपने पाने सदा रंग

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नामे नाम समाएदा मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकम सब साजी, आपे साफ उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकारा।

विचरव्या सबद अपारा गुरमुख गावे सदा गुण साचे मिल प्रीतम सुख पाएदा काया हर मंदर हर आप सवारे तिस विच हर जियो वसै मुरारे गुर कै शब्द वणजन व्यापारी नगरी आप मिलाएदा सो सूचा जे क्रोध निवारे सबदे बूजे आप सवारे आपे करे कराए करता आपे मन वसाएदा निर्मल भगत है निराली मन तन सोवे शब्द विचारी अन दिन सदा रहे रंग राता कर कृपा भगत कराएदा इस मन मंदिर में मनुआ तावे सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे बिन सतगुरु पे ते ठौर न पावे आपे खेल कराएदा आप अपरंपर आप विचारी आपे मेले करनी सारी क्या को कार करे बेचारा आपे बख्श मिलाएदा।

दिसंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाए दा, जब तब संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाए दा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाए दा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्त है सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएं दा, एक माया मोह गर्भ

अच नाम सितलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पचाता तुदनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर कीमत।

मत दिहे सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा अन दिन आर जा छिजदी जाए रैन दिन दोए साखी आए मनमुख अंग ना केतै मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पो पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिंतु जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच्चा।

लख चौरासी आप उपाए, मानस जन्म गुरु भगत दृढ़ाए, बिन भगती बिस्ता विचवासा, बिस्ता विच फिर पाए दा, कर्म होवे गुरु भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यो पावे तिवें चलाए दा, सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तप न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाए दा, सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठापे वेख है, गुरमुख आप बुझाए दा, सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन कीरा, अदम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाए दा, आप निराल

सहसा मूल न चुके विकारा गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए सच्चे सच समाए दा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संजम नाम प्यारा किलविख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन शीतल होआ सहजे सह समाएंदा अंतर लोभ मन मैले मल लाए मैले कर्म करे दुख पाए कूड़ो कूड़ करे वा पारा कूर बोल दुख पाएंदा निर्मल बाणी को मन वसाए गुर प्रसादी सहसा जाए गुर कै पाणे चले दिन राती नाम चेत सुख पाएंदा आप सिरंदा सच्चा सोई आप उपाए खपाए सोई गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे मिल साचे सुख पाएंदा अनेक जतन करे इंद्री वसना होई काम क्रोध जले सब कोई सतगुरु

अंतर साज परम सुखाए सत सचै का आपे दाता जिस देवे सो सच पाएगा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएगा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा ले रहे जो तिल कहानी पीड़ाएगा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल किस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएगा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएगा अंदर प्रदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

रसना नाम से आए रस पीजे, रस ही ते रस पाएगा, महले अंदर महल को पाए, गुर कै शब्द सच चित लाए, जिसनो सच देव सोई सच पाए, सच्चे सच मिलाएगा, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नाम है मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएगा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा।

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम से आयेंदा नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सचो वापारा, निचल वासा पाएंदा अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चा

जिन सब दे सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएंदा। एक चित आए जन्म गवाए मन मुख लागे दूजे पाए ए वेला फिर हाथ न आवे पद किसे पछताएंदा। गुर के शब्द पवित्र शरीरा तिस विच वसे सच गुणी गहीरा सचो सच वेखे सब थाई सच सुन मन वसाएंदा। हों मैं गणत गुर शब्द निवारे हर जियो हृदय रखो उड़धारे गुर के शब्द सदा साला है मिल साचे सुख पाएंगा। सोचे ते जिस आप चिताए गुर के शब्द वसै मन आए आपे वेखे आपे बूझे आपे आप समाएंदा। जिन मन विच वठ पाई सोई जाने गुर के शब्दे।

इहो शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम फुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया न जाए, मन मुखूले मोए बिल्लाए, जिनको नजर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस्त समाले, हर का नाम त्याय दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा।

पुत्र इस बाणी ते हर नाम पाएंदा। वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेत बद्दा जमकाले। दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएंदा। गुरमुख एक स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा मने समाए। साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएंदा। जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते। सतगुरु सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएंदा। माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए। सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जांदे बिलम न लाएंदा। इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए। पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएंदा। मनमुख बहुत करे अभिमान।

गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभु सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरे ठाकुर ए बनत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाह, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, सब दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेल आया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, अन दिन सदा हर भक्ति राते, इस जग में लाहा पाया, तेरे गुण कहां मैं कहन न जाई, अंत न पारा, कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया, इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, हौं मैं मैल शब्द जलाए, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई, कीमत कौन करे प्रभु तेरी, तू आपे सहज समाया, नाम अमोलक अगम अपारा, ना को होआ तो लनहारा, आपे तोले तोल तोलाए, गुर शब्दी मेल तोलाया, सेवक सेवे करें अरदास, तू आपे मेल बहाले पास, सबना जिया का सुखदाता, पूरे कर्म ते आया, जत सत संजम जे सच कमावे, यो मन निर्मल जे हर गुण गावे, इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चितलाया हऊ मैं विच सब जलै शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी

सुधारे गुर के शब्द मरे मन मारे हों में जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुब्बे वारो वारा सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया साचा दर साचा दरवारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माए समाया करे अंदर को कर पाए गुर के शब्दे सह सुवाए उठे सोग विजोग न व्यापे सहजे सहज समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत न होई बिन शब्दे पार न पाए कोई सहजे गुण रवे दिन राती ज्योति जोत मिलाया काया बिरख पंखी विचवासा अमृत चुगे गुर

सतगुर प्रसाद। सच्चा आप सवारण हारा, अवर न सूझस बीजी कारा, गुरमुख सच वसे कट अंतर, सहजे सच समाई है, सबना सच वसे मन माही, गुर प्रसादी सहज समाई, गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चितलाई है, सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा, सतगुर सेवी अवर न दूजा, सतगुर ते नाम रतन तन पाया, सतगुर की सेवा पाई है, बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवे जाए परम मरे अपागे, नानक तिन की फिर गत होवे, जी गुरमुख रहे शरणाई है, गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुर ते मांगो नाम अजाची, ओ दयाल कृपा कर हर जियो, रख ले वो गुर शरणाई है, अमृत रस सतगुरु चुआया, दसवें द्वार प्रगट हो आया, तह अनहद शब्द वजह तुन बाणी, सहजे सहज समाई है, जिनको करते तुर लिख पाई, अंग दिन गुर गुर करत विहाई, बिन सतगुर को सीजे नाही, गुर चरणी चित लाई है, जिस पावे तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदार्थ ले, आपे कृपा करे नाम देवे, नानक नाम समाई है, ज्ञान रतन मन प्रगट पया, नाम पदार्थ सहजे लया, ए वड्याई गुर ते पाई, सतगुर को सद बल जाई है, प्रगटिया सूर निस्मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा, सतगुर ज्ञान रतन अतपारी, कर्म मिले सुख पाई है, गुरमुख नाम प्रगटी है सोए, चहु जुग निर्मल हच्छा।

गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम त्याई है, पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख वखाणी, हर हर करत सदा मन बिकसे, हर चरणी मन लाई है, हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही, हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुरु की सेवा लाई है, जिन सतगुरु जाता

सतगुरु मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी।

जन नानक नाम जपो पव खंडन, सुख सहजे रहन विहानी है, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, जो शरण परे तिसकी पत राखे, जाए पूछो वेद पुराणी है, जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, विचे गृह सदा रहे उदासी, ज्यों कमल रहे विच पानी है, विच हो मैं सेवा थाए न पाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, सो तप पूरा साई सेवा, जो हर मेरे मन पानी है, हो क्या गुण तेरे आखा स्वामी, तू सर्व जिया का अंतर जामी, हो मांगो दान तुझे पह करते, हर अंदिन नाम वखानी है, किसी जोर अंकार बोलन का, किसी जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तर अवरना काई, तू करते राख मैं निमानी है, निमाने मां

हर हर नाम जिन्हें सदा त्याया, तिन्हें गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी जन नानक।

जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन में थाप उथापन हारा, सोई तेरा सहाय है। मात गर्भ में जिन प्रतपालिया, सास गिरास हो

जन्म मरण की जोन न पवया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थानंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तन ताहा, ज्ञान खड़ग करके

रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार

जयकार किया प्रभ अपने जग में शोभ सुहाई है। जय जयकार जपो जगदीश है बल बल जाई प्रभ अपने ईश है। तिस बिन दूजा अवर न दीस है एका जगत सवाई है। सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता।

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग बिलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे।

परदेश न जाओ वसो कर मोरे ऐसा बणज करो ग्रे पीतर जित उतरे भूख प्यासा है सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है तन अंधी फिर चपल सियाना।

जो प्रेह बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए, आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

जम फासा है, मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर फिर चोटा खावे, जितने नरक से मन मुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया।

मेरा कट कट पूरन सिर सिरैन मेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हरखवंत अनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्व।

सुरत सबद रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे, इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुर गोपाल गुर गोविंदा, गुर दयाल सदा बख्शिंदा, गुर सासत सिमरत खट कर्मा, गुर पवित्र स्थाना है, गुर सिमरत सब किल विखनास है, गुर सिमरत जम संग न फास है, गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमाना है, गुर का सेवक नरक न जाए।

सतगुर पेट हर जस मुख पणी है, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगे देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है। गुर मिलिया सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिया ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माए समानी, आप सुनी तै आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ

कल युग में कीर्तन प्रदाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना। आप तरह सगले कुलतारे, हर दरगे पत स्यो जाएदा, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया, नेचल एक आप अविनाशी, सो नेचल ज्योति सैति आएदा, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग

सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाए दा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाए दा, तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय तरी

तेरी श्रवण सुनिए, दूजी अवर न जाप सकाई, सगल तुम्हारी तारणा, आप चितारे अपना किया, आपे आप प्रवथिया, आप उपाय रचुन पसारा, आपे कट कट सारणा, एक उपाय वड दरबारी, एक उदासी एक करबारी, एक पूखे एक तृप्त अघाए, सब सह तेरा पारणा, आपे सत सत सत साचा, ओत पोत भगतन संगराचा, आपे गुप्त आपे है प्रगट, अपना आप पसारणा, सदा सदा सद होवन हारा, ऊंचा अगम अथा अपारा, ऊने परे परे पर ऊने।

पासे आनंद मंगल हर चल तमासे गुण गावे अनहद तुन बाणी तह नानक दास चितारणा आवन जाना सब चलत तुम्हारा।

पैर नाही को बैरी, सब एको है पालना। डर चूके बिन से अंधियारे, प्रगट पए प्रभु पुरख निरारे। आप छोड़ पए शरणाई, जिसका साथ इस कालना। ऐसा को वड पागी आया, आठ पहर जिन

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा।

की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतलायना, जा की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आ गए, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संत संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे।

जैसे दैत सब सिमरे अगनत ना जाई जस गना, सिमरे पश पंखी सब पूता, सिमरे वन पर्वत अवधूता, लता बली साख सब सिमरे, रव रहा स्वामी सब मना, सिमरे थूल सूखम सब जनता, सिमरे सिद्ध साधिक हरमंता, गुप्त प्रगट सिमरे प्रभ मेरे, सगल पवन का प्रभ तना, सिमरे नर नारी आशर्मा, सिमरे जात जोत सब वरना, सिमरे गुणी चतुर सब बेते, सिमरे रैणी अर्दिना, सिमरे कड़ी मूरत पल निमखा, सिमरे काल अत

परम रुणा। गुर का शब्द वसै मन जा कै दुख दर्द प्रमता का भाग है। सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना। सो तनवंता जिन प्रवत्याया सो पतवंता जिन

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांचे जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे हर

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट पंडार नाही।

एको एक रविया सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रव रविया, त्रिष्ण बुझी परमंगना, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुर कर्ता गुर सदबक्संद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना।

एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन नेह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हों।

वे पाड़ा। एक बैसाए रखे गृह अंतर, एक पठाए देश दिशंतर, एक ही को कास एक ही को राजा, इनमें कही है क्या कूड़ा। कवन सो मुक्ति कवन सो नरका।

अट तुम पारा, एक खड़ेर सातल कर मन मुग्गा वारा, एक ना पार लंघावे आपे सतगुरु जिन का सच बेड़ा, कौतक काल एहो हुकम पठाया, जी जंत उपाय समाया, वेखै विकसै सब रंग माने, रचन की ना एक आखाड़ा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड्डा तार वड्डी जिस जाई, अगम अगोचर बेअंत अतोला, है ना ही किछ आहारा, कीमत कोई न जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा, आप सुज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अत गाड़ा, केतड़िया दिन गुप्त कहाया, केतड़िया दिन सुन समाया।

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरुमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे न आवे जम नेड़ा, कीमत कागद कही न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई।

खाओ अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ पूरम आ गया औतरासी केशव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर पुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावे बेण सुनत सब मोहेगा बनमाला विपुखम कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत न आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्थिर थान जिस है अपगा पतित पावन दुख पै पंजन अहंकार निवारण है पवखंडन पगति तोखत दीन कृपाला गुणे ना कित ही है पिगा निरंकार अचल अडोलो।

खुद लेप नहीं एक तिलरंगा। एक जी गुण कमन बखाने सहस फनी शेख अंत ना जाने। नवतन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा। ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पै शरणाई।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लह आला हुजरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा। तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार जाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद्विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू मेला पंजवा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित कारी, गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्पण तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास दरास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मेरे साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत बेद वखा।

पूरन पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडपागी, बहुर न जोनी पावना, जिसनो बिसरे पुरख विधाता, जलता फिरे रहे नितताता, अकिरत कने को रखे न कोई, नरक कोर में पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ में राख निवाजिया, तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता, काहू सिरे ना लावना, तार अनग्रो स्वामी मेरे, कट कट वसे सबन के नेरे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जाना है तिसे जनावना, जाके मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरुख ना व्यापे माया।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने।

पहला विण गाहक गुण वेची है तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुरु माहे समाए, मोल अमोल ना पाई है वणज ना ली जय हाथ। नानक पूरा तोल है कबो न होवे काट। महला चौथा नाम विहूने परम सह आवे जावे नीत, एक बांदे एक टीलिया एक सुखिए हर प्रीत। नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी, गुर ते ज्ञान पाया अत खड़क करारा। दूजा परम गढ़ कटिया मोह लोभ अंकारा, हर का नाम मन वस्या गुर शब्द विचारा। सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा, सब सचो सच वर्तदा सच सृजनहारा। श्लोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार, सत्संगत च्यों मिल दो रहे सच्चे तरे प्यार। विचो मल कटे अपनी कुला का करे उधार, गुणा की रास संग रहे अवगुण कढे विडार। नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना, दूजे ना तरे प्यार। महला चौथा सागर देखो डर मरो पै तेरे डर ना है, गुर कै शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए। महला चौथा चढ़ बोए थे चाल सौ सागर लहरी दे, थाक न सच्चे बोए थे जे गुर तीरक दे। तित दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान, नानक नदरी पाई है दरगे चले मान। पौड़ी ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई, सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत्संगत मेल मिलाई। सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बने आई, एथे सुखदाता मन वसे अंत होए सिखाई। हर स्यों प्रीत उपजी गुरसो जी पाई। श्लोक महला पहला पूली पूली मैं फिरी पादर कह ना कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्तासी है।

बेकार कमाए। नानक चानन गुरु मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी। माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा, चलदिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध ना बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा। गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा।

जे सतगुरु माहि समाए मैला तीजा। मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है, जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है। क्यों कीमत की जाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे वर्ती जाए, गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जाए, गुर सब दी कमल विकास।

मन माए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हे जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पीखिया ले ओ, दरगह लेखा मंगी है किस किस उत्तर दे ओ, पिखिया नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, पेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोए, ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जेवड अवर ना कोए, तिस शरण आई छूटी है लेखा मंगे न कोए, सच दृढ़ आए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यों लूज दे अगे पिछे दुख पावे, हर जियो अंकार ना पावे।

नानक जे इव मारिय गुरसब दी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्ये पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पे दिए हर जप हर बूजे सो हर शरणाई छुटिए जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला। हुक्म

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी। मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे

काम एक आपे परम पुलायन तिनने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोए महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे प्रभाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल हुक्म न जाई में

जग में राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम न चेतनी होए मैले मरे गवार मैला तीजा दुख लगा बिन सेवे हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए नानक एवे जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नाम है त्रिपत नाही दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही आप करे किस आखिए दूजा को नाही श्लोक मैला तीजा इस जग में संति तन खटिया जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही ना जाए इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए सांत ना कदे आवई न सुख वसे मन आए सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए।

कहलाती जा। गुण अवगुण समान है जे आपकी ते करतार, नानक हुकम मने सुख पाई है गुर सब जी विचार पौड़ी, अंदर राजा तख्त है।

सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याओ अमृत का रस आया मन वस्या नाओ। श्लोक मैला पहला। हूँ मैं करी ता तू नाही, तू हो मैं हूँ नाही। बूझो ज्ञानी बूझना ये अकथ कथा मन माहे। बिन गुर तत न पाये अलख वसे सब माहे। सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसे मन माहे। आप गया प्रम पो गया जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराहे। नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिभुवन तिसे समाहे। महला तीजा मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार। से जन विरले जानिए कल युग विच संसार। आप पैनो आप मिल रहा हो मैं दुबदा मार। नानक नाम रते दुत्तर तरे पौजल विखम संसार पौड़ी। मनमुख अंदर न पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा पव थके अंदर तिख तत्ते। सिमरत सासत न सोदनी मनमुख विगुते बिन गुर किने न पायो हर नाम हर सत्ते। तत ज्ञान विचारे

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग ना मोए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाने जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पैकी नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल आ

देख कपड़ भोग डरावने जिचर भी न देख महला पंजवा उठी जालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो था।

तू होरत उपाय न लभई अब नासे श्रेष्ठ करण दखने महला पंजवा। जे तू वत्तै अंगने हब धरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी बात न पुछे कोई।

आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। जिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावै त्यों चल दे किछ वस ना जनता। दखने महला पंजवा कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, देखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतछड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो ज्यो।

जिस मेले सतगुरु आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा तृण छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं की त्यों शिव सकत वरताइया शिव अग्गे शक्ति हारया ए मैं हर पाइया एक विच्चों ही तुद रखया जो सतसंग मिलाइया जल विच्चों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

छोड़ी। जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौकुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबे पापै, जन्म जन्म की मल उतरे गुर धूड़ी नापै। जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जाने आपै। ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरताया।

अब मजाए खाली को न जानिए तैस की भाग मथाए जिन्नी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हों डाडी दर गुण गावदा।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन अपना। जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार, प्रभ ढाडी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

मन तन अत गुलाल, नानक बिन नावै आलू दिया, जित्ती होर ख्याल पवड़ी। हर जीओ जा तू मेरा मित्र है, ता क्या मैं काड़ा, जिन्नी ठगी जग ठगया, से तुद मार निवाड़ा। गुरु भोजन पार लंघाया, जित्ता पावाड़ा, गुरमती सब रस भोगदा, वड्डा आखाड़ा। सब इंद्रियां वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा। जित लाइयन तित्तै लगदियां, नै खिंजो ताड़ा, जो इच्छी सो फल पाएंदा, गुर अंदर वाड़ा।

पालिया तुझ जे वड़ना साईया मैं दसो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाईया मन अर्प्यो हो मैं तजो इत पंथ जुलाईया नित सेवो साहिब अपना सत

नानक से अखड़िया बयान जिने दिसंदो मापिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया तिन सब सुख पाई ओ आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई उन हर नाम

मस्त सब लोग सिदासी, काजी शेख मसाय का सब उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहा से, रोजा बाग निवाज कते विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा।

दया धर्म तप ने चलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन वचन नेचल गुर सादा जिन को पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा श्लोक डखने महला पंजवा जो डुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निड़ो भी तार नानक फिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथा

तो ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़ै हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया से तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़ै ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजली।

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोला सिद्ध साधक ज्ञानी जानिया कौन तुदनो तोले। बन्नन गरन समर्थ है ओपत सब परले करन कारण समर्थ है घट घट सब बोले। रुजक समाहे सबसे क्या।

ग्रहों। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो पाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जोलो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भस्म लेपन किया का गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते बिछया ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान, माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया, गुर ज्ञान दिया समझाए, अंतर्गत हर

राम उदक जे जन पिया तुम बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते पया निरास। सब सच नजरी आया जो आत्म पया उदास। राम नाम रस चा

सुनने सुन मिलया समदर्शी पवन रूप हो जावेंगे। बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसै का हुक्म बुझ समावेंगे। रहाओ जब चूके पंच धात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम त्यावेंगे। जित हम लाए तित ही लागे तैसे कर्म कमावेंगे। हर जी

जीड़े ममता जालिया पिंड बना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरा जीड़े जे मन मृतक होए बना हम बै सतगुर बिन बैराग न होवे।

चार मुकत चार सिद्ध मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हरियो अम्बरीक को दियो अभय पद राज बबीकन अधिक करयो नौ निध ठाकुर दई सुदा मैं धुरु अटल अज हूँ न टर्यो भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय देत हरियो नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारे राव। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ। आप

राम निंदा करते जन्म सिरानो कभू न सिमरो राम। कह कबीर चेत नहीं मूर्ख मुगत गवार राम नाम जान्यो।

लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा। धन जो बन का गर्व न की जय कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस जय पटके ता दिन कृष्ण बसा।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तलता कै हर हर हर न जपस रसना खबर सब छाड़ बचन रचना रहा नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाहे सहज समाज उपाध रहत हो बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बाणिया साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभु पानी सा सोहा गण नारे। नवघर थाप मैल घर उ

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वै साग बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे सुध बिन अड न मोलो। कीमत कौन करे तुझ पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हर का मैल पछाना। नानक वैसाखी प्रभु पावे सुरत शब्द मन माना। माओ जेठ भला प्रीतम क्यों विसरे। खलता पैसर भार साधन बिनो करे।

सुख मैली, नानक जेठ जाने तिस जैसे, कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे, धरती दुख सह सोख अगन पक्ष। अगन रस सोख मरिय चोख, भी सो किरत नहारे, रस फिर छाया धन ताके।

सावन सरस मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर पर देश सिधाए, फिर घर नहीं आवे मरिए हावे दामन चमक डराए, सेज इकेली खरी दुहेली मरण पया दुखमाए, हर दिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे, नानक सा सोहागन चंती फिर कै अंक समावे, बादों परम भूली पर जो बन पछतानी, जल थल नीर भरे बरस ऋते रंग मानी, बरसे निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते प्रिय प्रिय चवै बबीहा, बोले भुयंगम फिर डसंते, मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, मानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभ तै ही जाइए, असुन आओ पिरा साधन झूर मुई, सामिली है प्रभ मिले दूजे पाए हुई, झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले, दै दिस साख हरी हरे आवल सहज पचै सो मीठा, नानक सुन मिलो प्यारे सतगुर पे बसीठा, कतर किरत पया जो प्रभु पाया, दीपक सहज बले तत जलाया, दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो, धन ओ मा है सरसी, अवगुण मारी मरे न सीजै गुण मारी तामरसी, नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा, मंगल माओ भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे, नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया, ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने का पाया, गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे, नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति तिर आगे, भूख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख है, आवत की नाही मंतन वसे मुखे, मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी, अंडज धीरज से तज उद्भुज घट घट जोत समानी, दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया हर स्यो पीत स्नेहो, माग पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुरभावा सरनावा, गंग जमुन तै बेनी संगम सात समुंद समावा, पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता, फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस भया आप गवाया, मन मोह चुकाया जांच पाया, कर कृपा घर आओ बहुते वेत करे फिर बाजो, मैली दान खाओ हार डोर रस पाट पटंबर फिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी, बेदस मारुति छिती वार भले घड़ी मूर्त पर साचे।

राखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। रब सस दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख

सच संभालिया एनिस देख बिचारिया दावत पंच रहे घर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़े आलमा गुरमुख जाग रहे चूकी अभमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरु दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुख परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल था त्रिभुवन घट घट थापया सो प्रभु गुरमुख जान्या करण कारण समरथ अपारा त्रिबद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आपे तेई अड़े घर सबद पतिनी सावरड़ा तिर पानी नानक सतगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भोला बड़ा भुली भुल भुल कच्छो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगन मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुति हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं

जमनाती कब घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी। नानक आप पछाने गुरमुख तत् बिचारी। सुखारी महला पहला। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले। गुर अलख लखाया अवर न दूजा पाले। गुर अलख लखाया जा तिन पाया जा प्रभु कृपा तारी। जग जीवन दाता पुरुष विदाता सहज मिले बनवारी। नगर करे तू तारे तरिया सच देवो दीन दयाला। प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला।

वह चढ़ सवाया अपरम्पर आपे था पोथा पे किस भाव सो हो वह नानक मीरा ही रह बेदया गुण कह हार परो वह गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवर्ण दिस साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सजगर खोज ले साचा गुर थानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जाप साचा महल चिराना दो तू चापत लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अतीत आनिया राम ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समानिया राम बहु साध लुबाने किरत कमाने विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत रुद्र

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम, क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है, किस दिन रह न जाए हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती, फिर दिन प्यास न जाए अपनी कृपा करो हर प्यारे, हर हर नाम सब सारिया गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम, हर सतगुर वित्तो वारिया जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रयो प्रयो सत्य नित चवा राम, प्रयो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे, शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए, अन दिन गुरु गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए, हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल तारिय राम, गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुगद किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए, दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए, गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम, काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है, सतगुर आगे शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे, आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे, तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया, गुरवास सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर तरणी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया, तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया, तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दोख सब बिनसे जिन मन चित इक अरादया, तिनका जन्म सफलो सब किया करते जिन गुर बचनी सच पाखिया, ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे, सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो पिवे चला, हमरे हाथ किस नाहे जा तू मेले ता हो आए मिला, जिनको तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल होआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला, सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ, जिनको तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या, तिनके पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु बचनी हर जापिया,
तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया तिन देखे हो पया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ तू जल थल मई अल परपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हलत पलत जन पे सुहेले हर राख लिए रखन हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी तू थान सनम तर हर एको एक रव्या वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया तू थान सनंतर हर एको एक रव्या तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिसके जिस अंतर पाव पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले तुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नाश गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागा की नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तय कौतक चलक भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुर पिछे पई जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया देही नगर कोट पंच चोर वटवारे तिनका थाओ थे ओ गवाया कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही सुखारी संत मैला पंजवा
एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद कोल कुमाई लालना गुर मन दीना सुन बचन तुम्हारा।

ले कपट तपट बुद्ध तृष्णा जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संतें संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ कार्ड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो प्रम्पो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेण होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ।

मोह महा मद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लेहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपक बिख्या रस ओगवत नह निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात करण समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुर मात। केदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब ए प्रीत मां परबल सही आन बिखे जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी। किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिध में खोर परम पीत निवार ठाकुर गहलो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते लै मोर गर्भ कुंट में जिने तारो नहीं दिखे बन में होर हर सकत शरण समरथ नानक हान नहीं निहोर। किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल।

आदौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने से मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत ने

तो बन गया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी। साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पनारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी। आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निभि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो। बोलो भैया राम की दुहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ। सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझे। हर रस पावे भाई जेते कट अमृत सभी में पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवां दर फूले तामन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी। उबट चलनते ए मद पाया जैसे खोंद फुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कह जानी। फूटी आँखें कछु न सूजे बूढ़ मुए बिन पानी। चलत कत टेडे टेडे टेडे अस्त चरम बिस्ता के मुंडे दुर्गंध ही के बेडे। रहाओ राम न जपो कवन प्रम फूले तुम ते काल न दूरे। अनित जतन कर एहो तन राखो रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे क्या को करे परानी। जात पावे सतगुरु पेटे एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद के विद औद विहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस अकेला जाए। वह सुत वह बित वह पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारत जाए। राकेदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख किस जात ते कह पदे अमरियो राम भगत विशेख। रहाओ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौक दे इको

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस दियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर कुरलीना साथ शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो साच शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन विद तर तू तारी बैरे करन अकल भई होची शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम निवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द पेड़ नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कब हूँ न जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रब जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची।

नहीं पाए। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंधलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूने। शब्द विचार राम रस चाख्या, नानक साच पति ने। पैरों महला पहला, गुर के संग रह दिन राती। राम रसन रंग राता, अवर न जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता, सोजन ऐसा मैं मन पावे। आप मार अपरंपर राता, गुर की कार कमावे रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरख आदेशो। कट कट अंतर सर्व निरंतर, रव रहा सच वेशो। सच रते सच अमृत जेवा, मिथ्या मैल न राई। निर्मल नाम अमृत रस चाख्या, शब्द रते पच पाई। गुणी गुणी मिल लाहा पावस, गुरमुख नाम वडाई। सगले दुख मिटे गुर सेवा, नानक नाम सखाई। पैरों महला पहला, हृदय नाम सर्व तन तारण। गुर प्रसादी पाइये, अमर पदार्थ ते कृतार्थ। सहज ज्ञान लिवलाइये, मन रे राम भगत चितलाइये। गुरमुख राम नाम जप हृदय, सहज खेती कर जाइये रहाओ। परम पेद पाओ कभो न छूटस, आवत जात न जानी। बिन हर नाम को मुक्त न पावस, डूब मुए बिन पानी। तंदा करत सगली पत खोवस, परम न मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी, अंधले तंद पसारा। अकुल निरंजन स्यों मन मानिया, मन ही ते मन मुआ। अंतर बाहर एक को जानिया, नानक अवर न दुआ। पैरों महला पहला, जगन होम पुन तप पूजा। देह दुखी नित दुख सह, राम नाम बिन मुक्त न पावत। मुक्त नाम गुरमुख लह, राम नाम बिन बिसे जग जन्मा। बिख खावे बिख बोली बोले, बिन नावे नेफल मर प्रवना। राव पुस्तक पाठ व्याकरण वखाने, संध्या कर्म तिकाल करे। बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल शिखा सूत तोती, तीरथ गवन अप प्रमन करे। राम नाम बिन शांत न आवे, जप हर हर नाम सोपार परे। जटा मुकुट तन पखम लगाई, बस्तर छोड़ तन नगन भया। राम नाम बिन तृप्त न आवे, कीर्त के बांधे पेख पया। जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र कत्र तू सर्व जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक चोल पिया।

ब्रह्म बिन देखो ब्राह्मण होई, जात का गर्व न कर मूर्ख गावारा। इस गर्व से चले बहुत विकार आ रहा हो, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब ओपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, कट वद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

इनमें बिन से करत न लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुरु कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए।

कसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, पंत नानक करे क्या कोए, जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला कीजा। सो मुन जे मन की दुविधा मारे, दुविधा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौनिध।

चार हुक्म बुझ समान। कर्म होवे गुर कृपा करे, यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में बसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, पैरो महला तीजा। राम नाम जगत निस्तारा, पव जल पार उतारण हारा। गुरु प्रसादी हर नाम समाल, सद ही निभे तेरे नाल। रहाओ नाम ना चे

सिमरत शास्त्र पणे मुन केते बिन शब्द सुरत न पाई त्रै गुण सबे रोग व्यापे ममता सुरत गवाई इस आपे काड लय प्रब आपे गुर सेवा प्रभ लाए हर का नाम निधानो पाया सुख वस्या मन आए।

बिसन रुद्र उपाया, नानक निश्चल साचा एको ना ओ मरे न जाया। पैरों मैला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर सबदी विचारा। हर जियो सत्संगत में लाए नानक तिसनो देव दयाई, जो राम नाम चितलाए रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे, तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवे, जिन हर राख्या उधारा जिन हर का नाम ना गुरमुख जाते।

0: लाए, जो इच्छे सोई फल पावे, गुरबाणी सुख पाए।
1: पैरों मैला तीजा, दुख विच जम्मे दुख मरे, दुख विच कार कमाए, गर्भ जो नी विच कदे ना निकले, बिस्ता माई समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेवना कीनी, हर का नाम न पाया रहाओ। गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए, नामे नाम मिले वडियाई, जिसनो मन वसाए। सतगुर पोते ता फल पाए, सच करनी सुख सार, से जन निर्मल जो

पूरे पाग पाई है, जिनी राम नाम सितलाया पैरों महला तीजा। शब्द बिचारे सोजन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, ता तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

कबहु कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत की तृप्ता से रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी से सिर तंदे लाए माया मोह।

दाता। अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया, रंग स्योरलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर।

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच्छ पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुख दाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुर जिनी न सेवया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होए, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना तुसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई, पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया, दुख खट्टे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ, पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए, सतगुरु मिले ता उल्टी होवे, खोज लहे जन कोए, हर हर नाम हृदय

आपके मार्ग पाए, आपके गुरुमुख देव दे आए, नानक नाम समाए पैरों महला तीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुर करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुर दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार। खिन मैं पयान रूप निक्षया थम उपार, हर नाकस नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इतनी कुले उदारे। गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे। पैरों महला तीजा, आपे दैंत लाए दिते संत जना को। आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री। तर्पण किछु न जाने, शब्द मेल मिलाया रहाओ। अन दिन भगत करे दिन राती, दुबदा सब देखोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई। मूरख दुबदा पने

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय फेर चले तुझ नाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगते, टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिये सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता तत पाली, जन नानक तारो नगर निहाली, पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे, तुझते बाहर कोई ना है, हर सुखदाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राख्या भावे, किसके नेड़े कोई न जावे, तू जल थल मैयल सब ते भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजू।

चौथा सत्संगत साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्री वैनित चरने जग जीवन हर त्याय तरने अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाही जेवा इक गणने राव गुर सिख हर बोलो हर गावो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख कणे तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने जिन सास गिरास आया मेरा हर हर से साची दर गए हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच पगता हर तरणे नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवने पैरों महला पंजवा कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद सगली थीत पास दार राखी अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम पूले नर कर्क कचरायण।

राव कर पंजीर खवायो चोर, ओ जन्म ना मरे रे साकत टोर। सगल पराग देहे लोरो ने, सो मुख जलो

आया खट शास्त्र मूर्खे सुनाया जैसे दहदिस पवन चलाया बिन कण खलहान जैसे दान पाया क्यों साकत ते को

तब आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत नीत हीत तन ने पारणा तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जानी पैरों महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द वजे दरबारे कर कृपा प्रभु लिए मिलाए नानक प्रभु शरणागति आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवे हाथ जम मार कै संगी पांथ गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी जत होवे पीवत बहुड़ न जोन परमाम रहाओ पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार नानक दास इहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना

गरीब निवाज दिन रहन के आए, नानक कौ खुद खसम मेहरबान, अलो ना विसरे दिल जी प्राण। पैरों महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सत कर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन नित उठ पीवो, हर हर हर

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पछया आप समाइन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरध प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मैला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ करें अन सेवा कवन बिछया रस माता रे मन मेरे तू गोविंद पाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चित भी है चित बिगरस ताज रहाओ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरें मन मुख अंध अज्ञाना हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभ का साचत कहते मेरा अहं बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पल जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप कहे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया पैरों मेला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए

बल बल जाये जी कट प्रति आए पैरों मेला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिकसन के नित डरता फिरे है निकट अर्थ न पाया बिन सतगुरु।

पंजवा जिस तू राख है कुछ कौन मारे है सब तुझ ही अंतर सगल संसार है कोट उपाव चितवत है प्राणी सोहो वैजे करे चोज विदानी राखो राखो कृपा तार तेरी शरण तेरे दरवाजा।

तौ करिए जे किछ होए सिंघाणे, तौ करिए जे फूल रंजाणे, गुर कहया जो होए सब प्रभु ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभु तू है ठाकुर सबको तेरा, जो पावे त्यों करे निवेरा, द्वितीया नासत इक रहया समाए, राखो पैज नानक शरणाए, पहरों मेला पंजवा, बिन बाजे कह

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरू मैला पंजवा, हो मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

बिन सतगुरु रोग कतहे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

गुरु तय हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन का दिखलाया, जिन गुरु सेविया तिस पौ न व्यापे, जिन गुरु सेविया तिस दुख न संतापे, नानक सो देव सुमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही पेद। पैरों महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पाया, नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल कुरबाया, नाम लैत असत मजन आया, तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेश तप ज्ञान रहाओ, नाम लैत दुख

जा को सतगुरु दियो नाम, जा को पेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभु पाए, ताकी रेन बिरला को पाए। हैरो महला पंजवा, चितवत पाप नाल आवे, बेसुआ भजत किसने शरमावे। सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की

साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया। पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करो सो पाए, हर का नाम मन वसाए। साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए। राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए। तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, तेरो महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे तीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर

स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लैत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यो बने आई तनवंते श्री प्रधान नानक जा कै नाम विधान पैरो महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जी प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हूँ दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा।

तो प्रसाद रंग रस माने कट कट अंतर तुम्हें समाने तुमरी कृपा ते जपिए नाओ साध संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दया ते होए दर्द विनाश तुमरी माया ते कमल विलास हौं बलिहार जाऊं गुरुदेव सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव दया करो ठाकुर प्रभु मेरे गुण गावे नानक।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए, कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ। जा के कर्तव्य लखे न जाए, जा का प्रवासा सब कट माए।

फिर पातशाह साचा सोए, जिसकी ओट किसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, बिखला का सब

अनित पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन कराम नहार स्वामी।

मूर मुग्ध हो चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों महला पंजवा रोग कवन जा राखे आप इस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे इस ऊपर के काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नुक्त न आवे ता कै जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल से क्या प्रगटाया आप मार आप जीवाले अपने भगत को सदा

0: कोए, हर हर नाम जपे जन सोए, रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम तिराए हर हर हरे, साथ जना के संग निस्तरे, वैरी मीत होए सम्मान, सर्व में पूरन भगवान, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, कर कृपा जिस राखे आप, सोई भगत जपे नाम जाप, मन पर दास गुते मत लई, कहो नानक ताकी पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा, सुख नाही बहुते तन खाते, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए।

जो पावे त्यों रखो गुसाई, पैरों मैला पंजवा, गुर मिल त्याग्यो दूजा पाओ। गुरमुख जप्यो हर का नाम, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए।

नानक को गुरु पै दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस प्राप्त

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

समरथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा तै पंजन अविनाशी राए दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी शरणा बल बल जाए।

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुरु प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंत आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिधमाय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बद्दे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुद्दे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर देव चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभु की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत देखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम कै रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किछ जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरों मैला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वस्या मन आए, राम राम संत सदा सहाय, कर बाहर नाले परमेश्वर रव रहा पूरन सब ठाए रहाओ, तन माल जोबन जुगत गोपाल, जीप

गायन आद जुगाद भगत गुण गायन तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कह मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वार्थ पैरो महला पंजवा पै को पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रयो गुण की दास के होए पूरन काम।

सुच हर माने, अंतर मेला बाहर नित तोवे, साची दरगे अपनी पत खोवे, माया कारण करे उपाओ, कभे न

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित।

रोगी सात समुंद सनदिया, खंड पताल से रोग परे, हर के लोक से साथ सुहेले, सर्वी थाई नदर करे, रोगी खट दर्शन पेखता।

उपाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मन मुख पूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान हों कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ पिता प्रहलाद पढ़न पठाया ले पाटी पांदे कह आया नाम बिना नहीं।

लक्ष्मी पौ करे नासा कह जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए, सतगुरु नाम निधान।

करते अपना रूप दिखाया, पैरों महला तीजा, गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हूँ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मन समाई, हर जियो कृपा करूँ मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे।

साचे हर प्रभ आप मिलाए गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे लिव लाए तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर के शब्द विचारे नानक तिन

आया कहो नानक तत्तै तत मिलाया पैरों महला पंजवा कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल कोट महेश उपाय समाए।

தரத்தியான कोट तपीसर तप ही करते कोट मुनीसर मौन में रहते अवगत नाथ अगो

अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत हमारे अनहत वाजय, अचिंत हमारे गोविंद गाजय, अचिंत हमारे मन पतियाना, नेचल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजो सगल विवेका, अचिंत चरी हथ हर हर टेका, अचिंत प्रभु तुर

ईत ऊत की सोजी परे, कौन कर्म मेरा कर कर मरे। निज पद ऊपर लागो त्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान रहाओ। मूल द्वारे बंदिया बंद, रब ऊपर गहरा।

बिरख मूल माया में परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा अर्तर देव, कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

आहे। क्यों लीजै गढ़ बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

उत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ,

फिरें, बासक कोट सेज बिस्तरें, समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परें पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप पुन

पूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज, जैसी मूड

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहु न तू टसरिया समाए, नामे चित लाया सचनाए।

लपताना। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिटवे कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिखाए। ज्यों बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वहां के गले जम का है फांस। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम